आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, आज इतवार है, शक समत 1948 के जयस्था महीने यानी जेठ महीने की 24 तारीख, मुताबिक 14 जून 2026 ईस्वी। सुबह के 6:33 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं सुबह का ही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामिने मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक और इसका तर्जमा सुनने से।

तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति हे बेद जाति पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति हे बेद जाति वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर, और इसके अलावा आप हमें FM2 103.5 MHz पर भी सुन रहे हैं। समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में आप खबरें सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य

0: नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं उभौ विभागौ येन इदानीं 200 दिन पर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तं एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले दो

से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अस्सलामु अलैकुम। लाइव शो पयाम सुबह अच्छे से बतूस मेजबान सकीना तो मैसेज छे
1: परवेज मीर
0: तो कंट्रोल रूम में छे आज सुन से थी आईपी सिंह तो नसीर अहमद
1: दुआ छे कि सुन बोजन वाले सिन खुश वारवत तो इत्मीनानस मंज सकीना जी आतवार हुन सुब
0: बिल्कुल
1: फुर्सत फरागत तो पुरसुकून दिल
0: रिलैक्स
1: तिकाजी छुट्टी हुन दोच पहिन पाने इंसानस अंदर यक इत्मीनान बख्शा
0: ये इत्मीनान युता शुद्ध सदरवार आसि त्युता चु इंसान सुन ब्रुत प्रजलान तो इंसान सस कुल हम जिंदगी जिंदगी यस वनव सच एकिस मखसूस अंदाजस मज या रितिस अंदाजस मज बैलेंस गचा
1: बिल्कुल सकीना जी जिंदगी एकिस बैलेंस तरीकस मज गुजारन बापत क्या क्या जख्त जतन छुन इंसान करान
0: बिल्कुल सही
1: यपर रात शुरुआत तपर ची यही कोशिश आसान जे जिंदगी मज गुस कुन किन बहार पनिन पोश पे दित्रावन
0: बिल्कुल परवेश तवन बिल्कुल सही सैन कोशिश ची हमेशा ही आसान या दुआ ची आसान सैन के सैन भोजन वेल गसन हमेशा नवीन तो पलिन जिंदगी हुन प्रत का सु प्रत का दो गुस दैनी खुशी हुन जमीन बनन
1: त दैनी खुशी हुन जमीन बन तेले प्रत का सु जिल सैन कोशिश रचास सैन इरादा मुकम्मल आसन
0: बिल्कुल सही
1: त सकीना जी सुबह सुबह ओतई निबर
0: बिल्कुल
1: स्टूडियो वास्को

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोर रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी। सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।

0: जहाँ दोस्तों जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, और अगर हम आप हमें सुन रहे हैं तो आप आकाशवाणी श्रीनगर सुन रहे हैं और इस वक्त लाइव शो प्यामे सुबह सुन रहे हैं।
1: और प्यामे सुबह में आपके साथ हैं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
0: परवेज मीर।
1: और संडे का दिन है और थीम होता है आज के दिन का गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने कई हफ्तों से रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, तो आज फिर ये बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये जो काबिले तजदीद तवानाई है इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और शमसी तवानाई के मंसूबे दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये वक्त की अशद जरूरत बन चुकी है, निमूल बदल ये ऐसा है कि जिसको अवेल करना आज के दौर में बहुत जरूरी है।
0: और सकीना जी, यहाँ पे जहाँ पे आप एनर्जी की बात करें वहां सोलर की बात जब करेंगे ना, तो हमारा जहन एक पल में उसकी तरफ जाता है।
1: तो देखिए, एक हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं हमें लगता है कि लाइट जलानी है, बस वहीं तक बात महदूद होकर रह गई है, बिजली की बात हम करते हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे इसी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। कह सकते हैं कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नित नए तजुर्बे हो रहे हैं, निमूल बदल जो आपके सामने हैं, जो आप अवेल कर सकते हैं, उस बारे में आगे बढ़ा जा रहा है।
0: जी, ऑस्ट्रेलिया की बायरन बे सोलर ट्रेंड जो है ये पायदार आमदरफ्त की एक इनकलाबी मिसाल मानी जाती है, क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है, मुसाफिर ट्रेन है, जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवन्नाई पर चलती है।
1: बिल्कुल, एक खुशखबरी कह सकते हैं तमाम सुनने वालों के लिए है। और अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहेंगे कि ईंधन या बिजली की तारों पर इन्हिसार करने के बजाय ये ट्रेन अपनी छत स्टेशन के शेड पर नस्ब सोलर पैनल से जमा की गई बिजली का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से चलती है। ये ट्रेन सिफर अखराज के साथ तकरीबन 100 मुसाफिरों को एक साथ ले जाती है। देखिए, जब शुरुआत ऐसी है 100 मुसाफिरों को ले जाती है, तो आगे चल के देखिए कितनी तरक्की हो सकती है जब हम शमसी तवानाई की बात करते हैं।
0: और उम्मीद भी करेंगे कि तरक्की हो, क्योंकि ये स्टेप्स जो है, ये इनिशिएटिव्स इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि आगे चल के इसमें एक बड़ा स्टेप लिया जाए। ये ट्रेन इस बात का सबूत है कि आज के दौर में भी माहौल दोस्त सफर जो है वो मुमकिन है। ये ट्रेन अपने पुरसकून सफर के लिए भी मुफीद मानी जाती है, क्योंकि इसकी आमद रफ्त से हमारे माहौल पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है।
1: देखिए, जब हम कहते हैं ना कि वक्त की अशद जरूरत है या निमल बदल है, जब हम कहते हैं कि बुरा असर माहौल पे नहीं पड़ता है, अगर हम इस वक्त बात करें कश्मीर की या बाकी स्टेट्स की, हिंदुस्तान की, बार बार ये दोहराया जाता है विंटर जब भी आता है कि पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है दिल्ली में या कश्मीर की अगर हम बात करें, तो ऐसी चीजों का, ऐसी ट्रेन्स का जो तादाद है वो तो बढ़ना चाहिए। अब चूंकि मस्बत खबरें हम शेयर कर रहे हैं, खुशी की खबरें शेयर कर रहे हैं, तो ये भी अपने सुनने वालों को बता दे कि जब अपने मुल्क की हम बात करते हैं तो आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान की इक्तसादी तरक्की की शरह को बढ़ाकर 6.06% कर दिया है, जिससे ये दुनिया की सबसे तेजी तरक्की करने वाली बड़ी मुशियत बन गई है।
0: और ये एक अहम ही दिलचस्प बात है कि काबिले तजदीद तवन्नाई में रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, और शमसी तवन्नाई के मंसूबे जो आपने पहले ही बताया है, तो ये एक खुशखबरी है हमारे लिए। दूर दराज के देहातों में तालीम को फरोग देने और बच्चों के लिए जदीद लर्निंग टूल्स मुतारिफ करवाने पर आलमी सतह पर हिंदुस्तान की कोशिशों की तारीफें की जा रही है।
1: देखिए, ये जो खुशी की खबरें हैं, हम चाहते हैं सुबह सुबह एक इंसान जब नींद से उठे, एक वाइब ऐसी आए हर तरफ से कि कोशिश पूछना बना सुबह सुबह किसी इंसान रिच खबर बोझुन
0: रिचकात बोझुन
1: कोई किन चुन दफा इंसान बोझा बुरा खबर, क्योंकि अब हद लगता है कभी कभी कि हो चुकी है खुशी की खबरें जो है वो भरनी चाहिए।
0: सकीना जी, वनो दिल छु तू रे
1: तो ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान की बहाली, सियाहत के फरोग और बुनियादी ढांचे में नुमाया तरक्की हो रही है। इसी तरह आलमी सतह पर भी माहौलियाती तहफ़ साइंसी कामयाबी और बैन अवी ताउन में भी एक पॉजिटिव पेशरफ्त देखने में आ रही है।
0: जी, और एक मोहब्बत की खबर मैं बता दूं कि वादी में हालात मामूल पर आने के बाद कश्मीरी पंडितों के बेघर खानदानों ने अपने तारीखी विरसे के मकाम का दौरा किया है, यानी कि वो आए हैं, अपने पड़ोसियों से मिले हैं, और लगभग दोस्तों ने भी देखा होगा कि कल शाम
1: मेरे
0: वहां पे भी न

0: कि वहां की जो पंडित खानदानों की जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम या यहां की कश्मीरी लड़कियों से तस्वीरें बना रही थी और दौरा किया है। इनके द्वारा जो है ये वर्षे के मकाम का दौरा किया जो कि बहाली और मफाहमत की तरफ एक तारीखी कदम माना जाता है।
1: और ये भी है कि जब हम ट्रेन की आपने बात की तो कश्मीर में ये बता दे सुनने वालों को, जोजीदा टनल में कामयाबी के बाद कश्मीर और लद्दाख के दरमियान ऑल वेदर यानी कि हर मौसम में काबिल इस्तेमाल रब्ता कायम हो चुका है, जिससे श्रीनगर से लेह का सफर कम होकर महज 15 मिनट रह गया है।
0: जी सिकंदर जी, ये लंबा सफर था जोजिला पास करना, और मौसम की खराबी के बावजूद इस साल वादी में चेरी की फसल जो कम वक्त के लिए होता है और इसके साथ साथ मखमली और इटली अकसाम की जो मेवाजात यहाँ की है उनकी मांग में बेहतरी आई है और किसानों को रेलवे कार्गो की बदौलत बहुत मुनाफा बख्श कीमतें मिल रही है।
1: बहुत खुशी की बात है, युस मेहनत कर गोंगुल और जिसने मेहनत की अल्लाह उनको उस चीज का सिला दे, मेहनत का अजर दे। और ये भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करें कि इस वक्त अगर खेलों की हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप अब जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। कैनेडा, मेक्सिको और अमेरिका में 2024 का जो फीफा वर्ल्ड कप उसका आगाज हो रहा है, जो दुनिया भर में खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो खेल शायकीन के लिए इससे खुशी की खबर क्या हो सकती है कि वो इसको एंजॉय करेंगे अपनी स्क्रीन्स पर या कमेंट्री वो सुन सकते हैं। और ये भी है कि साइंसदानों ने माहौल दोस्त और लामहदूद तौर पर रिसाइकल होने वाले प्रोटीन पर अपनी कपड़े के रेशे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
0: ये भी एक अच्छा कदम है।
1: और संगीत की जब हम बात करते हैं
0: जी,
1: बहुत बातें जब हो जाती है, बातों को जब हम विराम देते हैं तो कोशिश यही होती है कि
0: एक ऐसे ट्यून की तरह बढ़ा जाए
1: जी,
0: जो हमारे दिल में उतर जाए और जिससे हम आंखें बंद करके थोड़ा सा गुनगुना भी ले।
1: और एक ऐसा ही बेहतरीन गीत कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, यकीन आए तो खुद सुन लीजिए।

0: मॉर्निंग लाइव शो पे हम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। दोस्तों अभी इस नगमे से पहले हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड लेवल पे जो दिन मनाया जाता है आज यानी 14 जून को अमेरिका में यूनी परचम यानी फ्लैग डे भी मनाया जाता है। 1777 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका के कौमी परचम के मौजूदा डिजाइन को मंजूर किया था। इसी मुनासिबत से अमेरिका भर में मुख्तलिफ तकरीबात परेड्स और कौमी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं जिनमें कौमी यकजहती आजादी और हुबुल वतनी के जज्बात को उजागर भी किया जाता है।
1: और परवेज ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की
0: जी।
1: अब वर्ल्ड वाइड सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रेकफास्ट में एक चीज जरूरी होती है।
0: सही बात,
1: अंदाजा लगा सकते हैं क्या?
0: आज चूंकि संडे है
1: जी
0: तो आप अंडे की बात करेंगे।
1: देखिए अंडा हर घर में रोज फ्राई होता है, बॉईल किया जाता है, लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि अंडा गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। बच्चे के लिए भी कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम आपको ये बता दें ये एक आम गलत फहमी है कि अंडा गर्मियों में बच्चों के लिए नुकसानदेह है। ये एक आला मयार की प्रोटीन है, वाइटमिन और मिनरल्स का बेहतरीन जरिया है और हर मौसम में दिया जा सकता है। अगर बच्चे को अंडे से एलर्जी नहीं है तो मुनासिब मकदार में अंडा गर्मियों में भी महफूज और मुफीद गजा है। मौसम नहीं, मुतवाजन गजा बच्चे की सेहत के लिए ज्यादा अहम है, ये बात ध्यान में रखिए। अब चूंकि कुछ लिसनर्स हमारे उठ गए होंगे, हमें सुन रहे होंगे, संगीत भी एंजॉय कर रहे होंगे, जो सोए हैं अब उनसे कहना चाहेंगे कि बस अब उठने का वक्त हो गया है, एंजॉय कीजिए, उठिए और जो दिन भर की मामूलात है उनको शुरू करने की कोशिश कीजिए और ये साथ में ब्यूटीफुल ट्रैक भी एंजॉय कीजिए।

0: मर्निङ सो प्रोग्राम शुभ चतुर्भुजन त दुई अठ्याचन बज्न सकिन जी वर्ड बजो कैसरन खाबरन हुन पल्टेन
1: आदाब यह आकाशवाणी।

वायु के लिए प्रोग्राम नशर होगा। पहाड़ी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है 4 बजे। समय 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहेगा शाम 5 बजे।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनते हैं।

0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे

0: क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से

0: एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार

0: और भरतनाट्यम शामिल हैं, पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निज़ाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा, जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
3: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निज़ाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक हैं। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं, ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फ़ायदा पहुँच सके। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% ٹیکس دہندگان کو آمدنی 12 لاکھ روپے تک ہے اور براہ راست فوائد حاصل

0: कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के जीएसटी निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में जीएसटी की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाई डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतयाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएँ, ज़िम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाएं में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकरोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایج پیسٹن کے مقام پر گروپ اے کے

0: मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई क़ुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फ़ौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाही चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। माहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 8:45 हुए हैं।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
4: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी,
5: डॉक्टर नसीर यूनानी पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, नायक बाग, नट्टीपोरा।
4: सेल नंबर 9419408000।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। प्रोग्राम का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत। समीन दिल कहता है कि आज आपसे सीधी सादी बात करूं, तो सीधी सादी बात यह है कि जो जिंदगी हमें मिली है ये भी कुदरत की दी हुई है। जिस जमीन पर कुछ देर कहिए रुकने का मौका मिला वो भी कुदरत की देन है। जो हवा हम पीते हैं, जो खाने की चीजें खाते हैं या पीने की चीजें पीते हैं, सब कुदरत ने अता की है। तो अब जरा मुझे ये समझाओ कि मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरे मसाइल मेरे कैसे हुए, जबकि जिस कारखाने की मैं बात कर रही हूँ यानी दुनिया, न वो मेरा है और न वो काम मेरा है जिस काम में मैं मगन हूँ। बल्कि असल बात तो ये है कि हम कुदरत के कारखाने में एक प्यादे की हैसियत रखते हैं। अकल से काम लिया जाए तो प्यादे को अच्छा काम करना चाहिए ताकि मालिक खुश हो जाए, बस और क्या। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले चंद मरीजों के तासुरात सुनते हैं।
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے حض ناؤ غمر احمد شیخ بہ روزان لوزر پلوائم مے حض کمبرس دگ کر بہ سلام ڈاکٹر حض مے نظ گئی وارن شین گئی تین گئی نرق کہین پہ حض ون نفر دن تھی گھو ماجد صوبس نش ترال ات کر مت حض ٹیس حض بیس دن ترفی ورفی مے حض گئی لگ بھگ حض 90% حض فرق دگ حض لگ بھگ حض لگ بھگ حض اٹھ وری حض مین اٹھو وری پہ حض ونکس حض بالکل حض ٹھیک 90% حض فرق
7: السلام علیکم بلال احمد ملک حس ولی اڑال مز پہ پرابلم مز بڑس پیش

0: सर्जरी के अलावा कोई
1: चारा नहीं
0: है
1: बचा
0: नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए इसमें भी अकल की जरूरत है,
1: एक्सपीरियंस की
0: अकल की जरूरत है। एक साहब ऐसे ही हैं, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और फोन कान में और कंधे के बीच में और बंदे को कैरो कर रहे हैं और उससे भी एक सर्वाइकल कैरो कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक फ्रैक्चर भी हुआ है। मतलब ये दो एविडेंसेस, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप कैरो कराएं तो कम से कम जिस बंदे को एनाटॉमी की खबर हो, जिसको हिकमत हो, जिसको समझ हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ और मुझे अचीव क्या करना चाहिए, ये कम से कम समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद अगर करें तो वो बेहतर है। दूसरा जो पेशेंट था हिलाल अहमद मलिक, अल्सरेटिव कोलाइटिस से ये जो है ना जूझ रहे थे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि एक जख्म सा बनता है आंतों में, खासतौर आंतों के आखिरी पार्ट में, तो फिर वो जख्म ठीक नहीं होता है। और इसमें जो मॉडर्न मेडिसिन में दवाइयाँ देते हैं, या तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं या मेजाकाल वगैरह इस तरह की दवाइयाँ जो काबिज असरात रखती है, तो उससे किसी हद तक मैनेज तो हो जाता है, मगर चूंकि स्टेरॉइड्स का अपना एक ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए बहुत देर तक पेशेंट से इनको खा भी नहीं पाते हैं और बहुत देर तक वजूहत की बुनियाद पर वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमने क्या किया कि बंद गोभी का जूस दे दिया, आमले के जूस दे दिए, एलोवेरा के जूस दे दिए, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जो ये खसूसियत भी रखे है कि जिनको हम मुंदमिल कहते हैं, तो मुंदमिल जो जख्म का गाव जो है ना वो भरने में मदद देते हैं, मगर इसमें ट्रिगर फैक्टर्स हमें बंद करने चाहिए। इसी तरह से एक साहब और थे जिनको कमर का दर्द था 9 साल से, तो 9 साल के बाद इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों से ठीक हो गए।
1: क्या बात है।
0: तो एक और पेशेंट थी सबरीना, तो सबरीना हमारे डॉक्टर जान साहब के पास आई थी, इनको ब्रोंकियल अस्मा एलर्जिक राइनाइटिस का अर्जा था, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं अमूमन। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जितने भी इसने पहले ये दवाइयां इस्तेमाल की थी, एंटीबायोटिक ज्यादा फजूल उनका यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में चलो 7 दिन तक इस्तेमाल करें या 5 दिन तक इस्तेमाल करें काफी है, मगर आप फिर लगातार चलाते रहे तो खुदा न खास्ता। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे कि अमॉक्सिलिन जो है महीनों चलाया, साल भर चलाया और जुकाम था और फिर उसके बाद सिरोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस। तो इस तरह से इन चीजों में जब आपको लगे फर्क नहीं हो रहा है, इनहेलर्स पे है या दूसरी चीजों पे है, तो इनको हमारे पास आना चाहिए। ये सबरीना आज बिल्कुल सालों बाद जो है ठीक हो गई है,
1: क्या बात है।
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिजाज के ऐन मुताबिक एसेस करते हैं पहले और उसके बाद इलाज करते हैं। और जो हमने रेजिमेंटल थेरेपीज इसमें यूज किए हैं, बिलीव मी विदाउट मेडिकेशन 50% या उससे ज्यादा फर्क उसी टाइम होता है जब इस तरह के मरीज हमारे पास आ जाते हैं।
1: देखिए
0: मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हम ये पेशेंट्स यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज लाते हैं, तो यहाँ मकसद सिर्फ हमारा ये होता है कि भैया प्रैक्टिकली हम लोग पेशेंट्स को ठीक करते हैं। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, इनकी तकदीर ही अब यही होती है कि एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, दूसरे क्लिनिक से तीसरे क्लिनिक, तीसरे क्लिनिक से किसी हॉस्पिटल में। तो अच्छा, आप चूंकि जिस तरह की आज जो रिवायती तरीका इलाज है, जो इसका ट्रीटमेंट है, वो हर जगह एक ही जैसा होता है, चूंकि कंपनी अलग अलग होती है, तो इसलिए कंपनी या बल्कि उसूल वही है, उसूल से कोई हटता नहीं है। चूंकि जिस डिजीज में जोन सी गाइडलाइन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में है, वही सारा कुछ एक डॉक्टर भी देता है,
1: वही सारा कुछ
0: हमारे यहाँ भी। मगर चूंकि यहाँ पर हमारे यहाँ फिलॉसफी डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमारा जो तरीके इलाज है उसमें फलसफा डिफरेंट है, तो उस फलसफे की बुनियाद पर हमारा उसूल इलाज डिफरेंट है और इसीलिए हमें बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए अब अगर कोई चाहे कि हमसे मिलना, आज इतवार है, आज के दिन में अनंतनाग में जो हमारी क्लिनिक है यूनानी और पंचकर्मा हॉस्पिटल के नाम से, लाल चौक में है, HDFC बैंक के बिल्कुल सामने, तो आज के दिन हम वहाँ होते हैं। हाल ही में हमने पुलवामा में भी एक क्लिनिक शुरू की है, आयुष क्लिनिक, यहाँ पुलवामा के स्टेडियम के पास में एक हॉस्पिटल है, अलमदीना हॉस्पिटल, तो वहाँ पर एक आयुष सेंटर हमने खोल दिया।
1: जी जी।
0: तो वहाँ पर मैं कल

दिन यानी मंडे को रहूंगा, तो जो पुलवामा और मुतसिल इलाके के लोग हैं वो वहाँ भी आ सकते हैं। और इसी तरह से फिर ट्यूसडे को मैं सगड़ाहर चौक ईदगाह श्रीनगर में होता हूँ। अच्छा, इसी तरह से एक और सेंटर है हमारा यहाँ मागाम में बाजर सिंह के सामने, वहाँ हमारे डॉक्टर जान साहब होते हैं। और ये एक और क्लिनिक है हमारा यहाँ शुपियान कोर्ट रोड पे, वहाँ डॉक्टर अब्बास साहब होते हैं, डॉक्टर माजिद साहब ट्यूजडेज को होते हैं वहाँ पर। एक और सेंटर है हमारा खानका फैज पना त्राल में, वहाँ डॉक्टर माजिद साहब हर जुमे को होते हैं। तो इसी तरह से वहाँ डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर अर्शद साहब होते हैं। एक और सेंटर है हमारा बारामुल्ला में, और ये उर्दू बाजार में है, और वहाँ मैं हर थर्सडेज को होता हूँ। और वहाँ पर हमारे डॉक्टर फैसल मंजूर साहब हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पहले यूनानी स्किन स्पेशलिस्ट, तो जो वहाँ संडेज को बैठते हैं। इसी तरह से डॉक्टर जासिया जी हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स हैं जो बड़े तजुर्बाकार हैं। और एक और सेंटर हमारा नटीपुरा में है, वो वहाँ मैं

0: हमारे डॉक्टर फैसल मंजूर साहब हैं, वो सिकन स्पेशलिस्ट हैं, पहले यूनानी सिकन स्पेशलिस्ट तो जो वहाँ संडेज को बैठते हैं, इसी तरह से डॉक्टर जासिया जी हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स हैं जो बड़े तजुर्बाकार हैं। और एक और सेंटर हमारा नटीपुरम है, वो वहाँ मैं बुध को होता हूँ, वहाँ डॉक्टर रिफत जी हमारे साथ होती हैं और भी डॉक्टर्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी इंसान हमसे रابطہ कायम कर सकता है, हमारे नज़दीक वाले सेंटर पे आ सकता है, कोई हमारे साथ बात करना चाहे तो एक हमारा फ़ोन नंबर भी है जो हेल्पलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर है 9419408011। मैं दोहराना चाहूँगा 9419408011।
1: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होंगे और फिर बात करेंगे आपसे। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, तो लेते हैं इजाजत। अस्सलामुअलैकुम। खामोशी कुदरत की जुबान है, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोर्ट रोड शुपया, खानका फैज बनात्राल, सिकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, नायक बाग, नटीपोरा। सेल नंबर 9419408011।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 9 बज चुके हैं।
3: रेडियो कश्मीर से पेश की जाती
4: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
2: आज इतवार है, 28 जिलहजा 1447 हिजरी मुताबिक 14 जून 2026 ईस्वी। मकामी अखबार से ली गई आज की सुर्खियां लेकर मैं परवेज मीर
5: और मैं सकीना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह 7:10 पर हमने शुरुआत की थी, लाइव आपसे मुखातिब हैं। अब चूंकि अखबार जो यहां पे आते हैं डेली रूटीन में, सभी 6 सुर्खियों पर हमने नजर दौड़ाई। अब जो मेन सुर्खियां वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो 6 सुर्खी है सभी अखबारात में वो ये कि G7 सरबरा इजलास में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, वजीर अजम नरेंद्र मोदी, और तकरीब भारत और फ्रांस के दरमियान साले इख्तरा के पस मंजर में मुनक्कद की जा रही है। जी परवेज।
2: एक और रोजनामे की सुर्खी है, कश्मीरी पंडित बरादरी का बेघर होने से लेकर आलमी कामयाबी तक का सफर, जरात, हिम्मत और अजम की एक बेहतरीन मिसाल, नया जम्मू कश्मीर पंडितों की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल, वतन से बेदिली, शदीद तकालीफ और बेपना मुश्किलात के बावजूद पंडितों ने हार नहीं मानी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बेगर और दरबदर होने वाले एतमाद के साथ वापस आ रहे हैं, ये बजात खुद उम्मीद और नई शुरुआत का एक मजबूत पैगाम है।
5: एक उर्दू रोजनामे की 6 सुर्खी है कि गैर कानूनी हिजरत और आबादियाती तब्दीलियों का जायजा कमेटी को सरहदी अजला का खसूसी मुताला करने की हिदायत, वजीर दाखिला अमित शाह।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। अमरनाथ यात्रा को मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड QR पर मबनी ट्रैकिंग और ड्रोन निगरानी हासिल होगी। मरकज ने पहले ही यात्रा के लिए नीम फौजी दस्तों की 670 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है।
5: उर्दू रोजनामे की 6 सुर्खी है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत NDPS मुकदमात में जब्त गाड़ियों की अवामी नीलामी, पुलिस की मनशियात के खिलाफ मुहिम बराबर जारी।
2: अखबारात लिखते हैं, उर्स मुबारक सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया, बरसती बारिश के बावजूद हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी।
5: एक 6 सुर्खी है कि मुस्तकबिल की जंगे रवायती जंगी तसव्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, राजनाथ सिंह, बदलते हुए जंगी हालात के लिए जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा।
2: फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ मुकर्रर, 30 जून 2026 को संभालेंगे आला तरीन ओहदा, दहाइयों की खदमात के बाद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी की उसी दिन सुबगदोशी।
5: एक और उर्दू रोजनामे की 6 सुर्खी है कि शोपियां डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर

0: पेट्रोल खर्च बिल्कुल कम खरीदारी बापत करी रद्द कायम जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
1: वक्त के बाद सुर्खियों में आपका दोबारा खैर मुकदम करते हैं
2: जी। एक शेयर सुर्खी है उर्दू रोजनामे की, वो ये कि आलूची बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे को कानूनी मंजूरी, हाईकोर्ट ने तामीरती काम जारी रखने की इजाजत दे दी है।
1: खराब मौसमी सूरत हाल, मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें, दर्जे हरारत में कमी, बाहर के मौसम में भी सर्मा की ठंड महसूस, 17 जून तक बारिशों की पेशगी, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड्स के लिए एडवाइजरी जारी।
2: ये कह सकते हैं कल बादल छाए, मंडलाएं और बरसे, अभी हम बाहर नहीं गए लेकिन

0: ये मिली है कि अभी ओवरऑल है मौसम है ना?
1: जी बिल्कुल। और अब खेलों की तरफ जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 दूसरे दिन की झलकियां की अमेरिका की शानदार फतह, कनाडा ने गोलों की खुशकसाली खत्म कर दी।
0: और एक और खबर इसी वर्ल्ड कप के हवाले से, वर्ल्ड कप जीतने के लिए गोल ना करने की कुर्बानी भी कबूल है, ये कहना है एमबाप्पे का।
1: वेमेन्स टी20 वर्ल्ड कप मेजबान इंग्लैंड ने इफ्तिताही मैच में नई तारीख रकम कर दी। डेनी वियाटूज 105 और कप्तान नेताली स्कोरबंट 46 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही। तो समय ये थी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। प्रोग्राम प्याम सुब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
0: जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुब जारी है आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
1: परवेज मीर।
0: जी परवेज
1: जी,
0: तो एक बहुत ही खूबसूरत गजल अपने सुनने वालों के लिए मैंने क्यों करके रखी है, इब्ने इंशा का कलाम है। ये आपको याद ही होगा कि ड्यूटी पे हमने वादा किया था
1: कि ये गजल दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे।
0: इब्ने इंशा का कलाम है, अपनी शायरी में अलग पहचान रखते हैं जिसमें हिंदी और उर्दू के देसी अल्फाज का बेहतरीन जो इम्तजाज है वो मिलता है।
1: जी सकीना जी, उनकी यानी कि इब्ने इंशा की गजलें और नज़्में जो हैं बरसगीर के मकबूल तरीन कलामों में गिनी जाती हैं। उनका शुमार बुलंद तरीन शायरों में होता है और उनकी सबसे मशहूर गजल जो है इंशा जी उठो अब कूच करो, और जो दूसरी गजल उनकी ज्यादा मशहूर है वो आपने क्यों करके रखी है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे ना बोलूँ तो आप प्ले करें उसको।
0: क्या बात है।

0: जे कल चौदहवी की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। आज 14 जून है। पहले भी हमने शो में कहा कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। हमने एक ऐसे डोनर से बात की, ये मिस विंकर्शी पर वन नीच इसके खून चु दीवान मुझे सा कथ करने तुम वन शबीर सब शबीर अहमद खान ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। तो वारिया कोर तुम यम खून दीवान तुम तो पेश पेश यूजल मानने कि कोर बड़ बुजदिल आसान। मगर वनकस फोनस पे अख तिस बहादुर कूर जिन्होंने आज तक 43 मरतबा खून का अतिया किया है, इनका हम शो में वेलकम करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। ये सुनने वालों को मैं बता दूं कि कुपवाड़ा लंगेट से आप है बिल्किस आरा। आज 43 मरतबा आज तक इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। पहले तो आपको सलाम पेश करते हैं, सल्यूट आपको करते हैं, क्या क्योंकि आज के दिन का मनाने का मकसद ही ये कि आप जैसे लोगों को सराहना आपकी की जाए। तो बिल्किस पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, शुरुआत ब्लड देने की या डोनेट करने की वो तारीख क्या थी, कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे ब्लड डोनेट करना था, क्या इंसिडेंट हुआ था?
1: एक्चुअली मेरी कजन थी बारामूला में
0: जी,
1: उसकी डिलीवरी थी और नॉर्मल ही उसकी ड्यूटी हो गई थी। मैं चाहती हूँ ये खासकर मेरी वो अनमेरिड बहनें सुने,
0: जिनको
1: कल शादी हो जाएगी और उनको मां बनना है
0: जी।
1: और मैं ऐसे ही गई थी मुबारकबाद देने के लिए बारामूला
0: जी।
1: लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, लेकिन
0: जी
1: उसका ब्लड इतना लॉस हुआ था कि वो कोमा में चली गई। उसको रेफर किया एलडी, बारामूला वालों ने एलडी रेफर किया
0: जी।
1: और उसका जो हस्बैंड है वो पुलिस में था, लेकिन वो नहीं आ पाया था
0: जी।
1: तो मैंने सोचा कि हम जल्दी से पहुंचेंगे एलडी और हमें कोई मर्द साथ था भी नहीं
0: जी।
1: क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो भी आया था मुबारकबाद देने वो चला गया था वापस
0: जी।
1: तो हम जब जैसे ही एलडी पहुंचे तो उन्होंने बोला कम से कम 5 या 6 यूनिट इसको चढ़ाने पड़ेगी, ये लेकिन बचेगी नहीं, उसकी सीरियस कंडीशन थी। तो मैंने सोचा जब तक हमारे भाई लोग आएंगे
0: जी।
1: और मैंने उनको बोला कि मेरा ही ब्लड आप ले लो, लेकिन मैंने तब ना कोई टेस्ट किया ना कुछ, लेकिन डर गई थी मैं बहुत। मैंने सोचा मेरा खून निकालेंगे, पता नहीं मैं भी मर जाऊंगी शायद, फिर खून देने जैसे कि आज अभी
0: बिल्कुल बिल्कुल डर होता है जी,
1: जैसे वो डरते हैं
0: जी।
1: और मैं जैसे ही चेडी बेड पे और मैंने खून दिया, लेकिन मैंने आंखें वहां ही पे बंद की डर के मारे कि मेरा खून निकाला और पता नहीं मेरा क्या होगा। तब तक मेरे हस्बैंड भी आए थे और मेरे भाई भी आए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कल जब मेरी आंख खुली अच्छे से मैं होश में आई तो सब कह रहे थे कि बिल्किस ने तबस्सुम की जान बचाई। तबस्सुम है नाम उस मेरी कजन का
0: जी। यानी कि तब से आपने शुरुआत की खून देने की अपने ही घर से एक हिसाब से।
1: बिल्कुल हाँ, मुझे वो खुशी सी महसूस हो गई कि मेरी वजह से भी किसी, वो तो अल्लाह को बचानी थी, मैं एक जरिया बन गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 2012 की बात है, 24 जून था पहला यूनिट जब मैंने दिया था
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: फिर ये जज्बा आया, मैंने सोचा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा काम है और अजीम काम है
2: जी।
1: मैंने शुरू किया कि आज तक 43rd यानी कि मतलब मैंने डोनेट किया और मैं 3 बच्चों की माँ होके मिसाल एक बन गई हूँ उन भाइयों के लिए जो अभी भी भाई लोग डरते हैं, या मेरी वो बहन है जो अपने खासकर बीवियों को हॉस्पिटल में छोड़ते अभी भी भाग जाते हैं।
2: अच्छा बिल्किस जी, अस्वेन तो ये कि हम साथ हम तो वर्णिश लेटे ब्लड डोनेट करो, चूंकि सब वो कित पे कूरू तो तम पत कित पे आ तो ख्याल दिमाग
0: कंटिन्यू कर
2: बकर कंटिन्यू तो बाकी हाँ। जिंदगी ते कर गिफ्ट बाकी लुकन।
1: बिल्कुल आखमी लुकन होंदी उस लुकन होंदी वानन छ के बिल्किसन बचो पने माम तरबिन सुरोद में कि पत सुबह हेल्थ वर्कर ऑक्सीजन को पत ऊपर उसमें डॉक्टर मैं वन तो ये कोई ये फोन दिन से क्या चुगासन। तो शुक्र खुदा इस फोन के दुबके एम से छ ऑक्सीजन फोन बढ़ान बेच पानन पान ठीक रोजान। तो बरोज उस पर दिवनी दिवनी मेन गो पत रीजन के एज जिस आशा वर्कर काम करान कि मे उस पानन पेशेंट आख यस बो एज आशा वर्कर सुएट गए एलडी तेमिस उस हैंडी कैपेड खानदार उस तेमिस तैतील में ब्याक पॉइंट को डोनेट तेम के यिल पर पत सेंसिस करने वसुस गसान तात गाम असमज पत इस तेम से तम लकेट लकेट बच वानान तो विच वाज ओवर क्यों गए सुनाई बिल्किस दीदी यिन सुनाई मम्मी बचे हो
0: बिल्किस जी। तुहंद करो वन केना सठा सठा

के लिए शुरू किए गए इकदाम का जायजा ले रहे थे। नाज़िम तालीम कश्मीर ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वह मुहर्रम के पेश नज़र 23 जून से 27 जून के दरमियान स्कूलों में किसी किस्म का इम्तहान मुनक़द न करें। आज खून के अतीय का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज वादी में भी मुतादिद रजाकार और सेहत तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। आज के दिन लोगों को इंसानी बका के लिए खून का अतिया देने के लिए रागिब किया जाता है और दूसरी तरफ उन लाखों रजाकारों को खराज तहसीन पेश किया जाता है जो बिना किसी मुआवजे के दूसरों के लिए खून का अतिया देते हैं। आसाम के जोहाट हवाई स्टेशन पर कल भारतीय फौज के तैयारे AN-32 को एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में भारतीय फजाया के 5 एहलकार जांबाक हो गए। एयरफोर्स की जानिब से जारी किए गए एक बयान में इन अहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है। फजाई ने हादसे में रंजुगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों से गहरी ताजियत जाहिर की है। हादसे में एक पायलट जिंदा बच गया है जिसका इलाज जारी है। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.4 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज़।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जीवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी। सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
3: लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह छुत बोजान आकाशवाणी श्रीनगर पे तो बुस परवेज मीर मे सत
4: सकीना।
3: सकीना जी ये सात कश्र बतन हाँ कश्र साजच कहान ट्यून अन पान दिलस मे पैद ग लाई इंसान जन तान सवान नीन
4: परवेज यह हको वन कि अदब बुनियाद तो अमुक रूह चुशर शरी
3: बिल्कुल
4: जदीद शरी ऐसा या क्लासिकी शरी सूफी शरी ऐसा या कशर वनवन गरज कशर शरी प्रथ रंगस मज पुन अलग मकाम हासिल
3: बिल्कुल
4: वो कशर तहजीबुक सकाफत रूहानियत बल्कि वनो मोहब्बत इज्तमी शुहूर सानशर शरी मज मौजूद
3: बिल्कुल सही बल्कि शरी रवायत गई सूफी फिक्र शुरू
4: बिल्कुल
3: सानशि अदबी सरमाय दामन वसी सानी शरी मे मौजूती बाडो तूहानी इखलाकी असलाह तसानी यकजहती हूं तरबियत अरुत बुरुत गर तो गबर ताकार पट नुन जिस जन इंसानस रुत फील कर
4: बिल्कुल सही तर अत मानसानी यकजहती हूं या तरबियत यकजहती पे पे मे याद कि बत अस्ह थोमत कर आलव
3: अच्छा
4: नाद अख दक अस चूंकि पनिस ट्रांसमिशन मे कर आज थीम आसान गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड तो
3: बिल्कुल
4: ये खबर करो तो शेयर कि पंडित बॉय आई योर
3: बिल्कुल
4: पन्न गरम नजर दिने तो इंसान ये महसूस करान इन बट बायन सतान बहान पस मिस कर तम तो मंजिल खाब तो इंसान वह पत वह मे हसा वो मतलब तमने सान पान पान बह आलो कलाम ये
3: अर्जुन देव मजबूर साहब
4: तो यह तम बट बायन डेडिकेट यम वापस तुरन यहां तम तहे दिल वेलकम कर यह बात बूजत बाकी तीय पसंद तम तारे

0: मौके पर मौजूद लोगों ने बैंक के इस इकदाम की सराहना की और इसे खुश आइंद करार दिया।
1: इतने सालों से किराए देते देते लाखों रुपए चले गए, तब भी कहने को किराए का घर है। अपने घर का सपना सपना ही रह गया।
2: अब सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। J&K बैंक हाउसिंग लोन के साथ किराए से अपने घर तक का सफर तय कीजिए। स्टार्टिंग एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ जस्ट 7.35%। स्पेशल ऑफर टिल 6 जुलाई। J&K बैंक, आपका अपना बैंक।
3: दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर बैंक और हुकूमत जम्मू कश्मीर के माबैन एक MOU पर दस्तखत हुए, जिसकी रूह से मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हजारों डेलीवेजर्स और कैजुअल वर्कर्स को JK बैंक की जानिब से मुख्तलिफ मरात दी जाएंगी, जिनमें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी शामिल है। इस MOU पर एक बावकार तकरीब में दस्तखत हुए, जहां चीफ सेक्रेटरी श्री अदल डल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, JK बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी और चीफ जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन की सरपरस्ती और मौजूदगी में इस MOU पर JK बैंक की जानिब से जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा ने, जबकि J&K गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस राकेश कुमार संगराल ने दस्तखत किए। इस MOU का मुद्दा व मकसद डेलीवेजर्स को मुख्तलिफ बैंकिंग और लोन सहूलियात किफायती शरह पर मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट डेथ और 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट परमानेंट डिसेबिलिटी मुहैया कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक के लिए ये MOU एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है, जिसके तहत समाज के इन अहम अफराद को समाजी तहफ्फुज और माली शमूलियत के दायरे में लाना है। वाज़ह रहे कि इस इंश्योरेंस कवर के लिए दरकार प्रीमियम की रकम जम्मू कश्मीर बैंक बर्दाश्त करेगा। चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डल्लू ने इस MOU को तारीखी करार दिया और इसकी अमलावरी के लिए उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट और JK बैंक की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस इकदाम से इन लो पेड डेलीवेजर्स और उनके अहले खाना को माली और समाजी तहफ्फुज फराहम होगा और नागहानी आफात के दौरान उनकी फैमिलीज के लिए एक माली सहारे का काम करेगा। जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने हुकूमती कोशिशों की तारीफ करते हुए इन वेलफेयर मेजर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल वेलफेयर की जानिब बैंक के अमले इकदाम का मजहर करार दिया। उन्होंने कहा कि हजारों ऐसे डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स को यह सहूलियत बिला किसी इम्तियाज हासिल होगी और बैंक ऐसे लोगों के योगदान को सलामी पेश करता है।
0: दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक को गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब कौमी सतह के इदारे IIBF ने बैंक को अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से नवाजा। मुंबई में मुनक्किदा इस तकरीब में ये अवार्ड JK बैंक की तरफ से जोनल हेड मुंबई फरहान इरफान काउसा ने हासिल किया। इस अवार्ड पर तबसरा करते हुए बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने कहा कि ये एक फख्रिया लम्हा है, जब हमारी कोशिशों और काबिशों को कौमी सतह पर एक बार फिर जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि बैंक अपने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज और स्किल्स को जदीद टेक्नोलॉजी और नए तकाजों के ऐन मुताबिक बढ़ाता रहता है, जिससे कि हम इंडस्ट्री के हमपल्ला रहें। इस अवार्ड के हुसूल से ये बात साबित होती है कि ह्यूमन कैपिटल अपस्किलिंग के मैदान में बैंक न सिर्फ फुल्ली कॉम्पिटेंट है, बल्कि अपने हम असर बैंकों की फहरिस्त में टॉप मोस्ट रैंकिंग पर फाइज है। उन्होंने मजीद कहा कि हर कामयाबी नए चैलेंजेस और नई जिम्मेदारियां लेकर आती है, और ये अवार्ड हमें मजीद मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि ये वकार बरकरार रखा जा सके।
3: दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्ता महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से JK बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किन को फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं JK बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, JK बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: शमीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 क्या है और इसे राइज करने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे?
4: जावेद साहब, ये स्कीम जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
3: DFS से।
4: इसका जो मकसद था, वो जो अभी हमारा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात आलमी सतह पे जो बने हुए हैं, उनकी वजह से जो हमारे बिजनेसेस हैं

0: जो हमारा कारोबार है
1: जी
0: वो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी मुतासिर हुए
1: मुतासिर हुआ
0: हैं,
1: है। जी,
0: तो उन बिजनेसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक स्पेशल स्कीम राइज की है,
1: जिसे
0: जो
1: हम
0: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के नाम से जानते हैं।
1: अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकते हैं और क्या-क्या फायदे उठा सकते हैं, तो उसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिसको हम सीसी कहते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
1: अच्छा, क्या फायदा दे सकते
0: फायदा
1: हैं?
0: ये है कि जो भी उनका लिमिट है, सीसी का एक लिमिट होता
1: लिमिट होता है,
0: है,
1: बिल्कुल।
0: जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
1: माने
0: एक
1: पहली जनवरी 2026 से
0: छब्बीस से
1: 31 मार्च 2026 के बीच में।
0: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है, जितना
1: अच्छा,
0: भी उन्होंने यूटिलाइज किया
1: हाईएस्ट
0: है,
1: जो यूटिलाइज किया हो।
0: जो यूटिलाइज किया है, उसका 20% हम फरहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी,
1: एज एडिशनल क्रेडिट,
0: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
1: जी,
0: हम देंगे।
1: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे, ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब अदा होगा?
0: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
1: डब्ल्यू
0: सूरत
1: सी टी
0: में,
1: एल
0: डब्ल्यू सी टी एल जिसको हम
1: जी
0: बोलते हैं,
1: जी
0: उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे
1: सर्व करना
0: करना
1: है।
0: है
1: जी,
0: और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना
1: माने अगर कोई
0: पड़ेगा।
1: आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा, तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
0: हाँ
1: पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो भरना होगी।
0: जी,
1: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
0: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है, ये 2,55,000 करोड़, जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
1: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द अज जल्द इसका
0: सही
1: फायदा उठाना
0: सही
1: चाहिए।
0: फरमा रहे हैं
1: जी
0: आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द से जल्द ये हमारी ब्रांच के साथ राबता करे और इस स्कीम का फायदा उठाए।
1: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि गुज़श्ता कई दफ़े ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने, तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाबता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का। क्या इसमें भी वही तरीक़ेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
0: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना
1: जी
0: चाहता
1: जी
0: हूँ कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1 वो
1: एलिजिबल है।
0: एलिजिबल हैं, लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचों को ये जो
1: एलिजिबल
0: इसमें जो
1: बॉरोवर्स
0: एलिजिबल
1: हैं,
0: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
1: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकामात सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
0: कि हमारे बैंक ने बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई है
1: ओके
0: हमारे ब्रांच की तरफ से। वो जो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन है वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं।
1: नहीं है।
0: तो जो एलिजिबल हैं उनको मैसेज भी गई है, काफ़ी सारी बोरोज़ को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता
1: जी
0: हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोज़ को, वो जन समर्थ पोर्टल पर, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो
1: अच्छा,
0: घर
1: ऑनलाइन
0: से ऑनलाइन
1: प्रोसेस।
0: प्रोसेस में जन समर्थ पोर्टल पर, और वहाँ भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत
1: इजी है।
0: सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के। ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुँच जाती है,
1: पहुंचाए,
0: तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की जरूरत
1: कोई
0: भी
1: जरूरत
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है, ब्रांच विजिट्स भी नहीं है।
0: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है, वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉग इन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे
1: को
0: बैंक
1: रूट
0: तक
1: होगी।
0: रूट हो सकती है। और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाए।
1: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामद गुफ्तगू के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो
0: शुक्रिया
1: मच।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
2: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा

0: हासिल कर रहे हैं, जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुंचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
2: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि हालिया दिनों जेएनके बैंक को कौमी सतह पर किस जुमरे में और कौन सा अवार्ड हासिल हुआ।
1: इस सवाल का सही जवाब है गोल्ड अवार्ड इन फिनेकल इनोवेशन।
2: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं
1: कश्मीर डिवीजन से खुनमु श्रीनगर के तोहा पीर, जम्मू डिवीजन से रामबन के सविंदर सिंह और लद्दाख से हुंदू लेकी रिगजिन डोलमा।
2: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
2: दोस्तों, आपको बताना होगा कि

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: रशीद, अगर हर इंसान ये सोच ले कि दूसरों के अकायद और नजरियात का एहतराम करना भी अखलाक का हिस्सा है, तो मुआशरे में बहुत सी कशीदगियाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी।
2: समय बदकिस्मती से आज हम मसलकी और फिरकवाराना इख्तलाफात का शिकार होते जा रहे हैं। छोटे छोटे फिक्र ही इख्तलाफात ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है।
0: हालांकि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इतिहाद की बात की, उन्होंने कभी लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की, बल्कि दिलों को जोड़ने की कोशिश की।
2: आज सोशल मीडिया, अफवाहें और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगु माशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है,
0: और सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान नस्ल का हो रहा है, क्योंकि नौजवान जब नफरत भरी बातें सुनते हैं तो उनके जहनों में भी तकसीम पैदा होने लगती है।
2: नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। अगर नौजवान मोहब्बत, इल्म, बर्दाश्त और मजबूत सोच अपनाए तो माशरा तरक्की करता है।
0: लेकिन अगर नौजवान नफरत, तासुब और शिद्दत पसंदी का शिकार हो जाएं, तो पूरी कौम मुश्किलात में घिर जाती है।
2: इसलिए वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और समाजी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को सूफिया की तालीमात से रोशनास कराएं।
0: हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि इस्लाम मोहब्बत, अमन, रवादारी और इंसानियत का मजहब है, न कि नफरत और तकसीम का।
2: सामईन, एक वक्त था जब कश्मीर में मुख्तलिफ मजाहिब और मसालिक के लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे।
0: ईद हो या दिवाली, शादी हो या गम, लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। यही कश्मीर की असल पहचान थी।
2: आज भी अगर हम चाहें तो उस माहौल को दोबारा जिंदा कर सकते हैं।
0: जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने दिलों से नफरत निकाल दें और मोहब्बत को जगा दें।
2: सूफिया ने हमेशा इंसानियत की खिदमत को इबादत करार दिया। उन्होंने भूखे को खाना खिलाया, बीमार की तीमारदारी की, मजबूर का सहारा बने।
0: वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने किरदार से मिसाल कायम करते थे।
2: अगर आज हम भी अपने माशरे में इंसानियत, खिदमत और हमदर्दी को फरोग दें तो बहुत सी मुश्किलात कम हो सकती हैं।
0: समीन, किसी भी माशरे की ताकत उसके इत्तेहाद में होती है। जब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं तो माशरा मजबूत बनता है,
2: और जब नफरत, तासुब और फिरकवारियत बढ़ती है तो माशरा कमजोर हो जाता है।
0: रशीद, अब एक अहम पहलू की तरफ आते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि माशरे में नफरत बढ़ गई है, लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
2: रिफत, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी रूहानी और अखलाकी बुनियादों को कमजोर होने दिया। हमने मादी तरक्की को तो अहमियत दी, मगर अखलाकी तरबियत, रूहानी अकदार और इंसानी रिश्तों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
0: बिल्कुल दुरुस्त। हमारे सूफी बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि इंसान की असल कामयाबी उसके दिल की सफाई, अखलाक की खूबसूरती और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में।

0: आज इंसान के पास सहूलियात तो बढ़ गई हैं, लेकिन दिलों का सुकून कम हो गया है। रिश्ते मौजूद हैं, मगर मोहब्बत कमजोर पड़ती जा रही है। लोग करीब रहते हुए भी एक दूसरे से दूर महसूस होते हैं।
1: इसीलिए सूफियाई किराम दिलों को जोड़ने की बात करते थे। वो कहते थे कि अगर दिल आबाद हो जाए तो माशरा खुद ब खुद आबाद हो जाता है।
0: सामईन, सूफिया की जिंदगी का एक अहम पहलू उनकी गुफ्तगू और रवैया था। वो सख्त से सख्त बात भी नरमी, हिकमत और मोहब्बत के साथ करते थे।
1: आज हम देखते हैं कि मामूली इख्तलाफ पर जुबान में तलखी आ जाती है। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ नफरत आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तंज करते हैं, तज़हीक करते हैं।
0: हालांकि हमारे दीन और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अच्छी गुफ्तगू की तालीम दी। एक नर्म लफ्ज भी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, जबकि एक सख्त जुमला बरसों की मोहब्बत खत्म कर सकता है।
1: अगर हम अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी, बर्दाश्त और एहतराम ले आए तो बहुत से झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।
0: कश्मीर की खानकाहें, दरगाहें और मसाजिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत, खिदमत और समाजी इत्तेहाद के मराकज भी थीं।
1: वहां हर तबके, हर सोच और हर पस मंजर के लोग आते थे। कोई अमीर था, कोई गरीब।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: अगर नौजवान सूफिया की तालीमात को समझ लें तो माशरे में अमन, बर्दाश्त और मोहब्बत के सबसे बड़े सफीर बन सकते हैं।
2: सामिने मोहतरम, मायूसी कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। अगर आज हालात मुश्किल हैं तो कल बेहतर भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, कश्मीर की सरजमीन ने हमेशा मोहब्बत और रूहानियत को जन्म दिया, यही इस वादी की असल ताकत है।
2: अगर हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को अपनाया, एक दूसरे को माफ करना सीखा, दिलों से नफरत निकाली और इंसानियत को तरजीह दी तो यकीनन आने वाला वक्त ज्यादा रोशन होगा।
0: और फिर एक बार दुनिया कश्मीर को सिर्फ इसके हुस्न की वजह से नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत, अमन और इंसान दोस्ती की वजह से पहचानेगी।
2: ए हमारे मालिक, हमारे दिलों से नफरत, तासुब और कीना दूर फरमा।
0: हमें मोहब्बत, बर्दाश्त, सब्र और इंसानियत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमा।
2: हमारी वादी को अमन, सुकून और खुशहाली नसीब फरमा।
0: और हमें अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने वाला बना।
2: आमीन। सामिने किराम, अब आज के प्रोग्राम रेडियो साथी से अपने मेजबान रशीद निजामी और रिफत आरा को दीजिए इजाजत। सुना करें
0: रेडियो साथी
2: हर एतवार सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक, रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9

0: 9001960.
1: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर। नन्हे मुन्हे बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त करेंगे होनहार।

0: देर से पकड़ी जाती थी, अब एआई उन्हें जल्द आइडेंटिफाई कर लेती है। यहाँ तक कि कुछ रोबोट्स ऑपरेशंस में भी मदद कर रहे हैं। मस्नूई जहानत के फवायद। मस्नूई जहानत आज के दौर की सबसे अहम टेक्नोलॉजी में से एक है। इसने हमारी ज़िंदगी को आसान, तेज़ और ज़्यादा मौसर बना दिया है। एआई के चंद अहम फवायद दर्ज ज़ेल है। वक्त की बचत। ऐसे काम चंद सेकेंड्स में कर सकती है जिन्हें इंसानों को मुकम्मल करने में घंटों या दिन लग सकते हैं। इससे वक्त की बड़ी बचत होती है। कारोबार में तरक्की। कंपनियां एआई के ज़रिए सार्फीन की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में समझ सकती है, मार्केटिंग को मौसर बना सकती है और अपने अखराजात कम कर सकती है। इससे कारोबार की कारकर्दगी में इजाफा होता है। गलतियों में कमी। इंसानी गलतियां बाज़ औकात बड़े नुकसान का सबब बनती है, जबकि एआई दुरुस्त मालूमात और तज्जिये की बुनियाद पर काम करके गलतियों के इम्कान कम कर देती है। खतरनाक कामों की अंजामदही। रोबोट्स ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो, जैसे बारूदी मवाद को नाकारा बनाना या आफात से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। ज़री शोबे में मदद। किसानों को फसलों की निगरानी, बीमारियों की निशानदेही, पानी के बेहतर इस्तेमाल और पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम करती है, जिससे ज़री तरक्की मुमकिन होती है। साइंसी तहकीक में तेज़ी। लाखों सिफात पर मुश्तमिल मालूमात का तज़िया बहुत कम वक्त में कर सकती है, जिसे नई अद्वियात, साइंसी दरियाफतों और तहकीकी मंसूबों में तेज़ी आती है। मस्नूई जहानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जो सेहत, तालीम, कारोबार, ज़राअत और तहकीक समेत तकरीबन हर शोबे में तरक्की के नए दरवाज़े खोल रहा है। अगर इसे ज़िम्मेदारी और दानिशमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो एआई इंसानियत के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकती है। शुक्रिया।
1: अलीना
2: जी, अलीना क्या सुनाएंगी आप?
1: एक से दस तक। एक था तोता, दो थे मोर, करते थे वो मिलकर शोर, तीन हिरन और चार थे बंदर, फुर्ती थी बहुत उनके अंदर, एक दिन आए पांच शिकारी, हो गए सब बेहदारी, छह थे कुत्ते साथ में उनके, जंजीरी थी हाथ में उनके, डर कर बोला एक हिरन, आए हमारे ये दुश्मन, पिछले बरस भी आए थे, सात बंदूक लाए थे, आठ मर गए उस दिन खरगोश और है बेहोश, नौ या दस थे लोग वहां पर, लाल टोपी थी उनके सर पर।
2: लाल टोपी थी उनके सर पे, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा सफेद रंग का नकाब ओढ़ा है। ये किसने खरीदा आपके लिए?
1: मामा ने।
2: मने तो पापा कुछ नहीं लाते हैं आपके लिए?
1: टॉयज।
2: टॉयज लाते हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। देखें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक नन्हा सा बच्चा पहली बार शायद प्रोग्राम में आया है। आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है आपको?
3: फिर
2: गाना सुनना आपको? अच्छा, देखें इन्होंने गाने की फरमाइश कर दी, तो चलें पहले बच्चों को एक नगमा सुनवाते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ा।

0: जी, क्या नाम है आपका?
1: जाहिद।
0: जी जाहिद, क्या सुनाएंगे?
1: जालिम बादशाह।
0: जालिम बादशाह।
1: जी
0: जी।
1: एक बादशाह बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। इसी ज़माने की बात है, शहर में एक बुज़ुर्ग रहते थे। सब अमीर और गरीब दिल से उनकी इज्जत करते थे। बुज़ुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते। एक दिन कुछ लोगों ने बुज़ुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाइए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो, इससे किसी बात का असर नहीं होता। सच ही कहा बुज़ुर्ग ने, जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो उसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का उस पर कोई असर नहीं होता। शुक्रिया।
0: क्या नाम है आपका?
2: मोहम्मद इजाबत।
0: जी, क्या सुनाएंगे आप?
2: मेहनत की अजमत।
0: मेहनत की अजमत।
2: आज मेरी तकरीर का मौजू मेहनत की।
0: तकरीर करेंगे आप? हाँ।
2: मेहनत की अजमत है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। दुनिया में कोई भी इंसान मेहनत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग अपने मकसद को हासिल करने चाहते हैं वो दिल लगा कर मेहनत करते हैं और मुश्किलात का मुकाबला करता है। अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते
0: और मेहनत कश

0: की हमेशा जीत होती है। आज क्या बात है? हाँ, आप तो हमेशा तोते की तरह बोलते हैं। आज मुझे लगता है आप कुछ मायूस हैं। झगड़ा किया है आपने किसी से? अच्छा, शादी पे गए थे। देखिए, अब शादियों का सीजन भी है और खूब बच्चे वाजवान खाएंगे। सब बच्चों को वाजवान पसंद है?
1: हाँ।
0: पसंद है? जोर से बोलिए
2: जी बाजी।
0: और बच्चों को तो लेकिन ज्यादा जंक फूड पसंद होता है। आपको भी पसंद है? पसंद है, बोलिए। सच सच बोलना चाहिए ना, सच बोलना चाहिए। खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन कभी कभार और खास कर कोशिश ये किया करें कि अपने घर में बनी हुई चीज़ें खाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ या आपको जहाँ पे गारंटी होगी यहाँ पे साफ सुथरा आपको खाना मिलेगा, बस वहीं पे हमें खाना चाहिए। क्या नाम है आपका?
3: सिल्विया।
0: जी सिल्विया, क्या सुनाएंगी?
3: पेड़ों की अहमियत। पेड़ इंसानी जिंदगी और माहौल के लिए अहम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं, हवा को साफ रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। ये पेड़ों और ये परिंदों और जानवरों को खुराक और पनाह का फराहम करते हैं। इसके अलावा पेड़ लकड़ी, फ्रूट्स और मुख्तलिफ अद्वियात का जरिया है, जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अता करती है,
0: अदा करते हैं।
3: शुक्रिया।
0: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम ज़ैनब फ़याज है।
0: ज़ैनब फ़याज, क्या सुनाएंगी?
4: मैं इल्म के फ़ायदे सुनाऊंगी।
0: जी, इल्म के फ़ायदे।
4: इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इल्म हमारे अच्छे और बुराई की पहचान करवाता है। इल्म से हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। इल्म से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इल्म हमारे अच्छे और इंसान बना सकते हैं। इल्म से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इल्म से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इल्म से एक लाजवाब दौलत है। इल्म से हम अपने खौफ पूरे कर सकते हैं। शुक्रिया।
0: ये बात बिल्कुल सही है कि इल्म से हम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। कुछ जैसे आप, अभी मैंने आपसे पूछा, कोई बच्चा आप में से 8th में पढ़ता है, कोई 6th में पढ़ता है, कोई 10th में पढ़ता है, आपको अपनी पढ़ाई को ना कुछ साल देने पड़ेंगे, जब तक कि आप प्रोफेशनल्स में ना चले जाए। हाँ, बेसिक जो है आपके बेसिक, जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाइए, फ़ोन ज़रा कम चलाइए, तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देगी। हाँ, ये एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना कोई ज़ाया कर सकता है। और इल्म ऐसी दौलत है, आप इसको जितना बांटेंगे उतना इसमें इजाफा होगा। कोशिश करें आपके किसी छोटे बहन भाई को, आपके किसी दोस्त को आपकी हेल्प चाहिए हो पढ़ाई में, तो ज़रूर करें। तो चलिए आप सभी को एक नगमा सुनवाते हैं।

0: तो चलें कुछ ऐसी ही बातें आपको, अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारे दोस्तों के बहुत काम आएंगी।
1: बच्चा मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन। इस दिन सारी दुनिया में 14 साल तक की उम्र के बच्चों की जिस्मानी मजदूरी पर रोक लगाने के लिए फिक्रमंद लोग, सरकारें और निजी इदारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए लोगों को बच्चा मजदूरी जैसी जिल्लत से अपने नौ उम्र बच्चों को दूर रखने की तरगीब देते हैं। इन प्रोग्रामों की तशहीर के लिए मीडिया के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनकी तमाम कोशिशों का ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत नतीजा हासिल हो सके। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आज अपने नौ उम्र बच्चों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइल्ड लेबर बच्चों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आप जानते हैं कि तमाम दुनिया में 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जदीद तालीम हासिल करना उनका बुनियादी और आइनी हक है। कोई माँ बाप, कोई इदारा या कोई कारखाना बच्चों को जिस्मानी मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ये कानूनी जुर्म है। बचपन जिंदगी का खूबसूरत दौर होता है। यही वो वक्त है जब बच्चों को तालीम के साथ साथ खेल कूद, तफरी जैसे मशगलों में अपना बचपन गुजारना चाहिए। यूं वो अपने ख्वाबों की तामीर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती और लाचारी के सबब बहुत से बच्चे इस उम्र में स्कूल जाने के बजाय अपनी और अपने घर की रोजी कमाने में मेहनत मजदूरी करते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा मजदूरी एक आलमी मसला है। गुर्बत, पसमानदगी और लाचारी और समाजी ना बराबरी इसके अहम वजूहात। घर की आमदनी में इजाफा करने की लालच बच्चों को बुनियादी तालीम और खुशगवार मुस्तकबिल से महरूम कर देती है। प्यारे बच्चों, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। ये वो ताकत है जो इंसानों को जहालत और बेखबरी से निकालकर इन्हें समझदार और बासलाहियत बनाता है। ऐसा बासलाहियत बच्चा कल को बड़ा होकर अपने समाज का एक बाइज्जत हिस्सा बन जाता है और यूं अपनी कौम की खिदमत करने का अहल करार पाता है। इसके बरक्स जब कोई बच्चा अपनी नौ उम्र में मेहनत मजदूरी में लग जाता है तो इसकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा रुक जाती है। अक्सर ऐसे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं और कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। दुनिया में करोड़ों बच्चे चाइल्ड लेबर के मुसीबत में गिरफ्तार है। ये बच्चे अगर तालीम व तरबियत पाते तो पूरी दुनिया इनसे फायदे हासिल कर सकती थी। ताहम वालिदैन की मजबूरियां और हुकूमत की गैर संजीदगी इसे बड़ी आफत से छुटकारा पाने में बहुत हद तक जिम्मेदार है। आज के दिन हम सब पूरी संजीदगी से सोचें कि बच्चा मजदूरी को किस तरह से खत्म किया जा सके। हुकूमतें

0: आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपनी नई नई नज़में, नई नई बातें हमें सुनाने के लिए। हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
1: खुदा हाफिज़।

नन्हे मुन्ने बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार। पेशकश समीन आशा। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेवस पेज समय पेज हृदय कॉल भारतीय सुन लिखमत कौशु ड्रामा वन ईयर

0: sé, que muchas veces ni le das. ¿Ah?
1: ¡Ojo!
0: ¡Se estripas que ya estoy bola, te quiere!
1: ¡Y chuna!
0: ¿Qué ha chuna? ¿Todo taxi?
1: ¿Se me mete gasa chus?
0: ¿Qué homo?
1: No, mate gasa na. ¿Y chuna no master? ¿Master G?
0: ¿Ah?
1: ¿Tas que gos? ¿Quina? ¿Qué gustos gasun?
0: Me basan de magi chus.
1: ¿De magi qué?
0: ¿De magi chuna malum? Achri, me basan sedshu thoda thoda demagi.
1: Demagi hai demagi, matlab bavla, pagal.
0: Vaisi chu soda jamaat pormut, magar sekit parche pata. Amish soda jamaat pormut, ha?
1: Me prustas na?
0: Achya, bhi kya prustas?
1: Bhi kya? Bhi kya? Bhi na ki?
0: Ta, ut prustas kasi yuta san? Subi, se chuk dunyas vanan pagal.
1: Bawla, me chubasan se yu bawla chuna ka? Et par has kasi yuta san?
0: Et par na ae.
1: Pat kat par adu?
0: Ye chuna no master ji?
1: Ah, buzum. No master ji. Yus prenis master sin badla amut chu.
0: Kas let vana ki hoik akat?
1: Se chuk na broken vane diwante?
0: Van vil vil.
1: Me go saak se.
0: Master ji hai khor, sen hun as कुलिस
1: कित पॉट
0: स्वामुत पानिन किन बेचार दिलावरस खबरे
1: कंता मिड़कन ता स्वर्मुत सुचस बीमार
0: हुन हमुत तस लारे
1: तुसु
0: सुकुनी वड़ कुलिस खत्मत
1: अच्छा
0: मैं तुई हुन सिंस वोपराय पॉट बदराय सुकुनी वड़ नेबर
1: अच्छा जो मास्टर जी कुलिस अलवाद गुमत
0: मेला इस क्रैक जी बोन वास हुन कौर में बांध मगर सुकुत तासु सुस त्यूत प्रेट से अति पर छूस प्रसान हाँ बस कर ची दोत मैं दो पस हाँ हाँ मैं क्या बिच्छू बाबा ना दीवान हाँ
1: बाबा
2: ये
1: बाबा ये क्या आये
0: बगा सस्वेन हाँ बाकी बोझ ना बस पगा हाँ
3: अच्छा
4: सुखे जोसुक, आला देवान देवान गोज में रग तंग कोई चक।
1: ब अश्रीनिश।
4: अश्रीनिश क्या करन? करन कत? बच्चस दपान से शुना मगज दे थकान यूत कत कर केरी।
1: हाँ ओ बाबा बकाशुस कत करन बशुस खामुश कत्शुस।
4: दरअसल बुई करन।
1: अच्छा सिक्या जोसुक में सांडन क्या गसी?
4: ओ वैसे भी कच्ची कच्ची मज गई मैं मस्ती यह ची बोई दापान दौड़ जामा खबर वैसा मैं तो भी वो हरगास गोड़ मास्टर जी स्प्रस्थक जी दौड़ दीमोसा की
1: ना बाबा मास्टर जी डॉक्टर माचुस सुक्या
4: गास स्प्रस्थस तालीम याफ्ता चुस सियाना आसान तास ऐसी खबर अक तो नहीं तसी ये सोच हिंदी आज मैं ही किस दिलावर नियत
5: ओए कुब्रिया इक्यास
4: मुहान सब कुब्रिया क्या दिली है
5: बाबा मैं कुछ दोस्त सुबह
0: सुबह उसे मास्टर जी ते खबरी आमुदन दापान उस पगाताम गसस दिलावर जरूर ठीक
5: वाना पुत मैं क्या जी कुछ ना तेरे
0: हाँ से उसे ना नेंदर तान साथ दापुन इकरेस आराम तो पगाताम
5: मैं कुछ दोस्त
4: अच्छा से ठहर ठहर बुसोस नहीं वोइन बेनी मास्टर जीस वो जो सुधी क्या मशवर दियस सोबी तेरे को भी सुगत कुनी टिकी मास्टर जी
0: हाँ अच्छा
4: ये सोचे हैं तीन जस
0: अच्छा
4: वार वार
0: अच्छा।

0: हूँ, मैं चूजार वान बन की जरी सुत कुछ करस मगज मारी है गेख नाराज। अच्छा वान क्या दलील?
1: हाँ ये चुना मास्टर।
0: ओहो मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी सोबी ए टेरस में छुना तस बगार बे काम बासन।
1: अच्छा था बवा नहीं नवन
0: सेमा छी माजर आमद कत कत पर चुस नाराज गसन। अक्का तपे
1: क्या
0: चोर नाराज गसन छी में असर लगन इतना असक इतना असक इतना असक अभी वन वन
1: ये दोस कपर छलान
0: कुस देलवारे
1: नाई
0: अधिकुस बाबा
1: ना

0: बाबा
1: बाबा
2: कुछ मास्टर जी
1: बाबा बोस जस्तो खालवक्त करें यछन तब आयो स्योर
2: वन
1: बाबा ये
2: मास्टर जी के नाकार कच्छ था पहाड़ पहाड़ फिर सु शेर खानस दिलती संगला घूमत वो हकस की बोझित मास्टर जी वनन कैस जसना
1: बाबा बाबा भैया वनन छुसिया छन तिगुस म्यानी तरफ म्यून का जुट या बुजुर्ग वनन मगर मगर बुछुस अमिरंग ते बद नसीब जुट ते पाने तो कोंस ते
2: मास्टर जी से शुख खुदा इन दाना गुरमुत क्यों वक्त छुसना कहीं सिरोजन
1: बाबा बाबा बुछुस आज ते बुजुर्ग जनित के मंगुनिया छन बाबा सुबी सुबी तो बाबा
2: मास्टर जी मैं चुस मालूम से क्या चुस वनुन यसान तापस मुझ छुमना इन बाल सफेद गुरमुत
1: बाबा
2: मास्टर जी से चुस परमुत ल्योखमुत सयाना चुस से सोच पाने इच्छा मुमकिन
1: मगर क्या है बाबा क्या
2: मास्टर जी मास्टर जी मैं मत समझूस गलत बुछस न इससे पेट नाराज मेरी खबर सुशुक जान लड़का रुत लड़का चुस
1: बाबा
2: मगर मगर बुछस सुबी हुन सोचान सुछस नादान ना समझूस क्या कर सो से सुच तस तस तगहत से जिंदगी गुजारी सु सु रोजा खुश
1: बाबा
2: मास्टर जी आज चुस बकरवाल लोग सुद सादा मर्ग मर्ग बाकी बाकी फेरन वाली यह चु सोन जिंदगी यह चु सोन दुनिया पन्नस खिलिस पन्नस चब सत मस्त असना बे कहीं पता कहीं चुसना तगान
1: मगर मगर बाबा तस क्या
2: न न न न मास्टर जी न न तस तस गचस कास सुर रोजस ना खुश सुर रोजस ना खुश
1: बाबा शायद शायद चुक से ठीक बनन बारगा चैन जाए आस जहरा जहरा कर बुते चैनी पट अकिस वपर लड़कस इथे पट शक बुछस ना वपर वापर छुसना
2: गुबरा

0: क्या जी, क्या सरकस पर आसान
1: के नहीं चेनिस पलवंता करनस पेट
0: क्या जी छोसा तागन
1: बिल्कुल मगर इथे च सना कसर बान रोजन
0: क्या कसर
1: चानी पतलोन यूर बहावे यात चिन पजाम पेटा करन आत ची ये तो पच यात पुजेरे ते दशवेनेर यक जरा डन त पत ये तो पच मंजस आ दोगुन करा ऐसे
0: अच्छा अच्छा तो रूम फिक्री सर मचराउस में भी बहावस
1: रस हाँ
0: इत पच इत पर्ट इत पर्ट
1: वेरी गुड
0: क्या
1: यानी जान नफीस बड़ जहीन चक्त की हावन रुदी याद
0: क्या चस
1: जहीन अकलमंद दाना त
0: सियाना अच्छा अच्छा वंगुस काफी तारीफ वन के सगोट बात तो पदगेस मदरसा शेर
1: न तूत वक्त छुन हर गब चीर वोतस लड़क दपन यानी मास्टर जी ने खांदर कोर तन छुस परनावनी मस्जिद को
0: से क्या फाका देखा तेली
1: मिशन वैसे ते बोच फनी
0: गोशे से सॉरी वक्त कसन मस बर्बाद करा
1: मिशन आ चाने कत बत खत ते
0: अच्छा अच्छा बस बुझ मुछ छुस तारीफ हां निरवन वन गेस से सेट

0: सुभी जान,
1: क्या दलील? सकाफ़ यूथ खोश
0: सुभी सुभी सुभी मिशबासन सायक में फटो तकदीर है।
1: मगर मास्टर जी दलील
0: मास्टर जी ना असलम क्या?
1: अच्छा ती
0: क्या ती
1: असलम वन वन दलील क्या चुस
0: सुभी सुभी बिचुस पास मिश बुलाओ आमुत ये यू चिट
1: क्या चुस पास
0: IAS इम्तिहानस तीन फिक्रे बोस ये इम्तिहान दु इंसान बोर्ड अफसर बनान सटा बोर्ड अफसर क्या तुरी फिक्रे
1: तोरू फिक्रे बोर्ड अफसर बना मगर ये कत कर अफसरी जंगलस तीरन
0: अफसरी
1: वैसे त
0: अमे करो कि बड़ी शहर मज अफसरी फिलहाल आ मे तरबियत बापत गुन तो बनमन पन सू

0: सुबी, क्या दलील?
1: हाँ, कीना, कीना।
0: ना ना, तुझे कड़े थावन, क्या था हम दलील छे? तुझन गए खने खोश?
1: ना ना, ना खोशी चेस, इशु से बासन।
0: तले में कुन विच? सुबी, क्या दलील क्या छे? तू कौन बनान?
1: कीना, की तिना, की तिना।
0: ते क्या पेरांची? समाचक बेकर वंचे से नेरनस खबर कृत्या तो तो तो तो वंचे पटे उशारुन तिकरित आके न ताके दोष ऐसे नेर ये ती माय बीट मैं सनासी तब्दीली तेल नेर हो ना
1: हाँ काश चुस ऐसे क्या सुन
0: आज गई बहुत बार ये मैं जुमाने के बेजुमाने रहवोस
1: हाँ नाव जुमा
0: अदे
1: कीना कीना अदुस बाबा आमुत तिमन तुझे तमी दो ये ते डेर तोलन
0: अद ठीक है चित तिम नेरन पानिस पड़ावस पेट इस नेरो पानिस पड़ावस
1: हाँ असी अस गासोस ना तिमन सुई थी
0: क्या करने अस क्या काम चिताई थी सुबह सोन माहौल छुए अलग सोन दुनिया छु अलग अस क्या करने का चाहतो और
1: हाँ सचुस न स्वजाय वशमुत सुचु सेम खुद सचा खूबसूरत अचुस बहुत मारंग हाँ हाँ हाँ बस चुस पतली मुश्किलवान हाँ त्यूत गन यारी जंगल चुस था बात अच्छी चुस पार वादन यारी कुल स्थल बीत छांग संभरावान
0: बस यो तो ही सुबह अस्युत गाथन चु स्वजाय चा एम खुद खूबसूरत ताई दिवस चक्से तिम चीज़ इनमें से ज़ंग बच में त्यास नहीं तो मशी सोरी ताई दी तल भी बहुत तो वों अथ वादन बुचिस दे आब फशे बस क्या करते हो बाबस नीश सुधी बोझ ना वों खुश खबर
1: हाँ अच्छा
0: कर जल जल बुसे इन्हें ब्रकाई प्यारा

0: सुधी
1: सुधी तू क्या कराना इतना दार पर होदनी
2: की ना दार के लिए से सड़क्यू तमाशो शान
1: ये तो थजर पर क्या ऐसी से बोझ नहीं वान
2: की ना
1: अच्छा थजर स्पेट
2: वारिया थजर स्पेट
1: छी पता यत पोरस मंज इस बसान छना ये छु मकानुक सत्यम पोर
2: आवे छुस यत पे लुकी में क्यों यू बसान स्टीली बन की ना सुस पागन इस्तासुस के नी बसान
1: अगर अस्ते का ये ते थजर पर पूछाना है
2: इम इम सारी लुक छसा इतनी कम है मज रोजा
1: कितन कम रन मज
2: इतन मज अशुस रोजा
1: ये में को तो लुकटन कम रन मज सुबी इस जाय छन प्रतिके से लौट सकता
2: है इन मासेस दाम गसन तेले तेल क्या जमीन की सल्लार
1: चतरी ने फिक्री ओहो मैं गो मस्ती तुझे चीच वर्ज मत अच्छी रही हैं
2: अच्छा
1: दिलावर से अच्छे लेखने हो मत
2: क्या चुना इस लेखन
1: ये क्या बो बोझना वत
2: जनरल बोझना वत
1: बोझ लेखन ची लेखन ची मेन टर्ट सुबी खुश रोज यंत्र गया
2: तंचुम निकुनी मस लगान ना खेनस ना फेनस ना यारी कुलस्तल भेद छांग सुमरानस बाबा ते दिलावर ची जान बैठ बाबा चुस तो हो एक कामे वैसे पत क्यों याद पावन स सब परचना कहाँ पे गिरता संस रात के इस पल तक कुलस पटनक यह तल इस पारवादर बयान है स सुबह हम साक याद अश अश भुकाम चिना दबान लोग चार को नबनार तीज बोस खबर याद चुई

0: 死呗！死呗！家的给的。
1: 给呢，没有事的，我们发些干了，阿那西，大伟呀。
0: 哦，不是不是，没跟朋友我跟做那啥。बस बैठ गुज वारिया कालस नस यानी सियो रहा है सुबह पाजरवें से तो चकने ही थे खुश
1: हाँ बब बुशस खुश सेठा खुश मैं क्या तकलीफ चुसी थी बच्चों सेठा खुश
0: अच्छा बहुत कर आराम तशीन जरा तबीयत ठीक
1: मैं चुस्ती बासन
0: शौक से बकरे बिजली से सगा एक ना होनी तैयार
1: मगर आज कोच उस गासुन
0: ओहो गोई से सुपर है मशीन अशना पार्टी पर गासुन
1: गासुस से ब
0: कर मजर तुम चीज से यह था मुझुन तो तू रोज हंस गारी
1: हाँ मैं चूस ना ये पार्टी वार्टी खोश करान तो चूस आसान बदली लूक तुम चूस बदली कर करान बहल आसान बहल खोश आसान
0: अच्छा कर मन चल चल पद किसने चेयर मैं चुप आसान यह लागी रो उत्ती तल से बहुत
1: अच्छा
0: कर चल चल तुम आसान प्यारा

0: गांव स्थिर किन्न पार्टी शुरू करूँ गोड़स नहीं टैक्सी ते रही हिंट पर पकान आज मैं जल्द नगर से ये सी कालस में निशान
1: पाकुस पाकुस ब्रोंबर बिताएस
0: अच्छा
2: हेलो आसलम कैसे सब लोग बढ़ सी है भाभी जी का इच
0: ये क्या सच पकान
2: अच्छा बोल सु
0: अमा ये सुबह कुछ ना गई
2: आई ना मुझे भाभी जी
0: ये क्या पकान है ऐसे कथा इसका नाम कैसे थी ये क्या बू सुबी सुबी सुबी क्या इतना स्कनाल हो दस मुझे
1: कीना कीना
0: ना इतने से रुदस मन सर रिसर्च है गमस तो सब क्या जिन्ना ने बोली सैंडल का इच्छा इसे करूँ मुझ
1: खबर खबर क्या को उसमें ये संसार ये शेजार वशित खोरजम को उस पाने पे काबू मैं गोस ना दरअसल वारिया वारिया काले सब्जार
0: सुभी
1: सुन गाबस बस जस्ट ठीक बिल्कुल ठीक
0: ना चकले ठीक पाखो देदनस गसक रुदस में सर्च हाँ सुभी चेची बुखार सोचे को मशीन लिख दा जाते पक्सन बलाई पार्टी पगार गा सब
1: ना ना चास ने ना अंदर
0: ना ना इसने कांटी प्यारा न पगार गा सब सुशु आराम उग जरूर पा वाले वाले तावे तस पलंग स्वीट आराम

0: आकाश प्रिंसेस पोस्ट पोस्ट फ्रेंड्स
1: क्या
0: से सुषमा फेरान आज मैं कैच करूँ सोबी ही नादान लड़की से
1: सोबी समाचक मर्द
0: पोशे स्वालन यानी दस लोगों से वारिया तकलीफ वारिया तक
1: से क्यों मुन्ने में वो तकलीफ मैं होने जा पाते थे शंग कुछ कुछ बुखार को तेज चुई
0: अच्छा अच्छा
1: पेस नेंदर मुझ कृता कृत्य मस्चे जंचुस हर्द लोगमुत खबर गोस क्या
2: अज्यस मर्ग मर्ग बहक बहक फेरन मैल बकरबाल सुद सादा अच्छुसना के पता के तगा न मास्टर जी ना सुबी रोजसना से सुई खोश सुबी सुबी रोजसना से सुई खोश से सुई खोश सुई खोश
1: हो सुबी सुबी
0: त्रेश त्रेश हाँ?
1: त्रेशक टर सुबी
0: हाँ
1: चत्रेश बस ये क्या संख्या खोतन हिश गमुच
3: सुबी

0: अच्छे अच्छे
1: सुभी
0: आज
1: सुभी क्या दलील ख्वाब है इसको शन सुभी बाबस निश गस कहीं अच्छी हूँ ची फेरन बाद मु बुसोस अच्छा बाबस निश
0: ना ना ना बुबे मस ये थी सेनिश
1: सुभी बच्चों से त्योत खोद कर
0: से क्या कर हंस ये थी
1: बप्रारे से तमाम उम्री प्रारे
0: मगर जिंदगी पेट
1: सुभी ये कथी मगर शंक समझ शंक शंक हर गाने बच्चों फुनिते सोचत ये वन यहर पे ये हरित आते चे अंधेरे अंधेरे ससुर तो प्रार्थना को बहाने दिखे च खत्म सुभी सुभी बगर पग ही चाहिए खासन को बंदोबस्त पग ही

तो इस वो भोजन हृदय कौल भारती सुन लुकमत का शो ड्रामा वन ईयर ये मातमस काम करन वाल कलाकार तीमस ओमकार खजांची प्राण चंद्रा गोला फ्रोज सजाद हुसैन गोला मोहम्मद तोबी आशा जारो ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेवस्पेट सेनिस दैन सैलान प्रार पेश चकर सदा कार्य गोला मोहम्मद शेख बंडपुरती यहन सथी यम करन पेश कला में अहद शेख

भर गया सही पत दिल्ली भर घर अस नत कोई दिन भर भर गया सही पत दिल्ली भर घर अस्त

0: چھس خست خاطر بوگ مات کس ون تمی دوج چھس کھم
1: چھس خست

0: अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को

0: भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead.

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और अशार थे जान निसार अख्तर के। फिल्मी गजलें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज आप तक FM 2 103.5 MHz पर भी पहुंच रही है।

करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की हम खाक हो गए।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप ये गजल समाप्त कर रहे हैं। ये अशार है समीर के।

0: फिल्मी गजलें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। ये आवाज थी अनुराधा पोडवाल की, अशार थे समीर के। बारह बजकर 30 मिनट होने वाले हैं। पेश है यहाँ से खबरें, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर नीस पहुंच गए हैं, जहां भारतीय बिरादरी के अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनसे पुरतपाक अंदाज में मुलाकात की। नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में वहां के अपने हममनसब इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। दौरे के दौरान वो फ्रांस के सदर से बाहमी मफादात के कई मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म

0: और 17 जून को फ्रांस में G7 इजलास में भी शिरकत करेंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसा जदीद मसनूई हीटिंग निज़ाम तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइज कन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान सोम मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया, लेकिन अब इसरो महकमा जो जौहरी तवानाई के साथ मिलकर एक ऐसा जहाज तैयार करेगा जो चांद की सतह पर 200 दिन तक काम करने का अहल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय नजरिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने, समाजी हम आहंगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मालवीय के नजरिए की मुनासिबत से विकसित भारत और जम्मू कश्मीर के मौजू पर मुनक़द एक नशस्त में खास मेहमान की हैसियत से खिताब कर रहे थे। इससे कबल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कन्क्लेव से खिताब करते हुए कश्मीरी पंडित बिरादरी से कहा कि वह जम्मू कश्मीर में सनती, तालीमी और सकाफती इदारे कायम करें ताकि उनकी बेमिसाल सकाफत और तारीख महफूज हो सके। LG ने यहां से बेदखल किए गए लोगों की वापसी को न सिर्फ खुशाइन करार दिया बल्कि इसे एक फतह से भी ताबीर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी जन्म जयंती पर शानदार खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने 1947 में पाकिस्तानी दरअंदाजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि आबपाशी ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने मौसर और बरवक्त पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसम ने मुतलक अफसरान को हिदायत दी है कि वह पानी के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं ताकि काश्त के मौसम में किसी भी किसान को मुश्किल का सामना न करना पड़े। वजीर मौसम रफियाबाद बारामुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान आबपाशी के बुनियादी ढांचे के काम का जायजा ले रहे थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने जेर जमीन पानी की सतह में मुसलसल कमी और बारिशों के मुतवक्का रुझानात पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम नई तामीर होने वाली सरकारी इमारतों में बारिश का पानी जमा करने का बुनियादी ढांचा लाजमी तौर पर नसब कराने की जरूरत उजागर की है। वजीर मौसम ने पानी के इंतजाम के तरीकों में तब्दीली और इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करने की ताकीद की है। वह जम्मू में जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ गर्मी के मौसम की जरूरियात से निमटने के लिए शुरू किए गए इकदाम का जायजा ले रहे थे। सेक्रेटरी देही तरक्की और पंचायती राज मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सफाई इंतजाम की मनसूबाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि 99 से पंचतरनी के अहम मकाम पर 3120 स्टेशन पॉइंट्स नसब किए गए हैं जिनमें 2755 टॉयलेट पॉइंट्स और 365 गुसलखाने शामिल हैं। वो सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में हिफ्जान सेहत के हवाले से इंतजाम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने मुतलक एजेंसियों को इंतजाम में सुरत लाने की हिदायत देते हुए काम को मुकर्र वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर व डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने डेटा जमा करने के दौरान दुरुस्तगी के आला तरीन मियार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को हिदायत दी कि हर इंदराज सही तौर पर रिकॉर्ड और मुकम्मल तौर पर तस्दीक किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मामूली गलतियां मर्दमशुमारी के डेटा के मियार और मुस्तकबल की पॉलिसी साजी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। वो दीगर अफसरान के हमरा मिनी सेक्रेटेरियट गांधरबल में मर्दमशुमारी 2027 के तहत जिले में जारी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की पेशरफ का जायजा ले रहे थे। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान ने नौगांव रेलवे स्टेशन का दौरा करके यहां श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रियों की सहूलत के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वह तमाम जरूरी इंतजाम वक्त से पहले मुकम्मल करें। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कायम किए गए कायमगा और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। आज खून के अतीय का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज वादी में भी मुतादिद रजाकार और सेहत तंजीमों की जानब से ब्लड डोनेशन कैंपों का अहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। खुदा हाफिज।
1: आदाब। यह आकाशवाणी श्रीनगर खबरों हम बुलेटिन हेतु खुर्शीद अहमद। वजीर अजम नरेंद्र मोदी फ्रांस तो स्लोवाकिया किस शन दोहन हंदि सरकारी दौरस पे नीस वित ये तिम भारतीय बरदरी शानदार इस्तकबाल कोर तो वजीर अजमन कोर तिम मुलाकात। नरेंद्र मोदी तुलन आज फ्रांसस अंदर तत्किस पन्नस हमन सब इमेनुअल مہ خانس سارت انوویٹس 10 دورس دوران کرن تم فرانس کس صدرس ست

0: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव स्पेट बापजित अक्त जी मिनट सबित पेश कशिर मौसकी। आगाज़ मु पेश कलामे हामदी कश्मीरी सदाकार अब्दुल रशीद फराश।

0: लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program,

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: Sunday Request Show is being broadcast live on the primary station of Akashvani, and now we are playing the entire track by Madonna, and the track is titled Like a Prayer.

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर। एक बजकर 1:50 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में बारी बारी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बाज़ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। कोलंबो में 5,000 से ज़्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा।

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के हमराह अब से कुछ देर बाद नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेज़ी के साथ फ़रोग पाते इख्तराई इको निज़ाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैखों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी क्लीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमानुअल मैखों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी क्लीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी तआवुन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैखों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निज़ाम, मसनूई ज़हानत, सरमायाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाहिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मेयारी हिफ्ज़ान सेहत को और ज़्यादा कम खर्च और ज़्यादा लोगों तक बहम पहुँचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फ़ख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्ज़ान सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमज़ोर तबकों के लोगों को आला मेयार के हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ़्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत, PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ्जान सेहत के मुख्तलिफ इकदामात तक हिफ्जान सेहत की मेयारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने पर ख़ास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदामात से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफ़ी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नजरिए को फरोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ्जान सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदामात में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की जिंदगी, मेयार और मजमू सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में सबका साथ सबका विकास के नज़रिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फ़ायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुँचें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव स्पेट पेश कशर गजल आगाज मे पेश कलामे मजरूह रशीद पेश करन वहीद जिलानी।

0: वो निभाते हैं, बिकॉज डिजास्टर रेस्पॉन्स इंजीनियर्स आर द डिजास्टर रेस्पॉन्स. उसके बाद जब उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, यू गिव देम हाउसेस, यू अगेन गिव देम रोड्स, जो फ्लाईओवर इंजीनियर्स आर अगेन इन्वॉल्वड. सो डिजास्टर मैनेजमेंट, वी कैन नॉट थिंक विदाउट इंजीनियर्स, वी कैन नॉट थिंक विदाउट इंजीनियर्स एंड मशीनरी. मैं तो इस तनाजुर से कभी इंजीनियर्स में हमने रिकमेंड भी किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आप बाजाबता एस्टैब्लिश कीजिए थ्रू इंजीनियरिंग विंग्स. जो आजकल हो रहा है, इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिजास्टर में.
1: इंजीनियर फिरदौस साहब, अब वाटर और सैनिटेशन का इशू है, इसमें जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है काफी इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जैसे हमारे जल जीवन मिशन है, रिमोट विलेजेस में काम है, वाटर सप्लाई स्कीम्स के बारे में है, फ्लड कंट्रोल है, इरीगेशन सिस्टम्स है, और जो हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन है. पहले दो नुकते मैं आपसे उठाना चाहूंगा. पहले ये जल जीवन मिशन किस तरह से, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है दूर दराज गांवों में, देहात में, उनमें कैसे किया जाता है?
0: बेसिकली ये जल शक्ति जी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको पहले बोलते थे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये उनके डोमेन में आता है. उनके इंजीनियरों ने जो जल जीवन मिशन, जो भारत का एक मिशन था, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था कि हर घर जल से पानी पहुंचना चाहे, इस मिशन में भी
1: नल से पहुंचना चाहे.
0: इस मिशन में भी जम्मू कश्मीर के इंजीनियर पीछे नहीं रहे. देर इज हैवी प्रोग्रेस. आज मैक्सिमम एरियाज जहां पे पानी की बहत आती है, यहां की बात नहीं है, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कुपवारा, टंगडार, उन एरियाज की जरूरत है जहां पे इंजीनियरों ने वाटर की कैपेसिटी भी इंक्रीज की और वाटर की अवेलेबिलिटी भी
1: सप्लाई हो गई रेगुलर.
0: डिपार्टमेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, दे आर वर्किंग सेटल ऑन इट. कि जहां पे फिर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स का ज्यादा रोल बनता है. कहीं कुबार वाटर सोर्स ग्रेविटी थ्रू नहीं चलता है तो वहां लिफ्ट सिक्यूम की जरूरत पड़ती है, जहां इलेक्ट्रो मैकेनिकल, जो मान ले कि एक लो हेड से हाई हेड को पानी चढ़ाना है, एक नीची लेवल से बड़े पहाड़ पे चढ़ाना है, तो मैकेनिकल मशीनरीज का इस्तेमाल होता है और वहां पे प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना डिजाइन, अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके उनको फिर डिस्ट्रीब्यूशन में फिर सिविल का रोल बनता है. कलेक्टिव एज अ टीम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इस जल जीवन मिशन में बहुत कामयाब हो चुके हैं. मैं वसूख से कह रहा हूं कि बहुत मेहनत की इंजीनियरों ने इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत इंप्रूव्ड है वाटर स्कार्सिटी इन जम्मू कश्मीर.
1: तो फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन सिस्टम्स और ये जो हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे आपको पता है कि 2014 फ्लड हमारे आंखों के सामने, 2014 फ्लड के बाद इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो ड्रेजिंग हो, चाहे वो जैलिम हो, नालाज की हो, तो उनकी प्रोटेक्शन हो, बंड प्रोटेक्शन हो, इसमें इंजीनियर्स ने हमेशा रोल निभाया. दे बिकम एज एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट्स. वो लोगों को अवेयर भी करते हैं कि आप ब्रिज नहीं होना चाहिए, कैसे करते हैं, एनक्रोचमेंट मत कीजिए. इनमें हमारे इंजीनियर जो भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है, सिविल है, मैकेनिकल है, वो लगे हुए हैं लोगों की बहबूदी के लिए, कि ताकि दोबारा इन फ्यूचर ऐसा दोबारा न हो, 2014 जैसा फ्लड न हो. बट रेस्ट इट इज इन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बट इंजीनियर्स आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल गोइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज थिंग्स.
1: तो ये हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन, इसका मतलब क्या है?
0: ये एक स्कीम में होता है कि जब हम डाटा लेते हैं कि पानी कहाँ चढ़ाना है, इसकी कौन सी पाइप लगेगी, कौन सी डाया लगेगी, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, इसके ऊपर इंजीनियर बाजाबता डिजाइन के तौर पर चलता है और डिजाइन के बाद वही इंस्टॉल करता है. कि इसमें भी आज बड़ी वैरायटी आई है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी हैज केम इन दिस इशू, कि आज बड़े मटेरियल, डक्टाइल, बाकी चीजें, जीआई पाइप्स, उनमें भी बड़ी वैरायटी आई है. उसमें भी इंजीनियर बाजाबता वर्ल्ड को और इंडिया के साथ पेज बाय पेज चल के यहां पे टेक्नोलॉजी बन कर.
1: तो इंजीनियर फिरदौस साहब, क्या आप इस बात पे, इस नुक्ते पे ये कह सकते हैं कि ये जो काम है बहुत ही बारीक बीनी से किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है, एक प्लान के तहत, और डिजाइनिंग जो आप करते हैं एज एक्सपर्ट्स, तो इसमें वो सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है जो रिक्वायरमेंट है?
0: आज जितनी टेक्नोलॉजी सर है, उतने उसके असरात भी हैं, वो डिमांड भी कर दी. आज डिजिटल जमाना है, आज हमारी जो टेंडरिंग है, बिलिंग, वो भी ऑनलाइन होती है. लोगों के जो मुश्किलात है वो भी विद इन 5 मिनट, चाहे वो LG ग्रीवेंस सेल, CM ग्रीवेंस सेल, वो वहां पहुंचते हैं. तो उनके मुताबिक
1: सोशल मीडिया का जमाना है.
0: तो सोशल मीडिया के मुताबिक इंजीनियर ने भी अपने आप को अपडेट किया है अकॉर्डिंगली. दे आर लिविंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ, बट दे आर ट्राइंग टू डोंट कॉज एनी पब्लिक इनकन्वीनियंस ओवर दिस हाइड्रोलॉजिकल और वाटर इश्यूज आर कंसर्न.
1: इंजीनियर साहब, एक असेसमेंट जो है, जनरली असेसमेंट्स आ रही है, एक्सपर्ट असेसमेंट्स भी है, पब्लिक ओपिनियन भी है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ओवर टोपोग्राफी है, टेरेन है, और डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, रोड्स, हाईवेज या पहाड़ी एरियाज हैं, मुख्तलिफ अलग अलग तरीके का टेरेन है, तो इसमें जो स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के हैं, बिकॉज जरूरत है इस बात की, क्योंकि स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, या एलिवेशन चैलेंज, या कुछ और बहुत सारी चीजें, यानी अनयूजुअल, अननेचुरल और अनएक्सपेक्टेड चीजें होते हैं, जैसे हम ये जो कैलेमिटीज आती हैं, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए?
0: इसमें तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो हमारी है वो इस पे काम कर रही है. जैसे कि आपको स्नो क्लियरेंस का हम बताएंगे, PWD में मैकेनिकल जो हमारी विंग है, उन्होंने इतनी एडवांस मशीनरी, जो मशीनरी

0: एट पार भी जर्मनी है, यूरोप के साथ है, कि अगर पहले रोड कनेक्टिविटी जो अब स्नोफॉल होती थी तो शुपियन का या कुपवारा का बंदा श्रीनगर पहुंचने में उसको 6 घंटे लगते थे फिर रेस्टोरेशन में, आज इतनी क्विक मशीनरी अवेलेबल है, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंजीनियर्स के पास कि रोड मुझे नहीं लग रहा बंद हो रहा है। सिंपली देयर इज अ पाज, पाज तो होता है नेचुरल कॉलमिटीज के दौरान, उस पाज में वो प्रिपेयर होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ रोड्स की, अगर आज खुदा ना खासा कहीं हो भी जाता है, कोई एवलेंची आ जाती है, मशीनरीज एंड इंजीनियर्स आर सो रेडी, सो फुली इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी कि वो उसी वक्त उसको रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं, एंड पब्लिक डज नॉट सफर।
1: पावर एंड एनर्जी सर्विसेज जो हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, इनका काम ये है या वो जो काम करते हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें?
0: बेसिकली जो जम्मू कश्मीर इज रिच इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिटी, क्योंकि यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी थी, जो जनरेशन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल होता है, जो भी पावर हाउस है, उड़िया है, बाकी हैं, जो दुलहस्ती है, गांधरबल है, सिंध है, जो भी जहाँ चलते हैं। उसके बाद इम्प्रूव रोल जो हुआ है वो है कि ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैज प्लेड अ वेरी क्रिटिकल एंड वाइटल रोल, दे वर्कड हार्ड, आई लॉसेस कम किए हैं, आज मुझे नहीं लग रहा है कि फॉल्टी की वजह से कहीं पावर किसी बस्ती में चला जाता है। अच्छा। उनकी जो केबलिंग हुई, उनके जो नए कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर्स हुए, यानी इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट नए आए उनमें, उन्होंने उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की कि कनेक्टिविटी रहे पावर की, अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे, तो दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग इट।
2: समीन, हम अपने इस प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे में भी कह चुके हैं कि मस्नूई ज़हानत इंसानियत का मुस्तकबिल है, और जो अकवाम इस शोबे में महारत हासिल करेंगे वही दुनिया में तरक्की याफ्ता होंगे। मस्नूई ज़हानत हमारे मुस्तकबिल को किस तरह मुतासिर करेगी और क्या ये रोजगार के वसाइल में कमी का बाइस बनेगी, इस सिलसिले में जब शोबे खबर ने विजन डिजिटल इंडिया के बानी डॉक्टर हरी कृष्ण मारम से बात की तो उन्होंने जवाबन कहा,
3: What are the latest, teaching methods to understand artificial intelligence by students at primary school level and from primary, just like you earlier mentioned, from primary to, doctorate level or the university level or the, research level. So how students could be, could be helped to take advantage of AI way we can see?
4: I think it's a very wonderful and right question. Today, what we are doing at Vision Digital India is we developed a product, looking at a lot of research and traveling across the world and seeing the trend of this artificial intelligence from last 10 years and predicting the wave. हमने एक नया product लॉन्च किया है, ये product का नाम है AI Trainer. So this AI trainer is a quite helpful to learn artificial intelligence ka bare mein. ये स्कूल में भी यूज होता है, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी यूज होता है। उसका एडवांटेज क्या है? इट्स अ मोबाइल एआई ट्रेनर विच इज डेवलप्ड इंडिजिनियसली, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, हमने खुद बेंगलोर में ये बनाया है। सो ये लेके हमने स्कूल्स में एआई लैब्स सेटअप कर रहा है। ये बच्चों, द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फेमिलियर विथ कोडिंग, दे आर नॉट फेमिलियर विथ द कंप्यूटर्स, सो उसको हाउ वी कैन एबल टू ट्रेन द एआई, बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थियरी से नहीं चलता है, ये प्रैक्टिकल वे में हमने ट्रेन करे तो बच्चों को अच्छा समझ में आएगा, उसलिए हमने सोच के ये प्रोडक्ट अच्छा डेवलप किया है। हमने लास्ट 1 ईयर से दिस प्रोडक्ट इज गोइंग सो स्ट्रांगली, मोर देन 100 प्लेसेस वी डेवलप्ड एआई लैब्स। अभी हम जम्मू कश्मीर में, लडाख में भी एआई लैब स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, बिकॉज नाउ द स्कूल्स आर गेटिंग ओपन, यू कैन सी इन कश्मीर, इन ऑल अराउंड दिस एआई ट्रेनिंग लैब्स will be created in schools and colleges. This will be a definitely game changer in AI education, because pehle hum faculty ko train kar raha hai, faculty ka inhibition hai whether they can able to teach AI or not. So lot of schools, especially state like Jammu Kashmir, bahut shortage hai teaching faculty ka, teachers ka bahut shortage hai, usme AI train karne wala ka shortage bahut badhiya hai, so it's a launch. So how we can overcome this, that's how this mission is created. So pehle hum concentrate karna hai faculty ko train karne ke liye. Already we started doing this training program, hands-on experience using this mission. So we are getting a very good result. The level of confidence faculty ke liye bahut acha aaya. So now they are very confident that they can able to teach artificial intelligence

0: easy way. And if faculty को confidence आया, then definitely student will get a more benefit. So वही है हमारा कदम, that is the goal of Vision Digital India. हमने already we started working and our team is traveling around Jammu Kashmir to educate people on this. So in the next 2 years, I think definitely AI education will become a primary factor in all educational institutions. Definitely India will take advantage because when you look at across the world, small countries are progressing so high, taking advantage of AI. Why not India, with so much talent, so much human resources, youth and talented pool of people, IT companies, government policies, ye sab mila ke humne this advantage we have to take. If we don't take this advantage this time, then definitely we will miss the great opportunity.
1: Thank you very much, Dr. Hari Krishna Maram ji.
2: समीन, वजीर अजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली एनडीए सरकार ने अपने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 12 बरसों के दौरान हुकूमत ने जो आवाम दोस्त इकदाम किए हैं, उनमें टैक्स इस्लाहात खास तौर से काबिले जिक्र हैं। इन टैक्स इस्लाहात का भारत के इक्तसादी मंजरनामे के साथ साथ आम लोगों पर क्या असर पड़ा? शोबे खबर ने वादी के मारूफ सहाफी और कौमी रोजनामा इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर असिस्टेंट एडिटर इरफान हकीम के साथ इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने कहा,
3: हकीम इरफान साहब, लोगों के जहन में जब टैक्स आता है कभी घबराहट होती है, लेकिन इस टैक्स को हम कैसे समझ सकते हैं? टैक्स का मतलब क्या होता है? क्या हम में से जो भी हम लोग हैं, क्या हर एक शख्स टैक्स पे करता है?
4: तारिक साहब, एक मशहूर इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि टैक्स ये एक चार्ज है जो हम पे करते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी होने के लिए। तो अगर हम आम फाज में समझे तो टैक्स गवर्नमेंट आपको एक चार्ज या फी, एक परसेंटेज फी आपसे लेती है आपके बिजनेसेस पे, आपकी प्रॉपर्टीज पे या आपके सैलरीज पे, ताकि वो आपके जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी गवर्नमेंट के काम है, उसमें वो पैसा खर्च करे। तो ये कोई वॉलंटरी डोनेशन नहीं है, ये एक मैंडेटरी एक स्लैब है, परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग्स। आप किसी भी, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक बड़ा कॉर्पोरेट हो, तो आप एक चार्ज गवर्नमेंट फी करती है आपको, ताकि जो लोगों के जो, और वो तबका जो टैक्स नहीं दे पा रहा है, उनके लिए भी आपका एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ओवरऑल सोसाइटी सिविलाइज्ड रहे, डेवलप्ड रहे और तरक्की याफ्ता एक सोसाइटी को एंश्योर करने के लिए हर कोई गवर्नमेंट एक चार्ज फी करती है, जिसको हम आम जबान में टैक्स का नाम देते हैं।
3: तो इरफान साहब, क्या टैक्स देने में लोगों को कबाहत होनी चाहिए? आई मीन दे शुड फील रिलक्टेंट और दे शुड फील वेरी, यू नो, दे शुड कम अप वॉलंटियरली।
4: देखिए, अगर आप एक जिम्मेदार शहरी हैं और आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो ये आपकी एक ड्यूटी है कि आपका जो गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स मांग रहे हैं वो टैक्स आप पे करें। क्योंकि मैंने जो इसे कहा कि टैक्स आपका किन चीजों में लगता है, आपकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी स्कूल्स है, आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स है, आपके हॉस्पिटल्स है, आपके रोड्स है, आपके हाईवेज है, या आपका बाकी जो डैम्स है, जो आपके टनल्स है, जो इस हाईवे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगता है वो लोगों के टैक्स का पैसा लगता है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है और आप एक सिविलाइज्ड माशरा है, तो टैक्स भरना आपकी एक जिम्मेदारी है। और हर एक शहरी जिसके ऊपर टैक्स जो एज पर द स्लैब या एज पर द गवर्नमेंट रूल जितना टैक्स भरना होगा उसको वो भरने की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा था, फॉर एग्जांपल आपकी वेलफेयर है, आपके जो गरीब तबका है जो टैक्स नहीं दे पा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जिनको हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो का जो ये उठाते हैं, वो किस वजह से उठा पा रहे हैं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं? बिकॉज आपके जो बाकी जो सोसाइटी है, चाहे आपका इतना बड़ा मिडिल क्लास है, बल्जिंग मिडिल क्लास है, जो टैक्सेस दे रहा है और ईमानदारी के साथ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो टैक्स दे रहा है, उसकी वजह से आपके जो बाकी जो पसमानदा तबके हैं उनके ऊपर सरकार खर्च कर पाती है, उनकी वेलफेयर के ऊपर सरकार खर्च कर पाती है। चाहे वो आप देखते हैं कि जो मैंने कहा कि डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर स्कीम्स जो हैं, चाहे या हेल्थ स्कीम्स जो है, या आपके जो विडोज के बेरोजगारी को जो स्कीम्स है, या जो बाकी
3: एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एम्प्लॉयबिलिटी जो बढ़ती है या बनाती है, सरकारें ऐसी स्कीमें लाती हैं कि जो टैक्स के पैसे से ही होता है, क्योंकि एक जहां से जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर का पैसा, उसका रिसोर्स जो आता है, तो उसका रिसोर्स उन लोगों पे खर्च किया जाता है या उन प्रोजेक्ट्स पे खर्च, उन सारे कामों पे खर्च किया जाता है जो बजाहिर ओवरऑल सारे लोगों की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता
4: है। एब्सोल्युटली। और जब हम उसमें थोड़ा सा अगर हम समझने के लिए, आम फहम जबान में समझने के लिए, तो दो किस्म के हम जनरली टैक्स जब हम समझने के लिए बोलते हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्सेस और है इनडायरेक्ट

0: टैक्सेस जो दो किस्म का ब्रॉडर है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें हमारा इनकम टैक्स आ जाता है, यानी कि आपकी जो सैलरीज है उसमें जो आपको सरकार बोलती है कि अगर आप एक एलिजिबल टैक्स प्लेयर है तो इतना परसेंटेज आपको सरकार की तरफ देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स का एक हो जाता है। दूसरा हो जाता है कॉरपोरेट टैक्सेस, यानी कि जो कंपनीज पे करती है अपनी एनुअल अर्निंग्स पे, जो कॉरपोरेट्स हैं जो अपनी एनुअल अर्निंग्स पे टैक्स पे करते हैं वो एक टैक्स बन जाता है। और दूसरा तीसरा है प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसके लिए आप कितना फी भरते हैं, जो एज पर द स्लैब आप भरेंगे वो आपकी, ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके जीएसटी आते हैं या वैट जिसे हम कहते थे एक जमाने में,
1: तो जीएसटी है,
0: अब तो जीएसटी है, तो जीएसटी का जो परसेंटेज है तो आपके जो प्राइसेस है, आपके कपड़ों के प्राइसेस है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस है, आपकी फूड एट रेस्टोरेंट्स के प्राइसेस है, इसके ऊपर जो आप टैक्सेस देते हैं, क्योंकि ये आप सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस देते हैं या इस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैक्स, उसको हम जीएसटी का नाम देते हैं। इसी के तरीके से आप कस्टम्स ड्यूटी देते हैं, जो आप फॉरेन से गुड्स ले आते हैं तो आप एक यहां पर लाने के लिए एक टैक्स देते हैं आप, तो उसको हम कस्टम्स टैक्स देते ड्यूटी कहते हैं। और इसी तरीके से एक और इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी का, जिसे हम नाम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फ्यूल है या आपके अल्कोहल है या बेवरेजेस वगैरह है उस पर जो टैक्सेस लगते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कहते हैं। तो ये ब्रॉडर आइडिया ऑफ टैक्सेस है जो जो हम बात करते हैं।
1: किस तरह से आप देखते हैं जो स्ट्रक्चरल ओवरहॉल या जो रिडक्शन हो गया, जो सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल ओवरहॉल क्या किया गया है जो हम टैक्स रिफॉर्म्स में कहते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर आता है, तो इसका क्या फायदा है?
0: देखिए, हमारा जो इनकम टैक्स का जो लॉ था दैट वाज 1961 इनकम टैक्स का लॉ था, उसके बाद उस पर ज्यादा इतना बड़े और इतना गहरे तरीके से उसका कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था पिछले हम कहेंगे कई दहाइयों से। और अब जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो ये है कि इसमें जो सेक्शंस थे वो 826 सेक्शंस इसमें थे। तो जब ये 826 सेक्शंस थे उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करता था। फॉर एग्जांपल आपके जो फॉर्म्स थे, आपको भी पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 16A 16B, और फिर इसी तरीके से बाकी जो ये बिजनेसेस है उनके लिए डिफरेंट फॉर्म्स हुआ करते थे। तो इस सारे कंफ्यूजन को या इस सारे फैले हुए इस मामले को थोड़ा सा प्रिसाइज बनाने के लिए सरकार ने इस 826 सेक्शंस को अब जाके वो 536 सेक्शंस तक पहुंचा दिया है। तो काफी हद तक आपको ये हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी इस लॉ में उसको आसान कर दिया गया है आम लोगों के लिए, ताकि जो कभी कंफ्यूजन हुआ करता था या कभी टीडियस लगता था प्रोसेस, उसको आसानी गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है। और इसी तरीके से ये जो 300 कम से कम सेक्शंस को उनको या तो कुछ को खत्म कर दिया गया है, कुछ को एमलगमेट कर दिया गया है, और कुछ को आपस में ज्वाइंट एक नया सेक्शन बनाया गया है, ताकि आप टैक्स पेयर जो टैक्स भरे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, तो उनके लिए आसानी पैदा करे। तो ये ओवरहॉल ऐसे तो ये बहुत आसान काम लगता है, लेकिन आपको ये समझना है कि जब आप एक टैक्स पेयर हैं और आप एक जिम्मेदार टैक्स पेयर हैं, तो ये आसानियां आपको काफी हर साल काफी काम आएगी, और आपको टैक्स भरने में आसानियां जब पैदा होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरने की ओर जाते हैं।
2: समीन, हम मोदी सरकार की गुज़श्ता 12 बरस की स्कीमों और इस्लाहात से मुतल्लिक बात कर रहे थे। एनडीए सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये योजना मुल्क के तिब्बी देखरेख के शोबे को तकवीत बख्शने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों, हत्ता कि मुतवस्त तबके के लोगों में भी इस स्कीम की बदौलत काफी मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। आयुष्मान भारत स्कीम की अमलावरी और इसके असरात से मुतल्लिक शोबे खबर ने मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब से इस्तफसार किया तो वो यूं गोया हुए।
1: हर जगह अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, हेल्थ रिलेटेड बढ़ रही हैं, चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। दो वी यू नो द फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम एवरी साइड इज टू हैव यू नो गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी जो इलनेसेस हैं, डिजीजेस हैं, दे आर कमिंग अप, तो वो तो होता ही है। कहां कहां पे जरूरत है, किस तरह की जरूरत है इसको और इंप्रूव करने की और कवरेज बढ़ाने की?
3: पहली चीज, जो भी स्कीम बनती है हिंदुस्तान में सेंटर में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी होती है स्पेंड करने की, लेकिन कैपेसिटी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ज्योग्राफिकली, जेनेटिकली भी। लोग अगर आप कश्मीर के जेनेटिक्स देखेंगे और साउथ इंडिया के जेनेटिक्स या फिर नॉर्थ ईस्ट,
1: डिफरेंट तो है।
3: तो जेनेटिक्स मेकअप, ज्योग्राफिकल एक्सपोजर, ऑल्टीट्यूड वगैरह, इनकी वजह से बीमारियों का जो मेकअप है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ ज्यादा ऑर्थोपेडिक चीजें, हड्डियों की ज्यादा बीमारियां देखेंगे आप, साउथ में एक अलग किस्म का चीजें देखेंगे, पंजाब में आपको ज्यादा डायबिटीज और वो सब,
1: नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट होगा।
3: तो मेरे ख्याल में ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन टू एलोकेट फंड्स इट शुड बी स्टेट स्पेसिफिक, ये स्टेट

0: को एक पर्टिकुलर एज पर
1: रीजन
0: स्पेसिफिक उनको दिया जाए और वो इसमें कैप्चर करें कि इसमें कौन सी चीजें आनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, किसी स्टेट में किसी बीमारी
1: का ज्यादा क्या करना चाहिए.
0: करेक्ट. तो मेरे ख्याल में वो कस्टमाइजेशन एक चीज है जो कि कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे वो करना इज इम्पॉसिबल. जैसे कि मैंने कहा हिंदुस्तान लगभग
1: यूनिफॉर्म नहीं हो सकता,
0: ये कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट ए कॉन्टिनेंट. तो इसमें आप दिल्ली में बैठ के स्कीम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो डायवर्सिटी है उसको कैप्चर करने के लिए आपको स्टेट्स का साथ जरूरी चाहिए. That's one. Second, जो कि आपने इनिशियली एक बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ डिजीज का प्रोफाइल अब चेंज हो चुका है. उसमें हेल्थ केयर में अब ऐसी क्रिटिकल डिजीज आती है जिसमें लोग ड्रेन हो जाते हैं फाइनेंशियली. तो उनको किस तरीके से कैप्चर किया जाए, हालांकि फाइनेंसिस पे लोड बढ़ेगा बट जरूरत है. वो चीज आई थिंक दे हैव टू डिलिबरेट अपॉन. तो डायवर्सिटी एज वेल एज इंक्लूजन ऑफ न्यू जो क्रिटिकल इलनेस डिजीज है, हाउ टू कैप्चर दोस, दे कैन बी न्यू फॉरवर्ड लुकिंग फॉर दिस स्कीम. आई थिंक
1: डॉक्टर ये कैसे हो सकता है ये काम?
0: किसी भी पॉलिसी की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि उस पॉलिसी जब बना रहे थे कौन से डेटा पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए. मीन्स डेटा जितना सही होगा उतनी आपकी पॉलिसी और अपना अपना पॉलिसी
1: एक्यूरेसी बढ़ता
0: है. पॉलिसी एक सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन आपका ज्यादा बेहतर होएगा. तो हमारे साइड से जितना डेटा सही जाएगा और रीसेंट डेटा जाएगा, अगर हम 2018 के डेटा पे अभी पॉलिसी बनी हुई है दैट इज ऑलरेडी 8 ईयर्स ओल्ड. अभी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऑलरेडी पेशेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिजीज लेके आते हैं, प्रोफाइल चेंज हो गया है. क्या वो डिजीज का प्रोफाइल और जो हेल्थ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होती है क्या वो सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स तक रेगुलरली पहुंच रहा है, क्या उन चीजों को कैप्चर करके नई पॉलिसीज में वो एड्रेस कर रहे थे. आई थिंक डेटा हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड द पॉलिसी इफ इट कंटिन्यूज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डेटा हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट्स. और डेटा की नॉर्मली जो इकोनॉमिक डेटा होता है ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है. हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेटा कैप्चर नहीं कर सकते. अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन, हम 10 लाख लोगों का डेटा लेंगे,
1: सैंपलिंग
0: तो, सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग के बेसिस पे हम काम करते हैं. लेकिन अगर वो सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाए तो उससे आपकी पॉलिसी में एक वो कॉस्टली होता है. दैट इज डेटा कैप्चर इज नॉट इजी एंड इट्स वेरी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. मेरे ख्याल में डेटा कैप्चरिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारी पॉलिसी जो है ज्यादा बेहतर. और ये जो हमने बनाया है पिछले 7-8 साल में बहुत अच्छी चीज बनाई है, इसको हम एक नई लेवल पे ले जा सकते हैं और एक बहुत बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब जो वीमेन हेल्थ केयर है इसमें किस तरह से आप देखते हैं वो वीमेन हेल्थ केयर भी इसमें कवर होता है, और जो वीमेन हेल्थ रिलेटेड हेल्थ केयर रिलेटेड जो इश्यूज हैं आप मतलब जो नई जैसे आपने हम बात करते हैं कि नई चीजें आई है उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही है, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए.
0: जैसे मैटरनिटी को लेकर पहले सबसे ज्यादा होता था सर्वाइवल मोर्टेलिटी ऑफ द बेबी एज वेल एज द मदर, अगर हम 30 साल पहले की बात करें. अभी उस स्टेज से हम आगे आ चुके हैं, अब मोर्टेलिटी उतना ज्यादा इशू नहीं होता है, गॉड फॉरबिड, उसकी लेवल कम हो चुकी. अब अलग चैलेंजेस है, अब पोस्ट नेटल केयर है. बेबी पैदा होता है उसके बाद आजकल मोस्ट लोगों को नियोनेटल आईसीयू की जरूरत पड़ती है, हालांकि J&K में एक बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है कंपेयर टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहां पे बहुत कॉस्टली होता है पर नाइट. वहां पे ऑलमोस्ट 10,000-8,000 रुपए का लेते हैं, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में. तो वो चैलेंजेस नहीं है. या पोस्ट बर्थ जो बेबी का जो है न्यूट्रिशन है, दे आर न्यू चैलेंजेस कमिंग अप. या इनफर्टिलिटी है, उसका इनफर्टिलिटी इज रैम्पेंट,
1: दिस इज नाउ
0: उस पे काफी
1: चैलेंजिंग
0: खर्च. एंड एक फीमेल्स के लिए एक सोशल टैबू भी है, जहां के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, सोशल प्रेशर भी होता है, उसकी वजह से अलग किस्म के सोशल इश्यूज हो जाते हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाती है. तो मेरे ख्याल में इनफर्टिलिटी इज एन ग्रोइंग कंसर्न. पोस्ट बर्थ जो नियोनेटल केयर है दैट इज अ ग्रोइंग कंसर्न. इसी तरीके से देर इज ऑल्सो IVF इज बींग, उस पर भी अच्छा खासा, हालांकि वो सरकार इसमें नहीं ला सकती, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी, बट पीपल हैव गॉन इन टू डिफरेंट फील्ड्स ऑल टूगेदर.
1: अगर मतलब यू आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट लेवल पे, अगर ये फैसिलिटीज आ जाए, ये इनपुट्स आ जाए,
0: करेक्ट,
1: मतलब दीज फैसिलिटीज एंड इंटरवेंशन कुड बी देयर, सो दिस विल हेल्प इन ओवरऑल यू नो हेल्थ केयर ऑफ
0: ऑफकोर्स. और इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज वगैरह होती हैं गोल्डन कार्ड के अंडर कैप्चर होती है उसमें, हालांकि ऑलरेडी J&K गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही थी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करनी पड़ती है इवन इफ इट्स फ्री डिलीवरी वगैरह.
1: एग्जैक्टली.
0: तो वो इस गोल्डन कार्ड में कैप्चर होती है, तो वो एक बहुत बड़ी आसाइश है हमारे फीमेल फोक्स के लिए.
1: डॉक्टर साहब टर्मिनल डिजीज या टर्मिनली इल जो लोग हैं,
0: जैसे
1: कैंसर्स बढ़ रहे हैं, डिफरेंट कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर कमिंग, इसको भी किस तरह से कवर किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर.
0: मेरे ख्याल में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है गोल्डन कार्ड का, आयुष्मान भारत स्कीम का, वो एक जो डे टू डे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपकी डिजीजेस पे होता है, किसी को लग गई, चाइल्ड बर्थ है, या फॉर दैट मैटर इवन मैं

0: जो इम्प्लांटेशंस होती है मैं पेसमेकर वगैरह वो भी अब काइंड ऑफ नॉर्मल वो कवर है. ये जो कैंसर वाली चीज है इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड सरकार की तरफ से इसमें अक्रॉस इंडिया. कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं या बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रोसीजर कीमोथेरेपी हो गया रेडियोथेरेपी हो गया बहुत कॉस्टली है. तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है. तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ न्यू स्कीम
1: डिफरेंट स्कीम स्पेसिफिक
0: करेक्ट
1: डिजीज स्पेसिफिक. तो आपको सोशो इकोनॉमिक जो किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में इसका क्या खासा फायदा क्या हो रहा है?
0: जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल एक मैथमेटिकल पॉइंट है हमारे पास 17,588 करोड़ ये बजट का अमाउंट है. ये अमाउंट लोगों को खर्च न कर इससे पहले 50,000 लोग जो एलिजिबल है इसमें यही पैसा आप सरकार खर्च रही है. तो ये खर्चे की आपकी ओब्लिगेशन कम होगी. जो ऐसा सेक्शन है अगर इसके पास ऐसा खर्चा करना पड़ रहा है इवन इफ इट्स साल का 20,000-30,000 डॉक्टर के लिए वो अब उसको नहीं करना पड़ रहा है
1: जी.
0: तो इधर वो उसकी सेविंग है या तो उसको कर्जे से बचाया. दोनों सूरतों में उसकी हाउस होल्ड की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो सरकार ने प्रोटेक्ट की. वो एक पॉवर्टी में नहीं चला गया. उसको कहीं से अपने खर्चों के लिए बिकॉज हेल्थ केयर इज अ प्रायोरिटी उसको अपने बच्चों को पढ़ाई से नहीं उठाना पड़ा. तो ओवरऑल अगर हम ग्रैन्युलर लेवल पे देखेंगे इंडिया इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन डेमोग्राफी. जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको मिलना था
1: बिल्कुल
0: वो कब मिलेगा? जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, जब आपकी पॉपुलेशन
1: अच्छे से काम करेंगे, डेवलपमेंट होगा, सारा कुछ होगा.
0: करेक्ट. तो यही
1: लोग नहीं होंगे,
0: यही लोग आपका जो है आउटपुट देते हैं. वो आप गुड्स भी बनाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं. अब अगर इन्हीं लोगों को आप पॉवर्टी में पुश करेंगे, इनको खाने के लाले पड़ेंगे, इनको हेल्थ केयर के साथ में जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जाएंगे, इनको कर्जे चढ़ेंगे, ये लोग आपको प्रोडक्टिव की जगह डिपेंडेंट बन जाते. तो ये ड्रैग बन जाता है इकोनॉमी पे. तो जम्मू कश्मीर में भी इस पे अच्छा खासा अमाउंट है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर अभी. तो ये अमाउंट आपको एक इट्स काइंड ऑफ ए फ्रीडम फ्रॉम योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विच आर गोइंग ऑन हेल्थ केयर. वही पैसा आपको एक हाउस होल्ड को एक मे बी तरक्की की तरफ ले जाएगा. हालांकि अमाउंट कम होता है, वो डिपेंड करता है अल्लाह ताला बचाए सबको बीमारियों से. तो वो एक एम्पावर करता है एक हाउस होल्ड को टू टेक बेटर डिसीजंस, टू एजुकेट किड्स बेहतर तरीके से, या अपने हेल्थ केयर पे या अपने घर पे ज्यादा तरीके से पैसा खर्च कर सकते.
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ. निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर.

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नई मंजिलें। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 MHz पर। पेशे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी संगीत का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों। आगाज में पेश है सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजों में नगमा, और ये फिल्म है हमको दीवाना कर गए। ये खूबसूरत नगमा लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

हमको दीवाना कर गए फौजी भाइयों, ये फिल्म का नाम था और आवाजें थी सोनू निगम और तुलसी कुमार की। फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। ये नगमा हमने फिल्म फना से लिया है।

फौजी भाई, आप नगमा पेश है धूम 3 फिल्म से। ये आवाजें हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा रॉय की।

फौजी भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से संवाद कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज़ अब तक FM 2 103.5 MHz पर भी पहुंच रही है।

फौजी भाइयों, आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में नगमा सुना तेरे नाम फिल्म से।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

फौज भाइयों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा। यह आवाज है उदित नारायण की और फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

फौज भाइयों, ये आवाजें हैं सलमा आगा और मनहर उदास की। और फिल्म का नाम है मीत मेरे मन के। नगमा निगार है रविंद्र रावल और संगीत दिया है बाबुल बोस ने।

अस्ते आवाज तुसां तोणी पहुंच रही आकाशवाणी केन्द्र श्रीनगर थी। मैं हां तुसां दा मेज़बान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते ताज़ीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे बखैर वाफियत होसो और हमेशा दी तरह अपने पसंदीदा बाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कौर नाल सुन रहे होसो। सामीन अज तारे दी महफिल है, गलबात गीत संगीत और आला तवाका दी जानकारी किन गया है। मैं तुसां दी खिदमत विच हाजिर हां। सामीन प्रोग्राम दे शुरू विच तुसां नाल इस गल्ल दा जिक्र करां कि 14 जून को पूरी दुनिया विच आलमी योमे अतिया खून यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गेंदा। इस ध्याड़े दा मकसद रजाकाराना और बिला मुआवजा खून अतिया करने आलियां को खराजे तहसीन पेश करना और लोकां विच खून अतिया करने दी अहमियत दे बारे विच आगाही पैदा करना। समन खून एक अजी नियामत है जिसका कोई मसनूई मुतबादल मौजूद नहीं है। एक सेहतमंद इंसान दा अतिया कीता गया दा खून मुझ सारे मरीजां दी जान बचा सकता है, चाहे वह किसी हादसे दा शिकार होवन, किसी बड़े ऑपरेशन से गुजर रहे होवन या मुख्तलिफ बीमारियां दा शिकार होवन। खून दा अतिया देना इंसानियत दी खिदमत हमदर्दी और इसार दी बेहतरीन मिसाल है। सिर्फ चंद मिनटां दा ए अमल किसी वास्ते नई जिंदगी दी उम्मीद बन सकता। समय नाल असीं सारी साल में यौमे अतिया खून दे मौके पर ए अहद करां कि अगर असीं तिबी तौर पर अहल हां तो बाकायदगी नाल रजाकारना तौर पर खून दा अतिया पेश करां और दुनिया को भी इस अजीम इंसानी खिदमत वास्ते तरगीब देवां। समिन अज दा पैगाम है, खून अतिया करो, उम्मीदां बंडो और जिंदगियां बचाओ। पहला प्रोग्राम दे शुरू विच तुसां वास्ते एक गीत पेश करां, आवाज है सैयद काबिल।

सैयद काबल बुखारी गीत पेश कर रहे से उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया उसी समय नूं तुसां नाल असीं हालात वाकात सिलसिले दे तहत अपने पहले मौजूद का जिक्र करा। मौसम भी बदलाव टनल दे आर पार जमकै बारिशां हुईयां दर्जा हरारत भी कमी हुई 17 जून तोड़ी मौसम खराब रहने की पेशनगोई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की आलमी कश्मीरी पंडित कनकलेव शिरकत 2019 के बाद मुस्बत तब्दीलियां रोनमा कश्मीरी पंडित बरादरी की वापसी उन्होंने हकीकी जीत मुश्किलात थी कदे इन्हां दे उसले नहीं पजे नया जम्मू कश्मीर पंडितां दी शमूलियत दे बगैर नामुकम्मल वजीर आजम सोन यूटी को तामीर नोदा मरकज बड़ा छोड़िया मनोज सिन्हा। 17 जून को फ्रांस विच सत सरबराही इजलास के मौके पर मोदी और ट्रंप के दरमियान मुलाकात हो सकी दो तरफा और आलमी अमूर के मुख्तलि

अब्दुल रशीद कुरैशी गीत पेश कर रहा से कलाम असा नूर अहमद कुरैशी और आंदा उम्मीद कर रहा कि गीत तुसा को पसंद आया उसी सामिन फिर इसते नाली अस्ते अज दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुक्या अपने मेजबान इम्तियाज अहमद मीर ते पहाड़ी प्रोग्राम दे प्रोड्यूसर मारूफुन निसा को अगले प्रोग्राम तो नहीं दे इजाजत खुश रहो अल्लाह।

0: उन्हें मौसर ते बरवक्ता होते पानी फरामी को यकीनी बनाने ते जोर दिता। वजीर महसूस सुन मुतलका अफसरों को हदायत दी कि वह पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनावन ताजी काश के मौसम बिच कोई भी किसान मुश्किलों का सामना न करे। वजीर रफी आबाद बारामूला दिया मुख्तलिफ इलाकों के दौरे दौरान आपाशी के बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा कर रहा है। वजीर साहब सकीना इत्तु सुन श्रीनगर बिच एसएमएचएस अस्पताल का दौरा करके उत्थे पिछले त्याड़े सुपर सियार बड़गाम बिच स्कूल बस को पेश आए हादसे बिच जख्मी होया दो स्कूली बच्चों की खैर खबर की दी। उन्हें डॉक्टरों को तलकीद की को जख्मी बच्चों को इलाज मुआलजे की हर मुमकिन सहूलत दस्तियाब रखें। इस दौरान वजीर मसूफा सुन कुलगाम बिच कायम एक प्राइवेट स्कूल की ग्रेजुएशन डे तकरीब बिच शिरकत की। अपने खता बिच उन्हें आखिया कि सरकार सरकारी तालीमी मंत्रनामे को मजीद बेहतर बनाने ते इस सैक्टर के बुनियादी ढांचे को महस्तक बनाने की वादाबंद है। तकरीब बिच कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम भी मौजूद आसे। नाज़िम तालीम कश्मीर सुन एक हुक्मनामा जारी किया है जिस बिच तमाम सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों को हदायत दी गई है कि वह महरम के पेश नज़र 23 जून की 27 जून के दरमियान स्कूलों बिच किसी किस्म का इम्तिहान न गिनन। आहर ते खास खास खबरें एक बार फिर सुन गिनो। वज़ीर आज़म सुन आया कि भारत 12 साल के दौरान मियारी हिफाजत सेहत ते ज्यादा घट खरीच ते ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वास्ते करसी काम। एसकेएससी श्रीनगर बिच ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनकलू जारी। कनकलू बिच एलजी मनोज सिन्हा दा खिताब। नगरोटा जम्मू बिच सड़क हादसा 3 नफर हलाक ते 2 दुए जख्मी। ते अज हुन दे अतीत दा आलमी दिहाड़ा। ते इस दे नाल खबरां दा बुलेटिन मुकल गया। असां को इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज़।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन 4:30 हुए हैं। अब पेश होता है पंजाबी प्रोग्राम।

0: कोई तुहाडे उपर विश्वास
1: नहीं करेगा।
0: हाँ जी, तो ये बहुत एक बॉटम लाइन है कि पॉजिटिविटी, सिंसेरिटी ते अपने आप ते विश्वास, ये तीनों चीज़ा मेरे अंदर शुरू तो सीखिया, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत हार्डवर्किंग सी गे, ते मैं अपनी मम्मी कोलो अपनी जिंदगी विच बहुत सारी चीज़ा सीखिया ने, और हुणे भी उन्हां चीज़ा नूं अपने नाल कैरी करदी हाँ। और मेरी मदर तो बाद मेरे उस्ताद जी, क्योंकि मेरा ये जो काम है, मेरे जो उस्ताद जी ने, उस्ताद रशीद खान जी जो मन्ने हुए आर्टिस्ट ने गुजरात दे, की पूरे इंटरनेशनल लेवल दे आर्टिस्ट ने, उन्हां कोलों जदों मैं कम सीखिया ते मैं सारी चीज़ां ते चलो उन्होंने हद का कम ते मैनू सिखा दिता, लेकिन कोई भी काम जदों तुसीं करदे हो ना उस काम दे विच एक सिंसेरिटी होनी चाहिए है। जदों कोई काम तुसीं सिंसेरिटी दे नाल करदे हो ना तो तुहानू उसदा फल जरूर मिलता है। मैनू हुणे भी अपने उस्ताद जी दे कुछ लफ्ज ने जो हुणे भी याद ने, जब मैं प्रोफेशनली ये काम शुरू किया मैनू हुणे भी याद है, सॉरी मैं पहला इंसीडेंट तुहानू दसांगी, जदों 2004 च मैं जदों ये काम सीखिया सी ते मैं जदों अपने उस्ताद जी नू फीस पूछी ते उन्होंने मैनू कहा कि फीस की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना है। तो वो प्रॉमिस ए सीगा कि आज तुसी काम मेरे को लो सीखा है, कल नु तुसी काम किसी नु सिखाओगे नहीं। तो मैं तो एज ए यू नो बड़ी लाइटली काम सीखा सी, कभी सोचे ही नहीं सी कि मैं अपनी लाइफ विच इस काम नु लेके कितने पहुंच सकती हाँ या इस नु एक अपना प्रोफेशन बना सकती हाँ। तो सर ने जो मैनू मना किया तो मैं उन्होंने कहा, मैं भी उन्होंने प्रॉमिस करता कि ठीक है सर मैं नहीं सिखाऊंगी किसी नु, और बहुत सारे लोगों ने मैनू अप्रोच भी किया कि तुसी बहुत अच्छा काम करते हो, तुहाडा कंसेप्ट जो है डिजाइनिंग का तो है ही है, प्लस जो एस्थेटिकली तुसी बहुत जो पेंटिंग्स असी बहुत लोगों के भी बहुत देखिया ने, तुहाडियां भी देखिया ने, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक यू नो स्पेशलिटी होंदी है। तो जो असी तुहाडा आर्ट फॉर्म देखते हैं ना तो सानू लगता है कि तुसी उसका ट्रेडिशनल टच भी मेनटेन करके रखिया होया है, तो उसनू एक मॉडर्न लुक भी दिती हुई है। तो जो मैं वो प्रोफेसनली किया तो उस तो बाद मैं बहुत लोगों ने अप्रोच किया, पहले भी करते तुसी सिखाओ इस काम नू, बट मैं अपने उस्ताद जी नू प्रोमिस किया सी ते मैं कभी किसी नू सिखाया नहीं काफी साल तक। लेकिन फिर 2020 विच जदों मैं दोबारा मैनू ऑर्डर्स आए, मैं दोबारा काम शुरू किया, ऑन एंड ऑफ विचकार करती रहती सी अपनी जॉब दे नाल भी, बट जदों जॉब बिल्कुल छड़ दी ते टोटली इस पास से हो गई तद भी, एंड आई वुड से थैंक्स टू कोविड फॉर दैट मैटर, कोविड दे करके ऑनलाइन चीज़ां नू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है और बहुत सारे लोगों ने इस तो बहुत फायदा चुकया है, एंड मैं उन्होंने विचों एक हैगी हाँ कि ऑनलाइन जदों लोगों ने मेरा काम देखा, मेरा इंस्टाग्राम ते पेज है बाय द नेम ऑफ क्रिएशंस बाय अमृता, ते जो भी मैनू सुन रहे ने तुसी प्लीज मेरा पेज जरूर चेक करो, उसनू फॉलो करो, काम नू पसंद करो, अपने कमेंट्स दो और लोगों ना जरूर शेयर करो। तो जो मैं वो काम उससे स्टार्ट किया तो मैं सर नू कहा कि सर मैनू ना बहुत लोग कह रहे ने कि असी ये काम सीखना चाहते हाँ, तो मेरी मैं तुहानू बहुत साल पहले प्रोमिस किया सी, बट लेकिन मैं कभी तुहानू पूछा नहीं कि तुसी मैनू मना क्यों किया। तो मेरे उस्ताद जी ने ना बहुत खूबसूरत गल मेरे नाल कही, उन्होंने मैनू कहा कि बेटा देखो जदों असी कोई चीज़ असी किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं ना उस तो बाद जो असी टीचिंग लाइन में जाते हाँ तो टीचिंग लाइन में जाने वास्ते पहले तुहानू एक डिग्री चाहिए होती है, तो वो डिग्री होंगी है बीएड की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, जदों तक तुहाडे कोल डिग्री नहीं होएगी ना तो तुसी किसी नू सिखाने दे लायक नहीं होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी तरह कला के खेत्र विच जदों तुहाडी डिग्री की हैगी है, जदों तुहानू लोग तुहाडे काम नू इन्ना पसंद करना शुरू कर देने और तुहानू हर एक चीज़ की नॉलेज होंगी है, अज की डेट तुसी इस आर्ट फॉर्म के बारे मैनू कुछ भी पूछ लो मैं तुहानू कभी भी हैजीटेट नहीं करांगी या मैं कभी सोचांगी नहीं दो बारी दसन तो पहले कि पता नहीं मैनू इसका जवाब तो नहीं आता। तो उन्होंने कहते हैं मास्टर। तो जदों मैं सर नाल अपना काम शेयर करना शुरू किया अज की डेट भी मैनू सर कहते हैं कि तुसी हुन मेरे भी उस्ताद हो गए और मेरे वास्ते मेरी लाइफ का सब तो वड्डा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे उस्ताद जी ने मैनू ये गल बोली है कि हुन तो तुसी मेरे भी उस्ताद बन गए हो। तो वो मौका सी जो मैं उन्होंने कहा कि सर मैनू बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं सीखने वास्ते, तो मैं उन्होंने कहा कि सर मैं ये काम सिखा सकती हाँ तुहाडी इजाजत दे नाल। तो उस टाइम उन्होंने मैनू वो कॉम्प्लीमेंट किया कि हुन तो तुसी मेरे भी उस्ताद हो गए अमृता बेटा, तो तुसी बेझिझक होकर जिसनू सिखाना चाहते हो सिखाओ। तो मैं फिर ऑनलाइन वर्कशॉप्स करनी शुरू कीतियां, ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी कर दी हाँ, ऑनलाइन भी कर दी हाँ, लोग इंडिया तो नहीं इनफैक्ट कैनेडा तो यूएस तो जर्मनी तो मेरे ऑनलाइन आई मीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ने जो ये काम देखते ने और जिन्होंने मैं सिखाया है ऑनलाइन काम सिखाया हुआ है। तो जो मैं उन्होंने लोगों को देखती हाँ जो आई मीन इंडिया तो बाहर बैठे हुए ने तो वो ये काम सीखना चाहते हैं, तो उस चीज़ तो मैनू ये यू नो एक पुश मिलता है कि उन्होंने लोगों वास्ते कि

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: समीन अभी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन इसके अलावा हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के लाइव मोबाइल ऐप और DTH पर भी। 5:50 हो रहे हैं, आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरनामा ले गए चौधरी इरशाद। पहला अहम खबरों की सुर्खी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का सदर इमानुएल मैक्रों के नाल नईस्मा भारत इनोवेटिव को कियो इफ्तिताह, वज़ीर-ए-आज़म को तकरीब नाल खिताब। SKICC श्रीनगर मां ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनकलियो जारी, कनकलियो के नाल LG मनोज सिन्हा को खिताब। नगरोटा जम्मू मां सड़क हादसों, 3 अफराद अजान, 2 जख्मी, तय खून का अतिया को आलमी तैड़ो अज। हूं पेश है खबर की तफसील, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का सदर इमानुएल मैक्रों के नाल नईस्मा भारत इनोवेट्स को इफ्ताह कियो। या अहम तकरीब भारत ते फ्रांस का इख्तराग साल तहत हो रही है, तय इसमां 120 भारतीय स्टार्टअप इदारा आलमी सरमायाकार टेक्नोलॉजी का माहरीन ते कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत का तेजी के नाल फरोग पाता व इख्तराए इको निज़ाम की इक्कासी की जा रही है। तकरीब नाल खिताब करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कियो,
2: फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ते फ्रांस का सदर इमानुएल मैक्रों दो तरफा गलबात कर रहे हैं, जिसमें भारत फ्रांसी हसूसी आलमी कलीदी साझेदारी मां पेशरफ्त को जायजो लियो जाएगो। दोए रहनमा अहम इलाकाई ते आलमी अमूर पर भी तबादलो ख्याल करेंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मां पिछला 12 के दौरान मियारी हफसाने सेहत ना और ज्यादा कम खर्चा को ज्यादा लोगों तोड़ी बहम पहुंचाने वास्ते भरपूर अंदाज के नाल काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी ने क्योंकि उन्हें इस गल पर फख्र है कि भारत ना दुनिया का हफसानी सेहत का सब तो बड़ा प्रोग्राम आयुष्मान भारत का मुल्क का तौर पर जाने जाए। नरेंद्र मोदी ने क्योंकि PM भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों नाल दवाई घट कीमत की हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर वास्ते उन तोड़ी की पेशरफ्त ना बरकरार रखता हुआ यो सिलसिलो अगे बदावेगी। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो का चेयरमैन वी नारायण ने दस्सिया कि उन्होंने एक ऐसो जदीद मसनूवी हीटिंग निज़ाम तैयार करने वास्ते एटमी तवानाई का महकमों के नाल इश्तराक किया है, जड़ो चांद की सतह पर उतरन आला हलाई जहाज ना चांद के बेहद ठंडा मौसम तो महफूज रख सके। बंगलुरु मां CSIR RISC कैनकलियो नाल खिताब करता हूं, उन्होंने क्योंकि शमसी तवानाई आला चंद्रयान सोम मिशन को खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 तेड़ा ही काम कर पायो, लेकिन उन इसरो महकमों जोहरी तवानाई के नाल बाहम हो गए एक ऐसो जहाज तैयार करेगो जो चंद की सतह पर 200 तैड़ा तोड़ी काम करने अहल होगो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर मां ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनकलियो के नाल खिताब करता हुआ कश्मीरी पंडित बरादरी

0: का इंतजाम का तरीका में तब्दीली इस हुक्मनामा पर अमल दरामद करने की ताकीद की है। जम्मू में जल शक्ति महकमा का अफसर गर्मी का मौसम की जरूरतियात तो निमटने वास्ते शुरू किया गया इकदाम का जायजा ले रहा था। ज़िरात का वज़ीर जावेद मंडार ने कहा है कि आपाशी ज़िरात वास्ते रीढ़ की हड्डी है, उन्होंने मौसर ते बरवकत पानी फराहमना यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूफ ने मुतलका अफसर ने हदायत दी कि वे पानी की मुनसफाना तकसीम में यकीनी बनाने ताकि काश्त का मौसम में कोई भी किसान मुश्किल को सामना न करे। वज़ीर रफ़ी आबाद बारामूला का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा के दौरान आपाशी की बुनियादी ढांचा का काम को जायजा ले रहा था। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर ते डायरेक्टरेट सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर ते लद्दाख अमित शाह ने डाटा जमा करने के दौरान दुरुस्तगी का आला तरीन मियार न बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। इसके नाल ही खबरों को यो बुलेटिन मुख्य आकाशवाणी तो 6:05 पर अगवो बुलेटिन कश्मीरी जबान में सुनो ना भूलियो। आमना दियो इजाजत, खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीर आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज हिंदी खबरों के लिए।
2: साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
3: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
2: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है।

ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने।

0: चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये थे आकाशवाणी श्रीनगर, समय नवतरम 6:05 सफेद वन बोजन गमी बन अजक प्रोग्राम।

नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। बिलावल महला तीजा जिस दा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोए। जिस दा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोए।

नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभु सद रहा भरपूर। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभु सद रहा भरपूर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: वाह वाह वाह वाह, इतनी गजबर हजरा
1: सठा रूत है।
0: तो ये मुझे समझ लिया आसान, ये शूब आसान ये कि इंसान सो दरवाज गसान जहन की आला है।
1: बिल्कुल, तो ये चैन वन दिवान गो रुचर वर्तवन तो बेस खुद गो रुचर कांचन।
0: बिल्कुल, तो यूजन ये रुचर कांचन ये इंसान सदि खुद खुशकस्मती आसान।
1: बिल्कुल, बड़ बार नेकी
0: बड़ बार नेकी ये बेहतर पठन ये रुचर कांच रुचर वर्तवि तो अतिस पानस तागी रुत अल्लाह ताला अमिस तोजान ये अम सदस वहम गुमान से मजान तो इन मजलिस फौज फायदे वातना पेथ कंस तम तो पेथ कह ग हक थवान कि युद्ध फौज फायदे तुल्न वसानस गपसत ग आवरा रोजान ये मदी दुनिया मजन तो मगर अम गफलत नश अम आवरा नश पोत फेर खुद इन रुचन मजलिस सठा अहम रोल तो ये वाहिद जरिए कि इंसानस बनावन इंसान पज पो दी जिंदगी सम जन वाबस्त लूक आसान तमन पन पन जिम्मेदारी आसान नख वाल तो ये जिम्मेदारी प्रथ सुथरस पे प्रथ वक्त तमे तरीक नख वाल जन हेको कामयाब ग जिंदगी हिंदिस प्रथ कु शोबस मे तो यू जन ये जमींदारी सैन अच्छे वाबस्त सासे बद लुख ये सद सद तो वर्ग पठन लक्ष बद लुख अत वाबस्त सारे खुद सो बोड़ जरात सोन दान जरात ये दान जरात शुरू पे अप्रैल से मजन अम तैयारी सपदान पे मे यस मजन मे पे जूनस तम ये थल वावान तो बुनियाद यही अम जरात तो अतन गोजन हुशार इंसान अम खुद गम जन साइनसी मशवर तम ग आय वक्त वक्त प्रथ कु जाए प्रथ कु सुथरस पे अम जमींदारस अति हे बेहतर पे काश्तकारी कर अत मन खास मौक आसान सू गो जन इजतमी तौर कर थल रुवन तो अम खे सोन मशहूर ब्रो कल पे थज कद लागान तो वन तमच रवायत कम पहन वन तथ पट लागन कह क्या तथ चु बोड वजह यह कि सोन जमीन जन यह गो तमीरत तल यम दस मजिकर करान तो जमीन छको कम गो तो वन फर्दन फर्दन अख नफर जो नफर चोर नफर आसान तो तथ पट ब्रहम पे सो थज कद आसान क्या मगर कुन कुन जाए ये यह जमीन मौजूद यमो अत रश कर्म यमो यह अमानत जानत पन्नस नशन मौजूद थोमुत तत्नस यह थज कद लागने तो यह सोन जरात अत तरक्की दिन खुद प्रथ सुथरस पे कोशिश कर सद मुबशर सबन कत बात थदाम कर गोड़ करो बोजन वाले खुद यह पेश
2: सोन मुल्क हिंदुस्तान जरि मुल्क ये सत्त फीसद आबादी गमन गुठन मज रोजान यमन मज अक्सर लुख एक नत बेक तरीक जमींदारी सत वाबस्त यह सूरत हाल जम्मू कशीर मज तशी मज मुख्तलिफ फसल दोन वाफन मज काश्त कर अख गो खरीफ वाफ तो ब्या गो रैबी वाफ खरीफ वाफस मज अहम फसल वपदान यवान यमन मज दानी मकई तो वारिया सब्जी काश्त कर रैबी वाफस मजन तिल फल कनक ओट्स तो कह सब्जी वपदान यमो सारी फसलों मज दान अहम तरीन मान यवान तिकाजी मज अक्सर लुक बत इस्तेमाल करान खेन खुद दानि सतह समंदर खत 1570 मीटरों पेठन

0: शहर बीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क हादसात 5 अफराद हलाक, अमरनाथ जी यात्रा और मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के सिलसिले में पुलिस सरबराह की मीटिंग, और गांधरबल में पातशाही कनाल में शिगाफ, इमलाक को नुकसान। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
7: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
8: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट, तो मेरे शरीर विटामिन ई तो विटामिन बी हिच कमी द्रामस।
9: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मेकदार।

0: मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक अलसतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत करते हुए श्री अमरनाथ यात्रा के पुरामन महफूज और कामयाब इनाकात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डीजीपी ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि हसास मकाम पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यात्रा रास्तों, रेलवे ट्रैक्स, सियाहती मकाम और ज्यादा हसास इलाकों में मुसलसल गश्त, सर्च ऑपरेशन और एंटी सबोटाज चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने गैर मामूली अहमियत के हामिल मकाम पर क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती, सीसीटीवीज और आरएफआईडी ट्रैकिंग सिस्टम के मौसर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इजलास के दौरान मोहर्रम उल हराम और सालाना खीर भवानी मेले के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया और इन तकरीबात के पुरअमन इनाकात के लिए मौसर सिक्योरिटी और हजूम की नज्म नस्क की हिदायत जारी की गई। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने सूबाई इंतजामिया कश्मीर को हिदायत दी है कि मोहर्रम उल हराम के पेश नजर शिया अक्सरियत वाले इलाकों में बिजली, पीने के पानी और सेहत सफाई का माकूल इंतजाम किया जाए ताकि अजादारों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। उधर रामबन से मोहम्मद तस्कीन की तलह कि आज रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने गूल इलाके में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया जिसमें इलाके के सैकड़ों बाशिंदों के साथ साथ सब डिवीजन गूल के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और अहलकार मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह हुकूमत अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम रही है और ये कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वजरा अवामी मसाइल से लाताल्लुक हैं। रुकने पार्लियामान के बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अवामी मैंडेट से इक्तदार में आने के बावजूद अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर इकदाम करने में नाकाम हो चुकी है। जिला तरक्याती कौंसिल बारामुल्ला की साबिक चेयरपर्सन सफीना बेग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के इम्कान बढ़ रहे हैं। जराये के मुताबिक सफीना बेग और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यादत के दरमियान हालिया हफ्तों में कई मुलाकातें हो चुकी हैं और वो जल्द ही बाजाबिता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। वाजिर है कि सफीना बेग साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया हैं और शिमाली कश्मीर में एक बाअसर सियासी शख्सियत की हैसियत से जानी जाती हैं। समय आज जिले गांधरबल के बादशाही कनाल में शिगाफ पड़ने से जरई अराजी के साथ साथ रिहायशी मकानों को खासा नुकसान पहुंचने की इत्तिलात हैं। बताया जाता है कि यह सूरत हाल कनाल से मुत्तसिल एक पहाड़ी से भारी तोदा गिराने के नतीजे में पैदा हुई। इरीगेशन कनाल की बहाली का काम शद्दमा से जारी है जबकि मुतासरीन सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए भी फौरी इकदाम किए जाएं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
1: गांधरबल जिला के बीचों बीच बहने वाली करीम पातशाही कनाल रेशीपोरा ग्राज गांधरबल के मकाम पर आज अचानक बह जाने से पूरे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जिससे सैगनू कनाल अराजी में लगाई गई धान की पनीरी पूरी तरह तबाह हो गई। मेवा बागानों को भी बड़े पैमाने पर इससे नुकसान पहुंचा। इलावा अजीम नजदीकी मकानों में पानी घुस जाने से चारों ओर हाहाकार मची हुई है और कई दीवारें गिर जाने की खबरें भी मौसूल हुई। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि ये वाका आज सुबह सवेरे 5 बजे उस वक्त पेश आया जब नजदीकी पहाड़ी से एक भारी बरकम तोदा गिर आया जिससे ऋषिपोरा के मकाम पर ये कनाल ब्लॉक हुई और कनाल में से बहने वाले पानी ने बस्तियों की तरफ रुख करके बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। पानी की तेज रफ्तार देखकर मकामी लोग घरों से बाहर निकलकर महफूज मकामात की तरफ चल पड़े। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इस कनाल में कई मकामात पर शिगाफ पड़ चुके हैं जिसमें से जगह जगह पानी जाया हो और रोज बरोज इसकी हालत खस्ता होती जा रही है जिसके नतीजे में मजकूरा कनाल के नीचे आबाद बस्तियों में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। अगर उन्होंने महकमे इरीगेशन गांधरबल को मामले की नस्बत कई बार मुतल्लक किया कि कनाल की मरम्मत तजदीद करने की अशद जरूरत है, ताहम बार बार याद दिलाने के बावजूद ये मसला तूल पकड़ता जा रहा है और जिला की अहम आबपाशी कोहलें बरसों कबल मरम्मत तलब हुई, ताहम उनकी मरम्मत तजदीद और सफाई सुथराई के लिए मुतल महकमा की जानिब से कोई वाजिया पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाती है जिसके बाईस आए रोज ऐसे वाकात पेश आते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन गांधरबल नासिर अहमद ने शहरबीन को बताया कि कनाल दह जाने की खबर सुनते ही उनकी टीम मशीनें समेत ऋषिपोरा पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने के काम में उन्हें उस वक्त रुकावटें पैदा हुई जब मजकूरा कनाल एक दो नजदीकी मकामात पर और दहने लगी, ताहम इंजीनियर समेत उनकी माहिर टीम यहाँ काम पर लगे हुए की जाती है कि आज शाम तक आपाशी सहूलियात बहाल की जाएगी। उन्होंने वादा कर दिया कि ये कनाल संघ मेल की हैसियत रखता है और इसके

0: पानी से हजारों कनाल अराजी सैराब होती है, लिहाजा उनकी कोशिश यही रहेगी कि खेती बाड़ी के इस पीक सीजन में लोगों को धान की पनीरी लगाने के लिए आपाशी सहूलियात मैसर रखी जाए।
1: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। नामवर दीनी बुजुर्ग हजरत मिर्जा अकमरुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह के 316वें उर्स की तकरीबात आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में आज दरगाह अकमलिया हव्वल श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद हुई। वाज़ेह रहे कि उर्स की इख्तितामी तकरीब पर 16 जून मंगलवार को जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी बुक्का आलिया में नमाज जोहर के बाद हजरत मिर्जा अकमरुद्दीन बदख्शी की सीरत पाक पर वाज फरमाएंगे। इधर अनंतनाग से इस तारीख की इतला है कि आज बिजबिहाड़ा में हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी का 400वां उर्स पाक अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स तकरीबात में शिरकत के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद दरगाह आलिया पर हाजिरी दे रहे हैं। वाजे रहे कि हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीदों में शुमार किए जाते थे। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के सीनियर ग्रेड ऑफिसर इशफाक अहमद शाह ने आकाशवाणी श्रीनगर में शोबे खबर के सरबराह का ओहदा संभाला है। वाजे रहे कि उन्होंने ये ओहदा शोबे खबर के साबिक सरबराह तारिक राठिर का नई दिल्ली तबादला किए जाने के बाद संभाला है। आकाशवाणी श्रीनगर में शोबे खबर के सरबराह का ओहदा संभालने पर सहाफती अदबी और सकाफती हलकों ने इशफाक अहमद शाह को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनका तजर्बा शोबे खबर को नई बुलंदियां छूने में मुआविन साबित होगा। शर्बीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैट बॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इतला है कि द्राबशाला और मुल्हिका इलाका जात में शदीद बारिशें हुई हैं और उसके बाद जालाबारी हुई। ताहम अभी तक नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। बनियस्ता बोंजवा में भी लगभग 15 मिनट तक जालाबारी होने की इतला है। बनियस्ता रफियाबाद के हिब डांगरपुरा, बहरामपुरा, रहमताबाद, वतरगाम और दीगर इलाकों में आज शाम से पहले पहले शदीद बारिशें होने की इतला है, जबकि लोरेहामा इलाके में जालेबारी हुई है। उधर हंदवाड़ा के मुख्तलिफ देहात में भी आज शाम से पहले पहले भारी जालेबारी होने की इतला मौसूल हुई है। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप की मीटिंग पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील की सदारत में डाक बंगला बारामुल्ला में मुनाकिद हुई। मीटिंग में साबिक MLA बशीर अहमद डार, साबिक DTC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी, पार्टी के जिला सदूर और दीगर अहदेदार मौजूद थे।

0: मौके पर कई करारदादें पास की गईं। एक करारदाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की फौरी बहाली का मुतालबा किया और साथ ही उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज पर दबाव बनाने की खातिर एक कुल जमाती मीटिंग तलब करें। दूसरी करारदाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया जालाबारी से फसलों को होने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से किसानों के केसीसी कर्जे माफ करने और उन्हें माकूल मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया गया। जबकि तीसरी करारदाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से पुरजोर मांग की गई कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर मौसर इकदाम किए जाएं। अदबी मरकज कमराज की जानिब से आज मरकज के सदर दफ्तर कानिसपुरा बारामुल्ला में यौम असलाफ का अहतमाम किया गया, जिसमें तंजीम की बिना और तामीर में कलीदी किरदार अदा करने वाली शख्सियात को याद किया गया। तकरीब की पहली निशस्त की सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि डॉ सतीश विमल मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ऐवान सदारत में तंजीम के सरपरस्त डॉ रफीक मसूदी भी थे। तकरीब की एक और निशस्त की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि ऐवान सदारत में तंजीम के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर कई शख्सियात और इदारों को वर्क के तहसीन 2026 अता किया गया। समन वादी के मुख्तलिफ कस्बजात और गांव देहात में कायम प्राइवेट स्कूलों की निस्बत से शहरबीन को शिकायत मौसूल हो रही है कि ये स्कूल नाजायज मुनाफाखोरी के मुर्तकिब होकर अपने तलबा व तालिबात को ट्रांसपोर्ट की निहायत कम सहूलियात मैसर कराते हैं। नतीजा ये कि इन स्कूलों के तलबा व तालिबात को सुबह और शाम के वक्त घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का सफर करना पड़ता है। इस तवील सफर के दौरान बच्चों की हालत क्या होती होगी ये समझने और समझाने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
1: जिला कुलगाम समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट तालीमी अदारों की जानिब से कम सिन बच्चों को स्कूल लाने और वापस घर पहुंचाने के तरीका कार पर वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल इंतजामिया मुनाफाखोरी के खातिर बच्चों की सहूलियत और सेहत को नजरअंदाज कर रही है, जिसके नतीजे में मासूम तलबा व तालिबात को रोजाना जिस्मानी और जहनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मकानी वालिदैन के मुताबिक बेशतर निजी स्कूलों की बसें सुबह 7 बजे या उससे भी पहले जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को बसों में बिठाना शुरू कर देती हैं। नर्सरी और इब्तदाई जमातों के कम सिन बच्चे कई घंटों तक बसों में सफर करने पर मजबूर होते हैं। मुताजिद इलाकों के बच्चों को एक ही बस में सवार करके गांव गांव घुमाया जाता है और अक्सर बच्चे 9:30 बजे या 10 बजे के करीब स्कूल पहुंचते हैं। वालिदैन का कहना है कि इतनी तवील मसाफत और वक्त बस में गुजारने के बायस छोटे और कम सिन बच्चे स्कूल पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं। कई बच्चों को भूख, बेचैनी, नींद की कमी और जिस्मानी थकन का सामना करना पड़ता है, जिसका बराह रास्त असर उनकी तालीम और जहनी नशोनुमा पर पड़ता है। माहिरीन तालीम का भी यही मानना है कि कम उम्री में इस कदर तवील सफरी औकात बच्चों की तवज्जो सीखने की सलाहियत और उमूमी सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। वालिदैन का मजीद कहना है कि स्कूल इंतजामिया एक तरफ भारी फीस वसूल करती है, जबकि दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम करने के लिए महदूद तादाद में बसें इस्तेमाल करती है। नतीजतन मुख्तलिफ और दूर दराज इलाकों के बच्चों को एक ही बस में सवार करके तवील और दुश्वार गुजार रास्तों से ले जाया जाता है और सूरत हाल वापसी के वक्त भी देखने को मिलती है। जब बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद घंटों बसों में रहने पर मजबूर होते हैं और देर शाम अपने घरों तक पहुंचते हैं। अवामी हलकों के मुताबिक यह अहम मामला बारहा मुतलका महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट हुकाम और जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया गया। ताहम ताहाल कोई मौसर और काबिल जिक्र कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वालिदैन का इल्जाम है कि मुतलका इदारों की खामोशी ने निजी स्कूली इंतजामिया को खुली छूट दे रखी है, जिसके बायस बच्चों के हुकूक मुसलसल मुतासर हो रहे हैं। मुतासरा वालदीन ने हुकूमत जम्मू कश्मीर, महकमा तालीम और महकमा ट्रांसपोर्ट से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा है कि निजी स्कूली बसों के लिए वाजिया रहनुमा उसूल वजह किए जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि मौसम बच्चों के लिए सफरी वक्त के हद मुकर्रर की जाए, मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया जाना चाहिए और खिलाफवर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।
0: ये थे कुलगाम से फारूक राठौर। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करना चाहिए, अलबत्ता उनसे हमारा राबिता हो नहीं पाया। हमारी कोशिश हो गई कि कल या परसों में हम उनसे बात कर लें और इस मामले की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराएं। इधर दिवर त्राल में आज शबीर भट्ट की इतला के मुताबिक गुरुद्वारा

0: बाबा बांडा साहब की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एक दीवान का एहतमाम किया गया जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अकीदतमंदों ने भारी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आलम अमन के लिए खास दुआएं की गईं। बताया जाता है कि इलाके की मुस्लिम और पंडित बिरादरी ने गुरुद्वारे में जाकर सिख संगत को मुबारकबाद पेश की। जिला गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कलमकार, तजिया निगार और सीनियर लेक्चरर सनाउल्लाह भट्ट आज इंतकाल कर गए। उन्हें तुलमुला गांधरबल में वाकई उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सनाउल्लाह भट्ट की वफात पर कई सियासी, समाजी और मजहबी अंजुमनों ने रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताजियत की है। कुलगाम जिले के हट्टीपुरा बिहीबाग इलाके में नामालूम शरपसंदों ने तकरीबन 500 हाई डेंसिटी सेब के पौधे काट डाले हैं, जिससे बाग के मालिक को 25 लाख रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। मकामी लोगों ने इस वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुतासर मालिक बाग को मुआवजा अदा किया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर के जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम का आगाज किया है। इस सिलसिले में आज कई शख्सियात और कारकुनों ने जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबून कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
7: तो सिकाई शक्ल फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान।
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
6: मगर ये है सठा द्रोग।
7: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिज जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट तक।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेन।
10: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो छु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन में हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिज कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इथी रोजान। मगर वन छ अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन हिज अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी, बेच अत सत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तु मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छो, JK सेहत छ सारनी सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।

0: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सिर करती रहेगी। एलजी ने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमलावरों का डटकर मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना पेश करके जम्मू कश्मीर के दिफा में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा कि आबपाशी ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने मौसर और बरवक्त पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि वो पानी के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं ताकि काश्त के मौसम में कोई भी किसान मुश्किलात का सामना न करे। वज़ीर रफियाबाद बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान आबपाशी के बुनियादी ढांचे के काम का जायजा ले रहे थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने जेर जमीन पानी की सतह में मुसलसल कमी और बारिशों के मुतवक्का रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम नई तामीर होने वाली सरकारी इमारतों में बारिश का पानी जमा करने का बुनियादी ढांचा लाजमी तौर नस्ब कराने की जरूरत उजागर की है। वजीर मौसूफ ने पानी के इंतजाम के तरीकों में तब्दीली और उस हुक्मनामे पर अमल दरामद करने की ताकीद की है। वो जम्मू में जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ गर्मी के मौसम की जरूरियात से निपटने के लिए शुरू किए गए इकदाम का जायजा ले रहे थे। पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने आज श्रीनगर में आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन इनाकात के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हसास मुकाम पर क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात करने की हिदायत दी। डीजीपी ने अमन में रख न डालने वाले अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखने की भी हिदायत दी। इस दौरान एसएसपी अनंतनाग अशोक अमूद नागपुरे ने पहलगाम का दौरा करके यात्रा रूट्स पर सलामती इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की। दरियासना गांधरबल और अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के अहतमाम से मॉक ड्रिल मुनक्कद की गई। इस बीच डीजीपी ने मुहर्रमुल हराम और खीर भवानी मेले के सिलसिले में भी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आयुष की वजारत ने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए योगा के बैन अल-अक़वामी दिन के हवाले से कायम की गई यूट्यूब चैनल YouTube लाइव योगा स्ट्रीम के 435,831 व्यूअर्स की तस्दीक की है। वजारत 21 जून को मनाए जा रहे बैन अल-अक़वामी योगा डे के हवाले से तैयारियां कर रही है और ये YouTube चैनल कायम करना तैयारियों की एक पहल है। चीफ प्रिंसिपल सेंसस अफसर व डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने डेटा जमा करने के दौरान दुरुस्ती के आला तरीन मैार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को हिदायत दी कि वह हर इंद्राज सही तौर पर रिकॉर्ड और मुकम्मल तौर तस्दीक किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मामूली गलतियां मर्दमशुमारी के डेटा के मयार और मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। वो दीगर अफसरान के हमराह मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में मर्दमशुमारी 2027 के तहत जिला में जारी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। सीनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साल 2019 बैच के ऑफिसर अशफाक अहमद शाह ने आकाशवाणी श्रीनगर में शोबे खबर के सरबराह का ओहदा संभाला है। उन्होंने ये ओहदा शोबे खबर के साबिक सरबराह और डायरेक्टर न्यूज तारिक राठर का नई दिल्ली तबादला किए जाने के बाद संभाला है। तारिक राठर का तबादला किए जाने के बाद उन्हें PIB हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया है। अशफाक अहमद शाह ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद कई कौमी और बैन अल-अक़वामी सहाफती इदारों के साथ काम किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह का ओहदा संभालने पर कई सहाफती अदबी और सकाफती अंजुमनों ने अशफाक शाह को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनका तजुर्बा शोबा खबर को खबरों की तरसील में नई बुलंदियां हासिल करने में मुआविन साबित होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा के नजदीक आज एक सड़क हादसे में कार मुखालिफ सिमत से आ रही बस के साथ टकराई, जिसमें हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद अजान जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में पेश आए इस हादसे पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने इस हादसे में अजान हुए अफराद के लवाकिन के साथ तजियत का इजहार किया और जख्मी अफराद की जल्द सेहत याबी की दुआ की है। उन्होंने मुतलिका अफसरान को हिदायत दी कि वह जख्मियों को बेहतर तबी निगदाश्त फराहम करें। आज खून के अतिये का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज वादी में भी मुतादिद रजाकार और सेहत तंजुमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम किया गया।
आज के दिन

0: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादी की आवाज़, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

ढांचे जैसे चिनाबरेल पुल दरिया से 359 मीटर ऊपर खड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल के तौर पर पहचाना जाता है। जोजिला टनल, कौमी शहरा 44, चिनानी नाशरी टनल और बानिहाल काजीगुन टनल जैसे मंसूबों के जरिए सड़क के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन भी देखी गई है। जारी प्रोजेक्ट जैसे जोजिला और जेड मोरा सुरंगों से वादी कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान हमा मौसमी राबते को मजीद मजबूत करने की उम्मीद है। समीन तरक्की के हवाले से प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

वादी की आवाज़ अब समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। समिन, जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबे में 2019 के बाद से बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है, जो कि तारीखी पॉलिसी अपनाने, बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की इसलाह के जरिए कार फरमा है। चिनाची, जम्मू कश्मीर के तालीम के शोबे ने गुज़श्ता चंद बरसों में तमाम स्कीमों और मंसूबों को मौसर तरीके से नाफिज किया है। ऐसा करके हुकूमत ने मौजूदा निसाब में काबिल जिक्र बेहतरी लाने के साथ साथ मुख्तलिफ इख्तराई नए प्रोजेक्टों और कामों को शुरू करके तारीखी पेशरफ्त हासिल की है। पूरे जम्मू कश्मीर में तालीमी माहौलियाती निज़ाम और बुनियादी ढांचे की इसलाह के मकसद के साथ सिर्फ एक साल में 50 नए कॉलेजों में नई 25,000 नशस्तों के इजाफे के साथ 70 सालों में तालीमी सलाहियत में सबसे बड़ा इजाफा किया गया। आपको बताते चले कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तवज्जो हमेशा कदर पर मबनी तालीम रही है। साइंसी और तकनीकी इल्म के अलावा इंफरादी तरक्की के लिए माहौल पैदा करने और यूटी में तालीम के शोबे में तेजी से बदलते हुए तालीमी निज़ाम और बदलती हुई मार्केट की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना यत्तू के साथ मीटिंग की और असातिज़ा के तालीमी इदारों से मुतलिक मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में स्कूल और आला तालीम के इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग में असातिज़ा की तरबियत, इदारा जाती तरक्की, हुनरमंदी और दीगर इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करना है। उन्होंने असातिज़ा की तालीम और इदारों से मुतलिक मसाइल और जम्मू कश्मीर में स्कूल और आला तालीम के इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लिया। असातिज़ा की तरबियत, इदारा जाती तरक्की, हुनरमंदी और तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए दीगर इकदामात पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर ने कहा कि उन्होंने रोजगार की सलाहियत को बढ़ाने और तुलबा और नौजवानों के लिए ज्यादा मौके पैदा करने की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दाखिला और तालीमी नतायज में मस्बत रुझान देखना हौसला अफजा है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दरमियान मुसलसल ताउन के जरिए अहम मयारी तालीम तक रसाई को बढ़ाने, रोजगार में इजाफे और जम्मू कश्मीर के तुलबा और नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के निसाब में तब्दीली जम्मू कश्मीर के समाजी और इक्तसादी माहौल पर फैसला कुन असर डाल सकती है। शोबे कदर पर मबनी आलमी निज़ाम के जरिए नौजवान जहनों की तश्कील के लिए तुलबा और असातिज़ा के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन पैदा करने के लिए काम कर रहा है। तेजी से बदलते हुए तालीमी निज़ाम और बदलते हुए बाजार की जरूरियात को पूरा करने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने की जरूरत पर रोशनी डालते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के पास बेपनाह ताकत है और निसाब में एक छोटी सी तब्दीली समाजी और इक्तसादी माहौल पर फैसला कुन असर डाल सकती है। LG श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया समाज के पसमानदा तबके को मयारी तालीम पहुंचाने के लिए मुस्तकिल तवज्जो दे रही है, जो तवील अरसे से अपने हकूक से महरूम थे। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के साथ दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के बाद निसाब का कौमी नमूना जम्मू और कश्मीर में मुतारिफ कराया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के जरिए मंजूर शुदा निसाब और फॉर्मेट UT में लागू होंगे। उन्होंने कहा कि ये निसाब मुताला की शक्ल, तालीमी कोर्सेज, इम्तिहान के पैटर्न वगैरह के लिहाज से होगा और जम्मू कश्मीर न सिर्फ कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करेगा बल्कि कौमी मयारात के बराबर हो जाएगा। समय आपको बताते चलें कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के निफाज के साथ जम्मू कश्मीर में 2500 से ज्यादा किंडरगार्डन कायम किए गए और मजीद 2000 कायम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 9000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 80,000 तुलबा पहले ही प्री प्राइमरी क्लासों में दाखिल है। नई तालीमी पॉलिसी मसावात मयार जवाबदेही की खसूसियात पर मुश्तमिल है और तजुर्बे पर मबनी तालीम और मंतकी सोच के जरिए इंफरादी तरक्की को फरोग देती है। इस पॉलिसी का मकसद असातिज़ा और वालदैन को हसास बनाकर हर तालिबे इल्म को मुनफरिद सलाहियतों की शिनाख्त और फरोग देना है, ताकि हर तालिबे इल्म की तालीमी और गैर तालीमी दोनों शोबों में मजमूई तरक्की को फरोग दिया जा सके। समीन, ये तो थी बात जम्मू कश्मीर की और अब प्रोग्राम के इस पड़ाव पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। समय पिछले कई महीनों से लगातार ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सूरतेहाल इंतहाई कशीदा है क्योंकि वहां अब अवाम की बर्दाश्त की कुव्वत जवाब देने लगी है और एक तरफ अवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बने

हुए हैं, तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। चुनांचे अवामी एक्शन कमेटी AAC की तरफ से बुलाए गए बंद और एहतजाज से कबल ही पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी बढ़ गई। ये बदअमनी खत्ते में इस्लामाबाद की पॉलिसियों की बढ़ती हुई मुखालफत और मुकामी बाशिंदों और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम के दरमियान सामने आई है। जब POK के बाशिंदों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, खत्ते की आज़ादी का मुतालबा किया और पाकिस्तानी फौज पर तनकीद की, दूसरी जानिब रावलकोट से ताज़ा झड़पों की इत्तला मिली है। सूरतहाल ने मजीद तशद्दुद पर तश्वीश पैदा कर दी है क्योंकि हुक्काम POK के कई हिस्सों में पाबंदियां नाफिज करना जारी रखे हुए हैं। बताया जाता है कि रावलकोट में मुजाहिरीन के खिलाफ फायरिंग की और पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। झड़पों के नतीजे में काफी जानी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैकडाउन शुरू होने के बाद से कम अज कम 26 अफराद हलाक और 190 से जायद जख्मी हो चुके हैं। जख्मी होने वालों में से कई को पैलेट गन के जख्म आए हैं। ताहम कुछ मकामी बाशिंदों ने सरकारी आदादोशुमार से इख्तलाफ किया है और वीडियो बयानात में दावा किया है कि हलाकतों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जिसका तखमीना 100 से 150 के दरमियान है। इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। तसादुम के दौरान रिहायशियों ने मुबैना तौर पर लाठियों और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मजामत की। इस दौरान POK की पुलिस ने कहा है कि तशद्दुद में 4 पुलिस एहलकार भी मारे गए। आपको बताते चलें कि ये बदअमनी अब पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ चुकी है। खबरों के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुकीम पाकिस्तानियों ने जमा होकर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ नारे लगाए और खित्ते के लिए खुद मुख्तारी और आज़ादी का मुतालबा किया। एहतजाज की एक अलामती कार्रवाई में रावलकोट के रिहायशियों ने मुबैना तौर पर 3 रेंजर्स एहलकारों को हिरासत में ले लिया और उनकी यूनिफॉर्म को सरेआम जला दिया। मुबसरीन के मुताबिक इस इकदाम को मुजाहिरीन ने फौजी जबर के खिलाफ एक पैगाम के तौर पर पेश किया था। इस दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप है। गुज़श्ता हफ्ते के जुमे से पूरे खित्ते में इंटरनेट खिदमात भी मौतल हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए शटडाउन शुरू होने के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में मुजाहिरीन की इंतबाह करते हुए दिखाया गया है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई करती है तो तवील तसादुम का सामना करना पड़ेगा। उबरती हुई सूरतहाल ने आने वाले दिनों में खित्ते में मजीद अदम इस्तेकाम के खदशात को बढ़ा दिया है। सामिन, ये तो थी बात पाकिस्तान की, और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: समीन फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। 8:45 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप हिंदी खबरें समाप्त करेंगे। रिले का बस जरा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज

0: विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
2: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
2: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम वलू की कोशिश बहुत बोझ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14

0: भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के टी20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खारजा डॉ जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैखों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैखों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोजा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीपटेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वजा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैक्रों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
0: वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस

0: शमशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं, ख्वाह वो जीएसटी हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया। हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में एनडीए हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें अवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कार्बन रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त, पॉलिसी इस्लाहात, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना

0: 90th ईयर हमारा चल रहा है, ये भी आज इस गुफ्तगू का मौजू रहेगा, इसमें हम बात करेंगे। और आज जिस शख्सियत से हमें शर्फ़ मुलाकात हासिल है, इनका ताल्लुक जो है वो किचन से है, ऐसा कहना चाहिए। ये एक फेमस शेफ़ हैं और फैकल्टी हैं IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग के। जी हाँ, नाम है मोहम्मद यासीन ऋषि साहब। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल।
1: थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे लगा कोई और बैठने वाला है यहाँ पे, मुझे अपना नहीं लग रहा था, पर थैंक यू वेरी मच फॉर द
0: नहीं, इट्स
1: काइंड
0: कम्प्लीटली
1: वर्ड्स।
0: एन ऑनर ऑनर आपसे। हालांकि लोग आपको शेफ़ यासीन के नाम से ज़्यादा
1: जी
0: जानते हैं, मोहम्मद यासीन ऋषि शायद ही किसी को मालूम होगा।
1: बिल्कुल।
0: शेफ़ यासीन कब बने, या यासीन शेफ़ यासीन कब बने, इसके बारे में बात
1: देखिए,
0: करेंगे।
1: अगर मुझे अगर मैं कहा फैंसी जवाब आज जो पूरी सिचुएशन रोमांटिसाइज कर तेलवन ब बासा उस जनगर पेठे इंटरेस्टेड शेफ बननस मज बासा उस गरि पजराना पत सारी कर तारीफ तम खानक, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहु सा कह मिडल क्लास फैमिली पे और अगर रोपये दह खर्चाओ तथा बड़े हिसाब आसान बर्डनस तो मैं रहता हूँ ब्रेन में, बल्कि ब्रेन ह्योर गाम तथा पोहल और हम वहाँ रहते हैं। तो बहुत अक्सर अपर बिलवाड़ किन लाल चौकस कम आसान क्या बहुत अच्छे वह इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उस नेहरू पार्क तथा टूरिज्म बिल्डिंग मज अच्छे आसान शुरी गिंदान मज तुम आसान वाइट कोट लगे तेम कोर्स बहुत बड़ फैसिनेट। पत ऐसे वैसे करके जब मैंने एडमिशन लिया आफ्टर 12th तो युथ वन तम किचन प्रैक्टिकल उस मे लोग कोट वोट बहुत खुश अच्छा अच्छा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मगर यूथ गोडनिक प्रैक्टिकल करनविक टीचर वो जैसे मैंने बहुत सीखा हुसामुद्दीन जिलानी जिलानी सर बोलते थे हम उसको तो अमे थो मे टाई तुजन ये थोन ये मे फेकिस पे तो दोपन ये तोमुल चार तो गो स्टार्ट मे तुम खाब फुट मे क्या मे वन बहुस मैनेजर हू आमुत तो करीबन लोग 30-45 मिनट टाई फेकिस पे बह तोमलों मज कान तुम क्रिहन कन वन कड़ान तो बनो खत लंच वंच तो दोपन वह स्कलरी कर मे दो अदा आस प्रैक्टिकल लैब वैब मज दुख स्कलरी के बान छलन तो ये टाई लगे बहुत बान छलान तो लिटरली बह तम द्रामुत कॉलेज तो बूठ पुत डल बंडस पे बहुत दपा वह गा ब्रेन कुन किन कि बह जहलिम कुन और फिर मैं गया। मगर पत लोग मे तम पत यु क्लासेस दिख वो लोग मे पिकन दोस्तों वोस्तों रिश्तेदार वन ये यह जस्ट आ ग्रेजुएशन कर तो पत कर एम बी ए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी बह कर एम बी ए तो इथे कन गो वरी जो वरी पत कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनल ईयर कोर कम्प्लीट तो पत दो मे वह खर्चे गोमुत तो थे मे तुम रसीद बचाव तुम मे थे फीसक सारी रसीद बचम
0: कूता खर्चो आज तम
1: हाँ तुम रसीद मा लॉन्चिंग पैड उस मान ख हमेशा गोबित कहीं रसीद टाइमस पे आमुत फीस भरने क्या यह सारे लेट फीस लोगमुत दैट मीन टाइमस पे पोस
0: आसान
1: क्या
0: क्या
1: मे दपे वह कर थोड़ा जॉब वॉब ज़ 3 लाख रुपये कमा बहुत पे तो जब मैंने वैसा किया तो पुस बह दपान बह त्रावे मगर तमें वज यह बनोमुत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड यह बनोमुत वे ऑफ लाइफ पत आ मे थोड़ा मैचोरिटी तमाम पे समझ मे यह शायद मानि खे डेस्टिनी पत यु बहुत जॉब उस कराना होटल मज तमें वह टैबो अगर तुम जो 2005 कत करो लूकन उस समझ मैगजीनस या सोशल मीडिया उस नूता पावरफुल क्या या तथ क्या चैनल्स आस न तो तमें वह लूख समझानी क्या तो मगर बहुत शायद रबन यह थो बहुत अक्सर सह बड़ प्राउडली शेफ कोट लागान नाइफ पकना बैगस मज संभाल थवान तो वनान इन फैक्ट मे शहस मज कोर रेडियो मे शो आ थोड़ा सा उस रिकॉर्डिंग बे कोर मे दूरदर्शन शो पे गरि बिहित एग्जैक्टली तम बटवार कि आथवर चाय चवान तो आई मेन आंटी तो यह मेनिस फादरस मज क्या कत कर मगर बह सोस ना क्या फाइनली ये अमिस बर्दाश गो दस त्रो रात टी वी बोमवार त्रो टी वी तो तत वह यह क्या रनान यह लोग ना वे वर कुनी तो तमें वज शायद त्रो खुदायन इलहम मैंने कोई जवाब नहीं दिया मैं उठा और निकला जैसे नॉर्मल थी और दैट वॉज द स्टार्टिंग। फिर 2-4 साल लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कैसे क्या बोला मैंने सुना नहीं यूथ में कान लगती दिस इज अगेन ब्लेसिंग तो मैंने सुना नहीं बट चीज़ें क्लियर होती गई फिर मुझे समझ आया एंड फिर मुझे एंजॉय मैं उससे एंजॉय

0: करने लगा जब आप 4-5 साल देते हो. और यूस तो ये नाव बदलाव कुन मोहम्मद यासीन ऋषि मे नाव अत ब्रोठ कने मतलब लुको ये शुरू कोर अत लग मे बासान मे 15 वरी आसन लगमित ये लुको तो बाकी मीडियो में एक्सेप्ट कुरु
1: एक्सेप्ट
0: शेफ.
1: कर
0: मगर
1: शेफ
0: यूथी मैं गोडनिच लाइट वुश आख नफर में वना शेफ मुझे रात को नींद नहीं आई. मतलब फिर ये वारिया बोर्ड टाइटल मुझे कुछ नहीं आता है. पर स्लोली स्लोली लोगों ने वो कहना शुरू किया और तमें पे रोजान कोशिश जारी. अगर तुम मैं विकस बिह तो कोरस बहुत इनवाइट अत लग खाली जुतोवरी बस जस्ट 22
1: 22
0: इयर्स.
1: years.
0: बहुत वन अम किन जस्ट क्या सान शुरन आज बामबर तम कल इंस्टाग्राम पेज खोलान सुबह तुम आसान शेफ जावेद
1: बिल्कुल
0: शेफ
1: सर
0: वसीम. युथ वो तमो टाइटल लगो वो मैं हेकन पे सबऑर्डनेटस नश हेचित कह क्या शेफ
1: टाइटल
0: गंड तमिस तंगा चार
1: चार
0: मगर शेफ वो हेक नहीं हेचित कह. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ. तो मैं इसे इंजॉय करता गया और उसके बाद ऊपर वाले के करम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले आई एम इंजॉइंग इट. मगर वन चुम ये अगर मैं ये जॉब ही यहाँ से अनुमत तेल मा बहुत खुदा रचुम परेशान. इट्स वे ऑफ लाइफ मान जिंदगी यो तरीक आमु डिसाइड कर बे समझ नहीं मैं जहन सो शेफ कोट मे यूनिफॉर्म पता आव मे असल पे समझ यह हसा चे स्किन तो बे कित वाल पानस पानी पोस यह
1: पॉसिबल
0: मे
1: की
0: स्किन. और मैं उसे एंजॉय करता गया और उसके बाद मैं थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो गया इस चीज़ से जब मैंने कश्मीरी खाने के बारे में पढ़ा कोता रिच यह कोता असल अत के स्ट्रांग हिस्ट्री है कश्मीरियत के कनेक्शन है इसके साथ. देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट एंड बट इट टेक्स टाइम वन तुम वाना अगर तु 100 मज रेट करो शायद आज मे जो 2.5% फूडस मुतल पता. इसलिए यंगस्टर्स एवरी थिंग टेक्स टाइम अगर जेन जी तु सुपर फास्ट हर कुन मज बट एवरी थिंग टेक्स टाइम और यह स्किल जॉब
1: बिल्कुल
0: यथ मे हूँ तुम बिल्कुल बामबर कर और नाउ आई एंजॉय दिस. और भले ही सख्तियों से शुरू किया एक्सपोजर उसने कहीं अंधेरे में तीर चलाए वो ऊपर वाले के कर्म से लग गए
1: सही निशाने पे लगे.
0: बट उसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन था कि विजन वॉज क्लियर क्लियर था कि यही करना है अब इसी में अपना करियर बनाना है. दूसरा मैंने लोगों की नहीं सुनी क्योंकि वो इसलिए मैंने नहीं सुनी कि मुझे पोइट्री बड़ी अच्छी लगती है और मैंने कहीं पढ़ा था इकबाल का एक शेर और मैंने वो कहीं लिख के रखा था. मैं दिन में उसे 2-4 बार पढ़ता था कि लिपट जा तो मौज बनकर साहिल से. मतलब अगर आप अपने आप ख़त्म करोगे अपने आप को वाटर करंट की तरह और वो किसी साहिल से टकरा के ख़त्म हो जाती है फिर उसका वजूद नहीं रहता. तो लिपट जा तो मौज बनकर साहिल से फिर भी ये लोग तूफान उठाएंगे. तो वो बड़ा स्ट्रांग रहा दैट एंड आई थॉरली एन्जॉय इट नाउ. और उसके बाद जब कश्मीरी क्यूजिन की बात आई तो सारी वना वाजवान वाजवान मगर यह वाजवान तूत बोड़ गोमुत तूत वेठोमुत अम पुन वे अथि कह पंडित क्यूजिन डोगरा क्यूजिन रीजनल क्यूजिन होम क्यूजिन. तो तवे बहुत वन तान अगर ये यीतिया फूड आउटलेट्स या ये कम खेनस पे गम यह मे बसान 3-4% वन पूर स्कोप आउटलेटन तुम फूडस तउट फूड आउटलेटन स्कोप या अगर तुम ये खेन यु बना तथ तु स्कोप कह एक्सटिंक्ट रेसिपीज सान रिवाइव कर. तो हमारा कुजीन बहुत रिच है मगर तमि ख मे बसान कुर्बानी दिन तो नई जनरेशन तमि ख तैयार करें वो चैलेंज है बट एज फॉर द प्रोफेशन आई थॉरली एन्जॉय इट.
1: यासिन साहब तुम करू जिक्र कि तुम यम सात गोडनिक लटि पनस कॉलेजस मे ऐसु तुम वन हो तु कर टाई थे फेकिस पे
0: बिल्कुल
1: गोड तरव तोमल मज कन
0: बिल्कुल.
1: आज सोन यूथ तैयार कन कड़ने खात आज सोन यूथ तैयार बंद छल खात
0: वारिया असल क्वेश्चन पुछ तुम अजिक बचे टाइम ही नंबर अखान यहाँ वारिया दौन त्रेन वरियन पारुन कह ग सत ठ रेत या डोड वरी वरी कोर्स कर मगर मेहनत नहीं है कहन चुन आज यहाँ सान शुरे मज मेहनत करें मेहनत इन द सेंस अगर सह बे फील्ड चुना तेस कुछ सीमेंट तारुन अगर सह इंजीनियर तेस तम तम चीज कर ऑड वर्कस कर तथा कन होटल मैनेजमेंटस मज मगर वारिया डिफिकल्टी आज गलि बचस वनान पन वर्क स्टेशन कर साफ सन्दर छल सा बान थव साफ कर और लिटरली वनो बो दिस इज द फैक्ट ये सेशन कम्प्लीट कर शन रेतन या पांचन रेतन हूँ कॉलेज अस लिटरली पन अटेंडेंट पे लागन दोन त्रेन दिन किचन वापस शेव अना. तो ये प्रॉब्लम है लेकिन अमुक पे साइड इफेक्ट क्या है बचे अकिस मल्टी नेशनल कंपनी मे फाइव स्टार होटलस मे सास कमर पांच हथ कमर तथा पा युत ग गो तो गेटस पे होटल.

0: पीपल जो नया इस इंडस्ट्री में हो रहा है, एंड इट पेड मी अ लॉट. तो ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, कोई और टीचर. मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनका जॉब है कि वहाँ इतना अच्छा स्कूल नहीं है, बट दे वर्क लाइक वंडर्स. ये मैं श्योर था. दूसरा, मैं कभी भी खामोशी से मरना नहीं चाहता था कि मैं मरूं और जो जनाजा पड़ रहा है उससे भी पता नहीं कौन है ताबूत में. ये मुझे नहीं चाहिए. तो इसलिए मैंने फिर सोशल मीडिया शुरू किया, और अभी मैं जेन जी को थोड़ा सा टक्कर दे रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारी डबल एज का हूँ, बट आई हैव बेटर फॉलोअर्स देन यू, तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू. तो कंक्लूजन यही है कि आई नेवर वांटेड टू डाई साइलेंटली. दूसरा, मुझे कन्वेंशनल टीचर नहीं बनना था जो क्लास से या कैंपस से बाहर नहीं निकले.
1: बहुत खूब. तो इसका मतलब आप शेफ भी रहे और एट द सेम टाइम आपने फैकल्टी भी ज्वाइन करी, और आप दोनों के साथ इंसाफ कर रहे
0: हैं. बिल्कुल. अगर आप इंडस्ट्री से लिंक नहीं रहेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू ट्रांसमिट दैट यू नो अपडेटेड नॉलेज टू स्टूडेंट. आई एंजॉय इट, और यही शायद है कि जो आपको ग्लू करता है अपने प्रोफेशन के साथ. और सारे जो टीच करते हैं IHM में किचन खासकर, वो शेफ ही होते हैं. बट थोड़ा सा मैंने अब एक और राह पकड़ी जो अभी चल रहा है, लेट्स सी कब तक चल रहा है.
1: हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि आप जिस मंजिल पे मंजिल की ओर चलें वो मंजिल आपको मिल जाए और आप कामयाबी आपके कदम चूमे इस मामले में. मुख्तसरन आखिर पर चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो IHM आना चाहते हैं, जो होटल इंडस्ट्री से हॉस्पिटैलिटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना
0: जी? बिल्कुल. अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा, हम डिप्लोमा भी कराते हैं. मेन चार डिपार्टमेंट होते हैं, हाउसकीपिंग, किचन, सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस. उसमें आप अलग अलग साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, और फिर 6 महीने का इंटर्न होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आपको होटल में जाना है. डिग्री 3 ईयर्स की होती है जो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देगी सर्टिफिकेट, और हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे. उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स भी कर सकते हैं बाद में, या किसी और प्रोफेशन को भी आप चुन सकते हैं. बट बेसिक डिग्री के लिए आई थिंक होटल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट डिग्री. आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आप कॉलेज आके एडमिशन ले सकते हैं. दूसरा मैसेज ये है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है. आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं उससे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, उससे मे भी आपको फेम मिले. सीखना आपको खुद है पहले, उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है. इसलिए मैंने बहुत सारे कैफेज यहाँ देखे हैं जो बिग बैंग करते हैं ओपनिंग एंड ऑल. इंस्टाग्राम 2-3 दिन छाया रहता है, और 10 दिन बाद आप फैमिली के साथ वहाँ खाने जाता है, पता चला वो बंद हो गया. तो इट्स नॉट ऑन सोशल मीडिया ओनली, आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे रह के भी बहुत काम करना पड़ेगा. एंड देर इज नो शॉर्टकट, आपको टाइम ही लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए. और ऑनेस्टली करें. एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि जितने भी इस फूड प्रोफेशन में हैं, चाहे उनका होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, अगर आप कोई गलत चीज़ अपने कस्टमर्स को खिला रहे हैं, बिलीव मी ये फैक्ट है, आप जब वो चीज़ उस कस्टमर या गेस्ट के सामने रख रहे हैं, आपके घर में से किसी न किसी बच्चे, बीवी, बहन, फादर, मदर, अंकल, किसी न किसी ने 10 मिनट उससे भी ख़राब चीज़ ऑलरेडी खाई है, उसके बाद अब आप खिला रहे हो किसी को. तो व्हाट गोज़ अराउंड इट कम्स अराउंड, ऐसा ना करें. देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप अगर आप अच्छी चीज़ें ही सर्व करें लोगों को.
1: यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट को अपना वक्त देने का, और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा
0: इंशाल्लाह.
1: आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यासीन ऋषि साहब, जिन्हें हम सब लोग शेफ यासीन के नाम से जानते हैं. उनसे हमने जाना कि किस तरह से वो इस बिज़नेस में आए, किस तरह से वो इस इंडस्ट्री में आए, और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा. उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपने पसंद फरमाया होगा. इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात एक और मेहमान के साथ. तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज.
2: समय आकाशवाणी पॉडकास्ट समाप्त कर रहे थे. पॉडकास्ट के आज के मेहमान थे यासीन ऋषि, अलमारूफ शेफ यासीन. उनके साथ हम कलाम थे प्रोग्राम के मेजबान तबरेज मदनी, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक. यह आकाशवाणी श्रीनगर है. समीन शब के 10 बज रहे हैं. पेश होता है फिल्मी नगमों से तरतीब दिया हुआ आप ही की फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम आपकी फरमाइश.

फिल्मी नगमे आप प्रोग्राम आपकी फरमाइश के तहत आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपके लिए जो नगमा पेश करेंगे वो किशोर कुमार का गाया हुआ नगमा है फिल्म कटी पतंग से। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है पद्मटा की नेपानगर MP से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबिन शाह और राजेंद्र शाह। ये मेल आया है नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। लिखने वाले हैं अब्दुल गफार जावर, अब्दुल हक जावर, जियाउल हक जावर, मोहम्मद उमर जावर और राजेंद्र कटारे। दोस्तों, फिल्म कटी पतंग सन 1970 की एक हिंदी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जो शक्ति सामंत की हिदायतों पेशकश में बनी। ये उस साल की छठी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म थी और अदाकारा आशा पारीक को उनके बेहतरीन काम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। आपको ये भी बताएं कि फिल्म कटी पतंग गुलशन नंदा की नावल पर मबनी है। तो आइए सुने इसी फिल्म से ये नगमा।

आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग से नगमा सुना। अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अपने जमाने का मकबूल तरीन नगमा फिल्म नीलकमल से। इस नगमे को सुनना चाहते हैं शाह जिलान कृपालगढ़ सिंहपुरा पाटन से मास्टर शेख अब्दुल हमीद, वसीम साहब, टीचर गुलजार अहमद, नुसरत जान, निगत जान, रजिया, फरहान जान, जस्सा जान, सलमान, शौकत हमीद, आरिफ, मुश्ताक अहमद बाबा और उनके दूसरे साथी। बीरवा हरदोपंजू से फारूक अहमद चौपान, एजाज अहमद चौपान, रुतबा और जैनब। जयसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, मोहम्मद रायहान, समरीन परवीन और मायरा नूर। गांव कलिया मलाका जिला बठिंडा पंजाब से ये हैं अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचिनवर और मनिंदर। दोस्तों, फिल्म नीलकमल सन 1968 ईस्वी में रिलीज हुई थी। ये एक रोमानवी थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक कामयाब फिल्म साबित हुई और सन 1968 की तीसरी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म रही। फिल्म की मौसीकी काफी सराही गई, जो रविशंकर शर्मा ने तरतीब दी है। गीत लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, तो सुनते हैं इसी फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये नगमा।

मोहम्मद रफी की बात आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म सनम से एक नगमा, बोल है इश्क में मेरे रब्बा। इस गाने को सुनने की ख्वाहिशमंद है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तानवी बोट। आरिजाल ब्रास से इन सामीन ने भी इसी नगमे को सुनना चाहा है। ये हैं अहमद बिलाल, इनके साथ हैं उनके साथी बाई फयाज इकबाल, आशिक उमर गुल और शाइस्ता गुल। नथाना गांव पंजाब से हरजिंदर चंडा, जसवीर जैसी, सीता और गीता। तो आइए सुनते हैं फिल्म सनम से एक नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, नगमनिगार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। तो आइए।

दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा फिल्म खुद्दार से है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। सुनना चाहते हैं तो समाधान ब्रास से बट साइमा, उनके साथ उनके दोस्त भी हैं, ये हैं बट फैसल, बट शाहिद और बट बिलाल। यही नगमा इन दोस्तों की भी पसंद है।

ये ही पोतिया कालाफोर्ट से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, निजामाबाद तेलंगाना से शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, संभलपुर कंकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, रंगनी छत्तीसगढ़ से ये हैं दिनेश वर्मा और करुण वर्मा, अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गोया मल्होत्रा और सच्चा सिंह पाठक। पेश है आप सब दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म खुददार से नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राजेश रोशन।

आपने प्रोग्राम के आखिर पे फिल्म नागिन से नगमा सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वक्त की कमी के बायस सभी दोस्तों की फरमाइशी नगमे हम नशर नहीं कर सके। आइंदा हमारी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि दूसरे सामीन की फरमाइश भी शामिल प्रोग्राम हो। इस वक्त प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करने से पहले हम प्रोग्राम का पता सामीन तक पहुंचा देते हैं। पता है, इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 1900001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम खत्म करने की हमें अब दीजिए इजाजत। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब बखैर।

0: सुमन अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं जावेद इंद्रामी। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, शब के 11 बज रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास

0: सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron.

0: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेनस्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेनस्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी।
2: तो हमारे युवा लगभग 30-40

0: या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है, डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे अब स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में, पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा, और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन कर दी गई, बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है, तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है।
1: जी,
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज,

0: पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहें तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने Bio-E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है Bio-E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है, हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट

0: की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर, अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है। गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर, ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं, बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक

0: टूल है जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे, तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरी कल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयड नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के

0: विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर

0: एलेग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the Inter-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice, France. During the briefing, Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research, and academic exchanges. The Foreign Secretary highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center for Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
3: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
2: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।

0: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
0: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
0: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है, और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है, और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर, और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन 57 मिलियन US डॉलर का, ये हमारे यहाँ से जाता है, ये ताजा फलों के रूप में जाता है, और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है, जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है, और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पिछेती हैं, और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुफ्त उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं, तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं।
1: जी, मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
2: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है, और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई, और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं। और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है, और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो, या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
1: जी।
2: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए, और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं, और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए, और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है, और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी, तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
3: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं
1: जी।
3: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य

0: भी बना रहता है, इसलिए हम जब प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है, किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
2: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के, जो आपने सुना होगा, जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा राम केला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पज, जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन 10 दिन 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद, तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं। और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है, आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहां हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री हो, यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह के खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से उसकी डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर्स में बनाई जाती है। और यहाँ जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए
1: जी।
2: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है, तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
2: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसके आधार पर कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
2: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके, छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे हो कि देश में कई मैंगो क्लस्टर है, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने

0: ना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉयल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं जो खरीदार होते हैं वो इनके द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया है जिसमें डिसैपिंग है, उसकी क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है या इरिगेशन वो कराते हैं, फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना हो हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई है, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं दुबई ओमान दोहा ये सऊदी अरेबिया कुवैत इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब हमें
0: हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहां एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं, और सिंगापुर हांगकांग ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है और ये मैं कहूं कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की कि इतनी सारी किस्में हैं उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
2: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी और ये हमारी जो पुराना इतिहास से उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है दशहरी है तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
1: जी।
2: और ना तो नीलम को देखें तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल उसमें फल हर साल आता है, दशहरी बहुत अच्छा फल आता है बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता, लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
1: जी।
2: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है और उसमें अभी भी हर साल फल आता है तो सबसे अच्छी। अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है बौनी किस्म है तो आम का जिक्र आता था हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा 15 मीटर का होगा इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
1: जी।
2: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर का, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा, तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है
1: गुण हो गया।
2: हाँ, तो जो नाम जो है नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है। जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुड़ का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम कि किस स्थान पे हुआ कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुड़ है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से

0: समझ पाएं और ले पाएं।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर आपने मैंजीफेरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस में है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है, लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे, अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहाँ नाम लेंगे तो हापुस आम है और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहाँ ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेसिक हो जाए।
1: जी डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
0: निश्चित रूप से आजकल देखिये तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफार्म, जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है और उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरेसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे दया के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ न कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है, और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें, हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है। जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है, हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है, तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में, आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे कहा जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होती है, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं, उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया, लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं वो सब मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है, जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में, यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का ये प्रयोग करना पड़ता है, और

0: जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं, वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। वो इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं जी, चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
0: हमें जो फसल जो है लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी, इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
0: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
0: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है, तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
0: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
0: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं, उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, वो जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहां हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उठ जाता है
1: जी। और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है, इसमें कई सारी किस्में होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है, जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है
1: जी। मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती है और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, जाके वहां पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब वो रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामित है, घनामित्र है, निमास है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर पाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं
1: जी।
2: प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है या आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं, जिससे कि उसमें अंश भी न बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में

0: जैसे भारत सरकार ने किया है, जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है। ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रश्न मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही है जहां से, जैसे बासमती में जाना जाता है, उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट, चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं, तो वहीं से उत्पाद आते हैं। तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में इसकी विशेष मांग रहती है। तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असामयिक बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो, जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4 से 5 किस्मों का समूह लगाते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पछैती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है। और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासी की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से, हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है। तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान, अब आगे बढ़ रहा है उससे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी, हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा
1: जी।
0: लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से आता है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, केसर है, बैगनपल्ली है, तोतापरी है, ये इत्यादि जाती हैं। इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है ये वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं, वो मध्यम मीठा चाहिए, वो खट्टा भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे
1: जी,
0: हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और 1-2 वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे, इस तरह से होता है
1: जी। बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ

0: पाएंगे। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जिसे हम टिकोरा कहते हैं, टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है, उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है, तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है, और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पर जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है। जैसे मैंने कहा कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्र में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रह गई, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है, क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से ड्राइव कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए, अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है। लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: जी, यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा,
1: निश्चित रूप।
0: जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की जो लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं, या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
1: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं, उस किस्म के बारे में बताते हैं, उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए। इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है, जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं। और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को, दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी हो

0: है और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता। अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया, उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं।
1: जी, मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे? क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है इसलिए?
2: देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे, उससे फल को नुकसान नहीं होता था। अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते जाते हैं।
1: जी, वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जो पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना चाहिए, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है।
1: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है, कुछ है, वो भी धुल जाए,
2: वो भी सब धुल जाता है।
1: जी, डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे, अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहां साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है, जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है, कि बल्क परचेस करते हैं और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पर आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में, कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसके उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूं कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूं कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहां दूर दूरस्त हमारे जो जनपद है वहां तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहां के उत्पाद प्रायः बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग

0: उनको फायदा होगा।
1: जी, चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
0: एक बात हो रही है, जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे। देखिए, आपने दशहरी लगाए और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो। तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी, जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्त्र क्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है। ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे। ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है। तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेज आदि जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं। किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज है, बायो सेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं अब खाने योग्य नहीं है, तो आप फेंक सकते हैं। तो जो भी AI है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरे इंडस्ट्री को कर सकते हैं। और ये क्षमता है और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूँ, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए, और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए
0: धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: शता सिंह।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district yesterday. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the accident. In a social media post, Mr. Modi said that his thoughts are with the bereaved families during this hour of grief and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. He added that the injured would be given 50,000 rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और मैं हूं सुरभि आपके साथ प्रोग्राम गीत सुहाने लेकर। चांदनी रात भर सारा जहां अच्छा लगा, चांदनी में रात भर सारा जहां अच्छा लगा, धूप जब फैली तो अपना ही मकां अच्छा लगा। आके अब ठहरे हुए पानी से दिलचस्पी हुई, आके अब ठहरे हुए पानी से दिलचस्पी हुई, एक मुद्दत तक हमें आवे रवा अच्छा लगा। चांदनी में रात भर सारा जहां अच्छा लगा, धूप जब फैली तो अपना ही मका अच्छा लगा।

0: खोया खोया ये चांद अक्सर किसी की यादें ले ही आता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि ख्वाहिश मुझे जीने की ज्यादा भी नहीं है, ख्वाहिश मुझे जीने की ज्यादा भी नहीं है, वैसे अभी मरने का इरादा भी नहीं है। हर चेहरा किसी नक्श के मानिंद उभर आए, हर चेहरा किसी नक्श के मानिंद उभर आए, ये दिल का वरक इतना सादा भी नहीं है। घबरा के नहीं इसलिए मैं लौट पड़ा हूं, घबरा के नहीं इसलिए मैं लौट पड़ा हूं, आगे कोई मंजिल कोई ज्यादा भी नहीं है, ख्वाहिश मुझे जीने की ज्यादा भी नहीं है, वैसे अभी मरने का इरादा भी नहीं है।
1: दुनियाओं से

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं सुरभि हूँ आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मैं नजर पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, मैं नजर पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहों को कहीं रात ढल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत मेरे साथ जल न जाए। मैं नजर पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहों को कहीं रात ढल न जाए।

किसी सूरत भी नींद आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, कोई शय दिल को बहलाती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, जो मेरे ख्वाबों में आकर तसल्ली मुझको देती थी, वो सूरत अब नजर आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में एक और बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि अभी आंखों में शमाएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है,

अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने, कभी नक्काश बताया कभी मीमार कहा, दस्त फनकार को कासा नहीं लिखा मैंने, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब चलते चलते जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे पहले कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। जो प्यार करेंगे जानेंगे हर बात हमारी मानेंगे। जो खुद न जले हों उल्फत में वो आग को पानी कह देंगे। इस दिल में जरा तुम बैठो तो कुछ हाल हमारा पूछो तो हम सादा दिल हैं अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्तिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं होती, दिल खुद उनकी पहचान बन जाता है और चांदनी रात में उसकी यादें और गहरी हो जाती हैं जब एक चेहरा खामोशी से दिल में उतर आता है। शायद तभी कहते हैं कि प्यार का कोई नाम नहीं होता, ये केवल एक एहसास है जो किसी की मुस्कान से शुरू होकर दिल में हमेशा के लिए ठहर जाता है। तो चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस बेहद ही चुलबुले गीत के साथ। फिल्म है ये दिल लगी।

ये रात जब खामोश हो जाती है तो दिल की आवाजें कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगती हैं, और ऐसे में किसी की याद जहां मुस्कुराहट देती है, वहीं किसी की याद दिल को बेचैन कर जाती है। शायद यही असर है मोहब्बत का, जहां एक इंसान की कमी सुकून ले जाती है और दिल बस उसी चेहरे का, उसी आवाज का इंतजार करता रहता है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, ऐसे ही बेकरार दिल के साथ।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। तो चलिए अब अगला गीत है फिल्म डर से।

कभी कभी ये दिल बिन बताए बदलने लगता है, किसी की छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं, किसी की हंसी बेवजह याद आने लगती है, फिर चांद वही होता है, रात वही होती है, लेकिन दिल के एहसास बदल जाते हैं। हर तारे में बस उसी का चेहरा नजर आता है और ये दिल धीरे से मान लेता है कि हाँ शायद हो गया है तुझको प्यार। तो चलिए इस बेहद खूबसूरत रात में मोहब्बत की हल्की सी दस्तक और दिल के मीठे एहसास के साथ सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

कुछ नजरें दिल पर असर छोड़ जाती हैं और कभी कभी किसी की आंखों में ऐसा अपनापन होता है कि दिल बार बार वहीं ठहर जाना चाहता है। शायद कोई है जिसकी एक नजर आज भी दिल की धड़कनों को तेज कर देती है और दिल उसके करीब खुद को महसूस

और इस गीत के साथ रात सुरभि का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:09। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था। हसरत जयपुरी की लिखी रचना। फिल्म का नाम चोरी चोरी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में। मित्रों, हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हों तो ये सुरीला सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो उठता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये सफर जीवन भर का सफर हो तो क्या कहना, थोड़ा सा भी अगर समय का ये सफर हो तो कब गुजर जाता है, ये समा पता ही नहीं चलता।

0: मेरा क्या खो जाए, ये कोई इस दुनिया को क्या समझाए, मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही।
1: सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना, दो दिलों की दास्तान इस फिल्म से। ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों 1985 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, अनजान की लिखी रचना।

0: बहुत ही सुंदर गुफ्तगू से सजा ये गीत कि पहली मुलाकात में प्यार जताया नहीं करते और पहली मुलाकात में प्यार जताया नहीं करते और इसके बाद जो जो जवाब आ रहे थे बहुत ही सुंदर। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों से सजा ये गीत ओपी नैयर का संगीत बद किया था साथियों। राजा मेहंदी अली फिल्म का नाम दो दिलों की दास्तान जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब कोई किसी को जगा रहा है या सुला रहा है सुनते हैं इस गीत में।
1: जगो अनजानी राज दुलारी ढल गया चंदा कटी रात सारी जगो

एक सूरत दो दिल, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, आरती मुखर्जी और सुबीर सेन की आवाजों का समन्वय था और बिजन पाल का संगीत था। रामजी सिंह ने ये गीत लिखा था।

मोहम्मद रफिया आशा भोसले की स्वरों से सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत था साथियों, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी और फिल्म का नाम बदतमीज, जो रिलीज हुई थी 1966 में। और अब इस अगले गीत में एक प्रतीक्षारत बात हो रही है। जी हाँ, बहुत दिनों से हमें इंतजार था, यानी नायिका को इंतजार था इस बात को कहने का, कहलवाने का। आखिर वो वक्त, वो सुनहरी घड़ी आ ही गई।

परिणय फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना साथियों, मन्ना जी और वाणी जयराम की स्वर थी। जयदेव का संगीत नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में आप है मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। रात्रि के 3:41 और 40 सेकेंड कार्यक्रम में बढ़ते हैं आप।

मोहम्मद रफीकी दादत के स्वरों से सजा ये गीत इकबाल कुरैशी का संगीत बद किया नगमा अभी आपने सुना। शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम पंचायत, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में।

सुरैया और तलत महमूद की स्वरों से सजा ये गीत वारिस फिल्म से अभी आपने सुना। 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कमर जलालाबादी की लिखी रचना थी और अनिल बिस्वास का संगीत था। और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों से सजा ये गीत ब्लैकमेल फिल्म से। आइए सुनते हैं इसमें क्या बात हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, गीत का अंदाज क्या है, आइए सुनते हैं।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों से सजाई ये गीत ब्लैकमेल फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, जहां प्रेम होता है वहां डर भी व्याप्त होता है। डर किसी कारण से गलत फहमी ना हो जाए, कोई दूरी ना बन जाए, कोई ऐसा कारण ना बन जाए कि गलत फहमी हो, मनमुटाव हो, दूरी हो। इसी तरह की डर की सुंदर वानगी से सजाइए गीत। जी हाँ, डर की सुंदर वानगी, क्योंकि गीत है ना, गीत में इसी तरह की बातें होती हैं जो बड़ी सुंदरता से कही जाती हैं। इसी तरह का ये गीत है, आइए सुनते हैं इस गीत का भाव।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत ब्लैक कैट फिल्म से 1959 रिलीज फिल्म एन दत्ता का संगीत जानिसार अख्तर की लिखी रचना आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आइए सुनते हैं

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत सुन रहे हैं आप काला पत्थर फिल्म से 1979 रिलीज फिल्म राजेश रोशन का संगीत साहिल लुधियानवी की लिखी रचना ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जोराज ब्लानार ने उनका स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन मैच में जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हराया। ग्रुप एफ के एक अन्य मैच में नीदरलैंड और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 12 सेकेंड।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 12 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे साथी भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा की भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

ऐसे गीत सुनते हैं तो बिल्कुल बहारों का समा ही बंद जाता है। साथियों, आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत बंबई का बाबू फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 रिलीजी फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। साथियों, मन में जब खुशी पनपती है तो जिया बिल्कुल डोलने लगता है। इसी तरह की सुंदर खुशी का इजहार लिए ये रचना सुनते हैं।

उमा देवी की आवाज से सजा ये गीत अनोखी अदा फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1948 में और इस गीत का जादू आज भी बरकरार है। साथियों, नौशाद का संगीत, शकील बदायूं की लिखी रचना। साथियों, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ बदल जाती हैं, स्थिति परिस्थितिवश या कैसे भी। इसी तरह से एक पतंग उड़ाने वाली जो बात थी, कही कि एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था, अब बहुत कम देखी जाती है। कोई कोई त्योहार पर ही ये हमें देखने को मिलती हैं, आसमान में रंग बिरंगी प्यारी प्यारी पतंग। एक पतंग उड़ने से संबंधित एक गीत आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वर उसी सजाशी ये गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया। ये गीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। फिल्म का नाम भाभी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1951 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। सबसे अच्छी सकारात्मक बात वो होती है जब हम किसी कारणवश उदास हो, दुख सुख जीवन की

पल हैं आती जाती रहती हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं किन्हीं बातों पर, गमगीन हो जाते हैं, कोई यादें भी ऐसी हो सकती हैं या कोई घटना दुर्घटना, लेकिन जब भी हम उदास होते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे आसपास है और उस आसपास की जो महसूसियत है उससे हमें बल मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, आगे जीवन जीने का हौसला हमें मिलता है, उदासी कई हद तक कम होती है।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। गुलजार की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाजें थी। फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।

श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। प्रातः के 4:36 और 51 सेकंड हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, गीतों के सफर में बढ़ते हैं आगे। और अब कैसे समझाऊं बड़े ना?

0: समझ हो कैसे समझाऊं।
1: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय लिए ये गीत सूरज फिल्म से अभी आपने सुना। 1966 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, हर दिल में हर समय कुछ न कुछ आस उम्मीद पनपती रहती है, उन्हें पूरा करने की

सुमीर सेन की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था। हजरत जयपुरी की लिखी रचना, 1961 रिलीज। इस फिल्म का नाम आस का पंछी। और अब गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। संदेश पूर्ण गीत आइए सुनते हैं।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये संदेशपूर्ण गीत अभी हमने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम दोस्त, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में।

1969 रिलीज ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी की लिखी रचना और अब अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये नगमा।

शमशाद बेगम और जोहराबाई अंबाले वाली के स्वरों से सजा ये गीत अनमोल घड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1946 में। नौशाद का संगीत था तनवीर नकवी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता

0: के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। फ्रांस का एवियन शहर आज से शुरू हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे विश्व के नेता और शिष्टमंडल 3 दिन के आयोजन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों G7 देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करेंगे। G7 देशों में फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज विराट 1 का इंजन खराब होने के कारण डूब गया। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन मैच में जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. Mr. Modi will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a 2-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, PM Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This was the first ever visit by an Indian Prime Minister to

श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 6 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, और उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे ईश तक लेकर जाता है।

सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, और उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे ईश तक लेकर जाता है।